0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: कैसे हालचाल है। मेरा नाम आरजे आनंद है। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन। दोस्तों कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है आपकी मुस्कान। हमारी मुस्कान है ना, जब मुस्कुराते हैं तो अलग ही लेवल का स्वैग होता है। लेकिन मुस्कुराने के लिए हमारे दांतों का सुंदर दिखना भी तो बहुत जरूरी है ना। तो आज आपके दांतों को और भी चमकदार बनाने, देखिए हम एंटरटेनमेंट पे बात करते हैं, हम तमाम सारे मुद्दों पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा आपके दांतों की बात भी होनी चाहिए। तमाम सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आती रहती है, तो हमने सोचा यार आज इस सेशन को और भी खास बनाते हैं। इस खास मुलाकात में हमने खास एक्सपर्ट को इनवाइट किया है अपने स्टूडियो में। तो आइए जरा सर का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है मुरादाबाद के स्टूडियो में। कैसे हैं आप? हाउ आर यू
1: सर? आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ।
0: जी सर, इट्स माय प्लेजर। सर प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: मैं डॉक्टर एसपी सिंह, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग देयर इन देवनंदी हॉस्पिटल।
0: ऑलराइट।
1: और मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ अपने डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट का। और इसके अलावा मेरा खुद का क्लिनिक है अवंतिका डेंटल होम्योपैथी क्लिनिक नाम से। तो मैं पिछले 16 साल से जनता

0: सेवा कर रहा हूँ।
1: अरे वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल। देखिए सर ने तो परिचय भी बड़ा अमेजिंग सा दिया है, बहुत ही बढ़िया। सर आप ये बताइए, रेडियो स्टेशन में आके आपको कैसा लग रहा है, मतलब वाइब, स्टूडियो, माइक और ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है?
0: ये अमेजिंग है बिल्कुल, न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
1: ऑलराइट, अच्छा पहली बार आप स्टूडियो में आए हैं, मतलब रेडियो स्टेशन में?
0: हाँ, रेडियो स्टेशन में पहली बार आया हूँ।
1: क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सो आई होप आपको मजा आ रहा होगा।
0: नहीं, डेफिनेटली।
1: चलिए सर, चलिए सर मुद्दे की बात शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत, छोटे बच्चे जो है ना भाई, बड़े नॉटी होते हैं यार, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में उनको चॉकलेट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, लेकिन खाने पीने के साथ साथ उनकी दांतों की हेल्थ का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। सो बच्चों के दांतों की देखभाल क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे।
0: सर बच्चों की देखभाल इसलिए जरूरी है कि बच्चों के संदर्भ में पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं होती कि बच्चों के दांत आने के बाद उनको साफ करना भी जरूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कहते नहीं डॉक्टर साहब ये तो अभी दांत आए थे, 2 साल में 3 साल में खराब हो गए, तो उनको ऐसा लगता है कि दूध के दांतों को देखभाल की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, बच्चे को जनरली 6 माह में पहला दांत आ जाता है, वो कई बार 7 माह भी हो जाते हैं, 8 माह भी हो जाते हैं, तो बच्चा फीड करता है और वो कई बार फीड करता है, दूध भी पिएगा और बहुत सारी चीजें खाता है बीच बीच में, बट उसकी सफाई नहीं होती। पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं होती, पेरेंट्स को ज्ञान नहीं होता, या जो माता लोग हैं उसको फीड कराती है, बॉटल लगा दी मुंह में और बच्चा सो गया, क्योंकि जब जब बच्चा रोता है मम्मी क्या करती है, बॉटल लगा देती है, और बॉटल लगाने के बाद बच्चा सो जाता है और बॉटल से दूध थोड़ा थोड़ा करके उसके दांतों में एक्युमुलेट होता रहता है, जिससे दांतों में कैविटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है।
1: ओके, तो देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप गाइस आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, और आपको आ भी रहा होगा, तमाम सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। जैसे छोटे बच्चों की उम्र के हिसाब से उन्हें कितनी बार ब्रश करना चाहिए दिन में, पूछूं?
0: ब्रशिंग का तरीका सभी के लिए बराबर है, छोटे बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए, बड़े बच्चों में भी 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक्चुअली जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे तो आप कॉटन से भी साफ करा सकते हैं, मतलब ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, मम्मी की ड्यूटी है कि अगर आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते, कॉटन या कपड़े से आप जो भी दूध चिपका है दांतों में उसको साफ कर दे, दोनों टाइम।
1: कॉटन से मतलब नॉर्मली कॉटन लेके या कुछ यूज करना है?
0: नहीं, कॉटन साफ होना चाहिए, उसको वेट करके उससे क्लीन कर सकते।
1: ऑलराइट, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा,
0: इजी हो जाता है जो बहुत छोटे बच्चे।
1: समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। सो गाइस आई होप आपको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने छोटे बच्चों के लिए ब्रश का टाइम भी बताया कि 2 टाइम तो होता ही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक सुबह का तो रूटीन सबको ही पता होता है,
0: सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी होता है।
1: ओके, तो मुझे लगता है ये वाली बात जो है वो हर एक एज ग्रुप के लोगों को, मुझे लगता है
0: सभी के लिए वो यूनिवर्सल है।
1: बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आप दे रहे हैं, बहुत बेहतरीन जानकारियां आप दे रहे हैं। सो डॉक्टर साहब एक और सवाल है मेरा आपसे, जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके दांतों की कैसे मतलब देखरेख, थोड़ा सा उनके बारे में आप बताइए।
0: देखिए बच्चे में पहला दांत 6 महीने में आता है और दूध के दांत लगभग 2.5 से 3 साल में कम्प्लीट हो जाते हैं।
1: ओके,
0: और अगर सब कुछ सही रहता है तो 6 साल में पहला पक्का दांत आता है। तो ये जो पीरियड है 6 साल से 10 साल का पीरियड, ये काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि इसमें दूध के दांत गिरते हैं और पक्के दांत आते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है दूध के दांत नहीं गिरते तो पक्के दांत नहीं निकल पाते। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से दांत उसके टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, निकलते ही नहीं है। तो जनरली इस एज में पेरेंट्स को बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी होता है, एक बार स्क्रीनिंग करानी जरूरी होती है, जो हम लोग अवॉइड।
1: क्या बात है, तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातों को अवॉइड मत किया करो, बहुत जरूरी है, ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो 12 वर्ष की उम्र के बाद जो है बच्चों की दांतों की देखरेख किस तरीके से होनी चाहिए, जैसे थोड़ा एज ग्रुप बढ़ जाता है उसके हिसाब?
0: देखिए आज के टाइम में एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, मतलब पहले हम लोग नहीं सोचते थे कि हाँ दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्या है,
1: करेक्ट
0: सब चलता था, बट अब नहीं चलता है,
1: अब नहीं चलता है,
0: चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अब वो सबको बिल्कुल परफेक्ट दांत चाहिए। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जब दांत पक्के वाले दांत आ रहे हैं हम उनका ठीक से देखभाल करें, अगर कोई दांत समय पे नहीं आ रहा है तो उसको डेंटिस्ट को जाके दिखाएं, वो देख के बताएगा हाँ भाई क्या परेशानी है, क्यों नहीं आ रहा है। और अगर बाई चांस किसी भी कारण से बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो गए तो ये जो एज है 10 से 11 साल या 12 साल ये परफेक्ट एज होती है टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज कराने के लिए।
1: अच्छा, मतलब इस एज में अगर हम अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए सही बेनिफिशियल होता है।
0: एग्जैक्टली।
1: ऑलराइट, अच्छा सर जी प्लीज टेल अस, आप कुछ कह रहे हैं।
0: एक्चुअली जब दांत निकल रहे हैं ठीक है तो हम उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको उनकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, हम उनको आगे पीछे कर सकते हैं, और उस समय जो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके जो रिजल्ट है ज्यादा परमानेंट होते हैं, और इवन वी कैन चेंज द मस्कुलेचर, हम जबड़े की संरचना को भी थोड़ा बहुत बदल सकते हैं इस एज में।
1: ओके, अच्छा ओके। सो डॉक्टर साहब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दांतों का सबसे आम और कॉमन जिसे हम कह सकते हैं ना, कौन कौन से वो रोग हैं और उनकी देखभाल क्या है, सही उपचार क्या है?
0: सर दांतों में जो सबसे बड़ा रोग है वो डेंटल कैरीज।
1: ओके।
0: और आपको ताज्जुब होगा सुन के, ये दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में सबसे बड़ी बीमारी है।
1: ओके।
0: और मतलब इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब दूसरे देशों में तो इवन दे हैव टू अपॉइंट डेंटल नर्सेज, मतलब वहाँ पे डेंटिस्ट इतने नहीं है, इस वजह से उन्होंने डेंटल नर्स अपॉइंट कर रखी है देखभाल के लिए।
1: ओके।
0: हमारे इंडिया में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है, ऑल्दो आजकल काफी डेंटिस्ट है, काफी अवेयरनेस है। डेंटल कैविटी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो दिखाई नहीं देता, मतलब केवल डेंटिस्ट ही देख के पहचान सकते हैं कि ये कैविटी है। बहुत ऊपर से बहुत स्मॉल सा पिन पॉइंट दिखाई देगा, बट वो एकदम ट्रायंगुलर शेप में नीचे स्प्रेड करती है।
1: ओके।
0: और आम आदमी को पता नहीं चलेगा, उसको पता तब चलेगा जब उसके दांत में दर्द हो जाएगा, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो कैविटी है वो उसकी नस में पहुंच चुकी होती है, उसका ट्रीटमेंट फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और एक बार रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद ऑल्दो दांत ठीक हो जाता है, फंक्शन भी हो जाता है, एस्थेटिक्स भी आ जाती है, लेकिन वो दांत ब्रिटल हो जाता है, उसके खराब होने की संभावना अल्टीमेटली बढ़ जाती है।
1: ओके। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को, तमाम जानकारी आपसे मिल रही है आज। इसी बीच में एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मैं बात करूं आज के जमाने के बच्चों की, तो इतनी सारी चीजें मार्केट में आ गई हैं जिसे हम दिन भर में अनलिमिटेड खाते हैं कई बार, और हमें पता नहीं होता। और आजकल तो इवन ये भी चल रहा है कि शाम को किसी ने ब्रश किया किसी ने नहीं किया, तो मतलब एक सही तरीका क्या है ब्रश करने का, स्पेशली आज के जेंसी के लिए अगर मैं बोलूं तो?
0: सर, ब्रश करने के लिए आपको इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, ब्रश आपका बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और उस ब्रश को सॉफ्ट तरीके से ही करना चाहिए।
1: ओके।
0: हम जनरली सर्कुलर मोशन में एडवाइस करते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है, प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना होता है।
1: ओके।
0: टाइम लगभग 2 से 2.5 मिनट देना है।
1: Perfect.
0: ठीक है, आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे आपके दांत घिस जाएंगे। खाने का ऐसा है, खाने की तो बहुत सारी चीजें मार्केट में, आप किसी को खाने से रोक नहीं सकते। बच्चे को चॉकलेट भी खानी है, बच्चे को चिंगम भी खानी है, बच्चे को टॉफी भी खानी है, उसकी एज भी है, वो नहीं खाएगा तो कौन खाएगा,
1: ठीक
0: है, बट आप खाइए, बट क्लीनिंग बहुत जरूरी है, आपको ब्रश करना जरूरी है, कुछ भी खाइए लेकिन रात को ब्रश करके सोइए। अगर आप
1: जी सर, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा यहीं पे, मतलब ब्रश करना डेली जरूरी है, मतलब हफ्ते के 7 दिन रात को भी करके सोना है?
0: डेफिनेटली।
1: ऑल राइट, जैसे कई लोगों का मिथ होता है भाई आज कर लिया सुबह तो डेली कर ही रहा हूँ, रात में आज कर लिया कल नहीं करूंगा तो क्या ही चला जाएगा,
0: ऐसा नहीं चलेगा।
1: ऑल राइट,
0: जो खाना आपने आज खाया वो खाना आपको आज ही साफ करना पड़ेगा ब्रश से, अदरवाइज अगर आप सोच रहे कल ब्रश करके आज का खाना साफ हो जाएगा तो वो लगभग असंभव सी बात है।
1: ऑल राइट, अच्छा जी, चलिए सर बहुत अच्छा लगा। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कई बार मैंने बहुत घरों में देखा है ऐसा, मेरे रिलेटिव के घरों में भी मैंने देखा है कि वो एक ही ब्रश को 5-5 महीने 6-6 महीने चला रहे होते हैं, तो क्या ब्रश चेंज करने की भी कुछ है ऐसी टाइमिंग?
0: ब्रश चेंज करना डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से यूज करते हो। कुछ लोग ब्रश पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उनका वो 1 महीने में खराब हो जाता है।
1: ओके।
0: वो पूरे ब्रिसल्स फ्लेयर हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत सॉफ्ट प्रेशर यूज करते हैं तो उनके ब्रश लंबे समय तक चलते हैं, बट 6 महीने साल भर में आप ब्रश चेंज कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, चलिए तो दोस्तों ये भी आपका मिथ दूर हो गया। अच्छा, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था सर, मतलब आपने ये बात बोली तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि मतलब अगर आप ज्यादा ब्रश करते हैं तो आपके दांत घिसने लगते हैं, तो ये क्या सही बात है?
0: इट्स वेरी ट्रू। देखिए, जो हमारे दांत का इनेमल है वो बॉडी का सबसे स्ट्रांग पार्ट है।
1: ओके।
0: बट अगर आप उस पे प्रेशर लगाएंगे, ये वाइटल पार्ट है, अगर आप उस पे प्रेशर लगाएंगे तो दांत घिस जाते हैं। और कई बार तो मतलब जो लोग प्रेशर लगा के, मतलब हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पहले से ये टेंडेंसी है कि नहीं आप प्रेशर लगा के ब्रश करेंगे दांत अच्छे से साफ होंगे, तो वो अच्छे से साफ होते हैं पूरे ही साफ हो जाते हैं, मतलब पूरा दांत घिस जाएगा ऐसे, जैसे आपने देखा होगा बचपन में जो कुआ होता था, कुएं पे जब रस्सी से पानी खींचते तो जैसे ग्रूव बन जाती है, ऐसी दांतों में पूरा ग्रूव बन जाते हैं।
1: ओके, तो फिर मतलब ये तो आपने बता दिया, फिर इसका सही तरीका क्या है बेसिकली?
0: इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट, जो ब्रश कर रहे हैं आप सॉफ्ट तरीके से।
1: ऑल राइट, मतलब दांतों की धुलाई नहीं करनी है, दांतों की सफाई करनी है,
0: तरीके से करना है, मतलब सर्कुलर मोशन में,
1: समझ।
0: उसका एक प्रॉपर तरीका है वो, मतलब मैं ऐसे रेडियो पे समझा नहीं सकता।
1: बिल्कुल
0: ठीक है, बास मेथड बोलते हैं, BASS बास मेथड।
1: ओके,
0: मतलब जिन लोगों को देखना वो गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, बास मेथड ऑफ टूथ क्लीनिंग, दैट इज द परफेक्ट मेथड फॉर टूथ क्लीनिंग।
1: अच्छा सर, कई बार जिससे दांतों में ना अचानक से पेन होने लगता है, कई बार मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो कई सारे लोग ना होम रेमेडीज करने लग जाते हैं, दादी नानी के नुस्खे, आप लौंग चबा लो, ये कर लो वो कर लो, तो क्या ये चीज काम करती है और ये दर्द बेसिकली होता क्यों है?
0: सर, दांत में 2 तरह से दर्द हो सकता है।
1: ओके।
0: एक तो दांत के अंदर दर्द हो रहा है, एक जो उसका सपोर्टिंग टिश्यू है, जो मसूड़ा है, आपने सपोज करो रात को कोई खाना खाया और वो फूड पार्टिकल दांतों के बीच में फंसा रहेगा, तो जब वो खाना सड़ने लगेगा तो मसूड़े को इन्फेक्ट करेगा, पहले वो मसूड़े को इफेक्ट करेगा जिससे पायरिया होता है, ठीक है। तो आपके मसूड़े में जो दर्द हो रहा है वो मसूड़े का दर्द है, बट वो बहुत तीव्र दर्द नहीं होता, ठीक है। आपको ठंडा लगेगा, गरम लगेगा, ठीक है, कुछ कुरेदने का मन करेगा उसको, तो वो मसूड़े का दर्द है। लेकिन दांत का जो दर्द है, जो कैविटी के बाद दांत में दर्द होता है, बहुत तीव्र दर्द होता है, मतलब वो असहनीय दर्द होता है, नर्व वाला, जैसे नस वाला दर्द होता है उतना गंभीर दर्द होता है।
1: तो सर इससे बचने का,
0: एक ही तरीका है, प्रॉपर ब्रश करो, सफाई रखो, हाइजीन, ओरल हाइजीन सबसे बड़ी चीज है, वो मेंटेन करेंगे तो आप डेंटिस्ट से बचे रहेंगे, उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे।
1: ऑलराइट डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं हमारी महिलाओं के लिए पूछना चाहूंगा, जो मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपने दांतों की देखरेख कैसे करें?
0: देखिए सर, प्रेगनेंसी में क्या है, जो हमारी माता बहन है उनकी बॉडी में हार्मोन लेवल काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है। उस हार्मोन की वजह से दांतों और मसूड़े पे उस जो भी नुकसान होना है वो कई गुना बढ़ जाता है, तो उस समय मतलब अगर छोटी सी गंदगी है तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगी, ठीक है। तो उसके लिए माताओं बहनों को सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और एक जो हमारे इंडिया में मिथ है कि हाँ भाई माता लोग या हमारी जो पुरानी माता जी है वो बोलते हैं कि हाँ भाई डिलीवरी के बाद 1 से 1.5 महीने आप उसको ब्रश ही नहीं करने देते, ये एक बहुत गलत, ऐसा करने से आप सोचो जब डिलीवरी होती है डिलीवरी के बाद पूरा ध्यान उस जच्चा के खाने पीने के पीछे ही रहता है, वो पूरा दिन कभी कुछ खाएगी कभी, बिकॉज उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। और आप अगले 2 महीने ब्रश नहीं करोगे तो सोचो दांतों की और मसूड़ों की क्या हालत हो। तो मैं तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो भी लेडीज आती है कि नहीं जी मेरी सासू माँ ने बोला था कि नहीं ब्रश नहीं करना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सासू माँ को बताने की जरूरत ही नहीं है आपको ब्रश करना है नहीं करना, आप बाथरूम में गए चुपचाप ब्रश उठाओ ब्रश कर लो, कौन देख रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: उससे आपकी सासू माँ को पता नहीं चला और आपके दांतों की भी देखोगे,
1: बिल्कुल। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सर, मुझे ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि सबको बता के किया जाए, बहुत अच्छी बात है। सो अब जो है आपके मन में जो भी मिथ है आई होप वो आज सारे दूर हो रहे होंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने दांतों की बात करी, पेन की बात करी, तो इसका ट्रीटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और कितने समय में स्टार्ट कर देना चाहिए पीस?
0: जैसे ही आपको दर्द हो, कायदे में
1: कई लोग अवॉइड करते हैं, जैसे अवॉइड कर देते हैं, आज डिले कर दिया कल चले जाएंगे परसों चले जाएंगे।
0: देखिए सर, दांत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर आपको दर्द है तो उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास है, आप पेन के खा के दांत का इलाज नहीं कर सकते,
1: करेक्ट।
0: आप पेन किलर खा के दर्द खत्म कर सकते हो, और अगर आप इलाज नहीं करा रहे तो यकीन मानिए आपका दांत भी खत्म हो जाना है।
1: ओ माय गॉड, मतलब ये बहुत बड़ा रिस्क भी है
0: जी।
1: ओके सो दोस्तों, देखिए तमाम सारे मिथ आज आपके दूर हो रहे हैं, एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगने वाला है। डॉक्टर साहब एक और सवाल, इसी बीच मेरे जहन में तमाम सारे सवाल आ रहे हैं और आज मैं सोच रहा हूँ भर भर के जितने भी सवाल है सब क्लियर कर लूँ, क्योंकि मौका कभी कभी मिलता है हमें। अच्छा, कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो ये दुर्गंध मतलब दांतों की वजह से आती है, खाना फंसा रह जाता है इस वजह से, या कुछ और रीजन है?
0: सर, मुंह से दुर्गंध के 2 कारण हो सकते हैं, एक तो लोकल रीजन मतलब अगर आपका दांतों में गंदगी है तो मुंह से बदबू आएगी, ठीक है। कई बार हम देखते हैं कि आदमी के दांत साफ हैं, ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी मुंह से बदबू आ रही है, तो इसका दूसरा कारण है कि उस आदमी का या बंदे का डाइजेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो भी आपके मुंह से स्मेल आती है, जो आप रिफ्लेक्स से जाते हैं वो बदबू के रूप में बाहर आते हैं।
1: मतलब इसका दांतों से कोई लेना देना है
0: नहीं, बदबू के 2 कारण है, एक तो दांतों दांत है,
1: ठीक है,
0: अगर दांत आपके साफ है उसके बाद बदबू आ रही है तो इसका मतलब आपका पेट खराब है।
1: ओके,
0: आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो अंदर से बहुत सारी गैसेज आती है पेट से, वो बदबू करती है,
1: वो बदबू करती है। ओके ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दांतों में ब्लीच कराना अच्छा होता है, आजकल ये बड़ा ट्रेंड भी हो गया है कि आप दांतों की जो है ब्लीच करा लो, आपकी शाइन बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा दांतों का, तो क्या ये सही में सही होता है क्या दांतों के लिए?
0: सर, ब्लीच कराना मतलब जो हम ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो बेसिकली एसिड होता है।
1: ओके,
0: वंस ए वाइल्ड ठीक है, हाँ भाई किसी की शादी है, एक दिन का प्रोग्राम है, उस दिन आदमी को सबसे सुंदर दिखना होता है, तो उसके लिए आप करा सकते हो, बट रेगुलरली कराना दांतों को नुकसानदायक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक।
1: ओके, मतलब ये ऐसे नहीं, कंटिन्यू नहीं कराना चाहिए, मतलब कभी कभार कोई फंक्शन में जाना है, वन से वाइप जैसे आपने बताया। ओके, तो दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हम ब्लीच करा के आ रहे, तो भाई ज्यादा कराओगे तो दांतों के लिए खतरा होगा कहीं ना कहीं। सर एक सवाल है बेसिकली, जैसे अब मैं अपने घर से रिलेटेड है, मेरे मम्मी है, हमारी दांतों में प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ खाती है तो वो अपने आप हिलने लगता है, तो उनकी शिकायत है कि इस दांत को निकलवा के नया लगवाना है मैंने, तो मतलब क्या वो दांत निकलवा देना चाहिए जो हिल रहा है?
0: सर देखिए ऐसा है, दांत क्यों हिल रहा है पहले तो हमें इसका कारण जानना चाहिए। वो जो हम पायरिया की बात कर रहे थे, ये बेसिकली पायरिया ही है। पायरिया ऐसी बीमारी,
1: मतलब अगर खून नहीं भी आता तो भी पायरिया?
0: या एग्जैक्टली, खून जब पायरिया शुरू होगा तब आएगा, जब पायरिया जब इन्फेक्शन आपकी हड्डी में चला जाएगा फिर आपको ब्लीडिंग नहीं होगी।
1: ओके,
0: वो धीरे धीरे आपकी दांत की हड्डी को गलाता रहेगा, और जब हड्डी पूरी चूरी गल जाएगी तो दांत निकल के बाहर आ जाएगा।
1: ओके
0: तो इसलिए पायरिया भी खतरनाक बीमारी है, वो पूरा टूथ लॉस कर देती है।
1: ऑलराइट,
0: अगर आपको लग रहा है आपका कोई दांत हिल रहा है तो आप जाओ डेंटिस्ट को जाके दिखाओ, वो आपके दांतों की सफाई करेगा, पायरिया का इलाज करेगा। एक चीज और, कई बार दांत हिलने का और भी कारण हो सकता है,
1: जैसे
0: बहुत सारे लोग हैं, मतलब आजकल कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अगर किसी आदमी को, कोई आदमी गुटखा खाता है, कोई आदमी सिगरेट

0: पीता है तो ऐसे लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा
1: होती है।
0: ठीक है, तो अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है या तम्बाकू से रिलेटेड कोई भी चीज वो यूज करता है, कंज्यूम करता है और उसको लगता है कि मेरा दांत अचानक से हिलने लगा, तो उसको एकदम से जाके किसी भी डेंटिस्ट के पास उखड़वाना नहीं चाहिए।
1: ओके,
0: ठीक है। उसका कारण ये है कि वो दांत हिल रहा है, उसको ऐसा लगता है कि नॉर्मली हिल रहा है, बट कई बार मतलब ऐसा होता है कि वो कैंसर की वजह से दांत हिल रहा होता है, तो वो पूरा प्रॉपर चेकअप कराने के बाद ही दांत को उखड़वाना चाहिए। हमारे पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब, अभी जैसे मेरे पास 3 दिन पहले एक पेशेंट आया
1: जी,
0: उसने दुबई में दांत उखड़वाया 4 महीने पहले।
1: अच्छा।
0: हाँ, और वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब ये मेरा जख्म 4 महीने से नहीं भर रहा है। तो मैंने उसको देखा, मुझे देखते ही लगा तो कैंसर का है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैंसर की ज्यादा है। मैंने उसकी बायोप्सी ली, बायोप्सी भेज दी है लैब में, लेकिन मुझे लग रहा है कि हाँ शायद कैंसर ही निकलेगा। और कैंसर ऐसे ही पता चलता है कि जी मैंने दांत उखड़वाया था, लोगों में ये उम्मीद था कि दांत उखड़वाने की वजह से कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। इवन मेरे से एक पेशेंट आया, वो बहुत गुटका क्रोनिक चीवर, ठीक है, और उसको पीछे अक्कल दाढ़ फंसी हुई है। मैंने कहा तुम गुटखा खाते हो, ये तुम्हारी दाढ़ तुम्हारे गाल को काट रही है, मैं इसको निकालना पड़ेगा, अक्कल दाढ़ है, इसका वैसे भी कोई यूज नहीं होता। कहने नहीं डॉक्टर साहब दाढ़ नहीं उखड़वाऊंगा, मेरा वो साला है उसको दाढ़ उखड़वा उसके बाद उसको कैंसर हो गया।
1: ओह माय गॉड।
0: तो वो उसकी जो सोच है वो ये है कि दाढ़ उखड़वाने से कैंसर हो गया, ऐसा नहीं है।
1: ये तो बहुत सारे लोगों का मिथ है फिर कहीं ना कहीं सर।
0: हाँ, गलत है वो।
1: ओके,
0: तो अब वो, अब आप उसकी क्रोनोलॉजी समझो, अब वो तब आएगा या तो उसको कुछ नुकसान हो जाएगा, उससे पहले वो नहीं आएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए मतलब आपको दांत उखड़वाना है तो मतलब डेंटिस्ट के पास जाइए, और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है एक पढ़े लिखे अच्छे डेंटिस्ट को ही दिखाइए।
1: बिल्कुल,
0: ठीक है। अनक्वालिफाइड लोगों को दिखाना मतलब आप अपने दांत के साथ और अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
1: ओह माय गॉड। कई बार होता है ना सर कि छोटे छोटे हम ऐसे ही किसी के पास भी चले जाते हैं, कुछ झोला छाप के पास भी चले जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियों के बीच एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आजकल आपको पता है हमारे सभी लोगों को लाइफस्टाइल कहने कहीं बहुत चेंज हो गया है, एंड खान पान भी बहुत बदल रहा है लोगों का, स्पेशली आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो। आजकल जैसे जंक फूड एकदम से ना बहुत छाया हुआ है लोगों के दिमाग में, जहन में, तो क्या इससे भी हमारे दांतों की सेहत पे कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है?
0: जंक फूड तो आपके पूरे सिस्टम को खराब करता है।
1: ओके,
0: जनरली जंक फूड क्या है, वो स्टिकी फूड होता है, तो वो दांतों में ज्यादा चिपकता है, उसको साफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जो ट्रेडिशनल फूड है उसके मुकाबले दांतों से ज्यादा चिपकता है, तो उससे कैविटी होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। इतना नुकसान है, बाकी जो आपके सिस्टम को, आपके डाइजेशन को नुकसान है वो एक अलग चीज है।
1: ओके, अच्छा जैसे बहुत सारे लोगों के दांतों में आपने देखा होगा येलोपन आ जाता है, तो वो येलोपन मतलब किस वजह से बनता है वो येलो परत, क्या वो लाइफ में कभी हटेगी भी या नहीं? जैसे कुछ लोगों का मिथ हो जाता है कि कभी हटेगी नहीं, आप कितनी ब्रश कर लो, कितनी ब्लीचिंग करा लो,
0: दांत कभी भी व्हाइट नहीं होते।
1: ओके,
0: वो थोड़े से पीले होते ही है, ठीक है, अंदर डेंटिन होती है, वो बिल्कुल येलो होती है, उसके ऊपर हमारा इनेमल होता है।
1: ओके,
0: तो इनेमल की थिकनेस के ऊपर उस दांत का कलर डिपेंड करता है।
1: ओके,
0: और ये कलर आदमी के स्किन के कलर पे भी डिपेंड करता है।
1: ओके,
0: ठीक है, जैसे कोई ब्लैक आदमी है, मतलब जो अफ्रीकन है, उनके दांत हमेशा आपको सफेद ही दिखाई देंगे, चाहे वो व्हाइट है चाहे येलो है, और उसके कंट्रास्ट अगर आप किसी व्हाइट पर्सन को देखो, किसी अंग्रेज को देखो, ठीक है, उस दांत आपको हमेशा पीले दिखेंगे, क्योंकि वो तो इतना व्हाइट है, उससे ज्यादा व्हाइट उसके टीथ हो ही नहीं सकते। इसके अलावा अगर दांत गंदे, अगर वो गंदगी की वजह से पीले हैं, तो उस गंदगी को साफ करके दांतों को साफ किया।
1: अच्छा, मतलब तो उसके लिए आपको रेगुलरली ब्रश और सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नीम की दातुन करो, दातुन चबाओ, ये ब्रश से अच्छी होती है, तो आपका क्या सजेशन होगा?
0: सर, नीम की दातुन मसाज कर सकती है, वो ब्रश नहीं कर सकती।
1: वही ना, कई लोग उसको चबा के उसका फूल बना के ब्रश करने की कोशिश करते हैं।
0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, नीम की दातुन बहुत बढ़िया है, नीम की दातुन आपने पूरी क्रश कर दी तो वो इतनी सॉफ्ट होती है, वो दांतों के बीच में जाके साफ ही नहीं कर सकती,
1: इनफैक्ट फंस और जाएगी, छोटी छोटी होती है वो फंस जाती है, तो मतलब ब्रश का ही इस्तेमाल करना है।
0: एग्जैक्टली, ब्रश से साफ
1: मिला के। तो दोस्तों देखिए, जागो श्रोताओं, जागो, अब ब्रश करने की बारी, अब जो है एक्सक्यूज़ मत दो, सुबह हो या शाम ब्रश करना जरूरी है, ये छोटा सा है काम सर। डॉक्टर साहब, आपसे तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, दांतों की हेल्थ के ऊपर तमाम इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, तो आप बताइए सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है, अभी ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी वाइब चेक कर लेते हैं, आप रेडियो स्टेशन में बैठे हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड है।
0: नहीं, डेफिनेटली, मतलब इट इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग हियर, और आप आपका, मतलब मैं सुनता ही था, आज मैं आपको साक्षात देख रहा हूँ तो ऐसी फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि नहीं यार आपका काम भी काफी हार्ड है, इट्स नॉट सो सिंपल.
1: एग्जैक्टली,
0: ठीक है,
1: मतलब चैलेंजिंग भी है आई थिंक.
0: एग्जैक्टली, मतलब आपको जनता की नब्ज पहचाननी है, ठीक है, जो दूसरा बंदा आपके सामने उसकी भी नब्ज पहचाननी है, मतलब यू शुड हैव ए वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. जो मैं देख रहा हूँ आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का.
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि सर जिस काम को आप करते हो ना वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली करते चले जाते हैं तो अपग्रेड होती चली जाती हैं. आप दांतों के डॉक्टर हैं, हम रेडियो के डॉक्टर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नो डाउट. सो वेल आगे बढ़ेंगे सर, एक और क्वेश्चन है. जैसे बहुत सारे लोगों के दांत खराब हो जाते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि अभी किसी काम के नहीं रहे और वो कहीं बार डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं. कहीं ऐसे बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लोग आज भी इतने अवेयर नहीं है, तो अगर किसी वजह से किसी के दांत खराब है या कोई दिक्कत परेशानी है दांतों में तो उसका बेसिकली सही तरीका क्या होगा?
0: सर अगर किसी के दांत खराब हो गए हैं तो पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उसको इलाज करके सही कर लें.
1: ओके.
0: क्योंकि नेचुरल के जैसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, वो नेचुरल खराब होने के बाद भी अगर वो सही हो सकता है तो आपके लिए वो सबसे अच्छा है. बट अगर आपका दांत किसी भी कारण से उखड़ गया है तो अभी बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है, ठीक है, आप ब्रिज लगवा सकते हैं. और ब्रिज में क्या है, आपको साइड वाले दांत घिसवाने पड़ते हैं, दांत घिसने का मतलब दांत का नुकसान होना. बट एक दूसरा तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलरली है, काफी पॉपुलर है और चल भी रहा है, डेंटल इम्प्लांट. डेंटल इम्प्लांट देखिए नेचुरल जैसा ही है, नेचुरल नहीं हो सकता, बट आपको उससे बिल्कुल नेचुरल जैसी फीलिंग आएगी. और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है, जरा सा हल्का सा चीरा लगाते हैं, ड्रिल करके लगा देते हैं.
1: ओके.
0: और बिल्कुल नेचुरल जैसा दिखाई देता है और आप उससे कुछ भी चबा सकते हैं.
1: ओके.
0: इम्प्लांट लगाने में कोई दर्द नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती है और आपके दांत बिल्कुल नेचुरल जैसे ही दिखाई देंगे, बशर्ते वो जो लगाने वाला है वो एक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो अनुभव वाला डॉक्टर होना चाहिए.
1: एक्सपीरियंस होल्डर.
0: एग्जैक्टली.
1: ओके.
0: वो सारा स्किल का खेल है. अगर आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट भी मतलब बोलेगा, लगेगा कि नहीं यार मतलब वो नेचुरल जैसा दिखाई देगा.
1: ओके.
0: इंडिया में दांतों की थोड़ी सी मतलब वैल्यू कम है लोगों को, उनको लगता है कि बिना दांत के भी सारी चीजें हो जाती है, ऐसा नहीं है. एक आदमी को अगर दांत नहीं है तो वो खाना चबा के नहीं खाता. खाना चबा के नहीं खाएगा तो उसका पेट खराब होगा. उसका पेट खराब होगा तो वो डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा, वो फिजिशियन के पास जाएगा. और वो पूरी उम्र पेंटोप्राजोल, ठीक है, रेव्यूप्राजोल या वो गैस वाली दवाइयां पूरी उम्र खाता रहेगा.
1: खाता रहेगा, करेक्ट.
0: तो दांत का काम तो दांत ही करे, पेट नहीं कर सकता, उसकी एक लिमिट है, कब तक करेगा.
1: बिल्कुल सर.
0: और जैसा सभी जानते हैं कि भाई जो डाइजेशन है वो 50-60% ओरल कैविटी में ही हो जाता है. जब आपके दांत खाने को अच्छे से चबाएंगे, सलाइवा आके मिक्स होगा, बहुत सारे एंजाइम उसमें मिक्स होंगे, तो डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है.
1: बिल्कुल
0: ठीक है. अगर आपके मुंह में दांत नहीं है तो वो वाला काम हो नहीं रहा है. उस काम के लिए फिर पेट पे डिपेंड रहना पड़ेगा, पेट वो काम कर नहीं पाता, तो अल्टीमेटली आपको गैस कब और इन सब चीजों से गुजरना.
1: ओके. सो श्रोताओं छोटी छोटी बातें हैं एंड आई एम श्योर ये बहुत काम की होंगी, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. डॉक्टर साहब जाते जाते मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है. जैसे छोटे बच्चों के बारे में आपने बात करी थी अभी कि ब्रशिंग का उनका टाइम बेसिकली, तो कई बार ना बच्चों के ब्रशिंग के साथ साथ उनका जो नेचुरल डाइट होता है वो भी हमारे दांतों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो हमारा नेचुरल खान पान जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी दांतों की हेल्थ के लिए, चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो.
0: देखिए सर नेचुरल तो हमेशा बेस्ट होता है, लेकिन
1: स्पेशली जैसे दांत, कुछ लोग कहते हैं मैं आपको बीच में कि दूध ले सकते हो कैल्शियम, दांतों के लिए बहुत जरूरी होता है, तो इस तरह की कुछ.
0: नहीं, दांतों के लिए कैल्शियम रिच डाइट या मतलब आयरन कैल्शियम ये सारी चीजें जरूरी है, वो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए भी जरूरी है और दांतों के लिए भी जरूरी है, ठीक है. बट न्यूट्रिशन के लिए पहले दांत होने चाहिए.
1: ओके. हाँ बिल्कुल सही बात है,
0: ठीक है. अगर आप चबा के ही नहीं खा पाओगे तो न्यूट्रिशन कैसे
1: प्रॉपर होगा.
0: बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है ना तो दूध के दांत निकल जाएंगे. अगर ऐसी बात थी तो नेचर ने क्यों दिए.
1: सही बात है,
0: भगवान ने, कुदरत ने, अल्लाह ने क्यों दिया इनको, इन जरूरत है.
1: जरूरत है, करेक्ट.
0: जब तक परमानेंट दांत नहीं आ जाते तब तक इनकी जरूरत है, तब तक बच्चा उन्हीं से खा रहा है, तो उनकी केयर करना भी जरूरी है. बच्चे के दांत में एक बार दर्द हो गया तो किनमानी वो नहीं खाएगा.
1: करेक्ट.
0: ठीक है, आपने उसको मेडिसिन दे दी, दर्द बंद हो गया, आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए, बट उसको कंटिन्यूअसली दर्द हो रहा है, तो वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद बोलना भी छोड़ देगा, बट वो उधर से चबाना भी छोड़ देगा. ठीक है. और अगर यही कंडीशन दूसरी साइड भी होगी तो बिल्कुल ही चबाना छोड़ देगा, वो चबाने वाली चीज जो है वो खाएगा ही नहीं. और यकीन मानिए अगर बच्चा चबा के नहीं खा रहा है तो उसके जबड़े की ग्रोथ भी नहीं होगी.
1: अच्छा. और सर जब चबा के खाना खाते हैं तो उसके रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं.
0: एग्जैक्टली.
1: तो थैंक यू सो मच, आपने तमाम जानकारियां दी आज हमारे सुनने वालों को, और ये जो इन्फॉर्मेशन है तमाम लोगों तक बहुत हेल्प करने वाली है। सो सर जाते जाते कोई एक अपनी तरफ से सबकी दांत स्वस्थ रहे, मस्त रहे और दांतों की हेल्थ के लिए कोई एक अच्छा सा।
0: सिर्फ एक ही मंत्र है, सफाई, ओरल हाइजीन, उसके लिए आप दोनों टाइम प्रॉपरली ब्रश कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, साल में एक बार अपने डेंटिस्ट को जाके चेकअप करा लीजिए, क्योंकि अगर कोई परेशानी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा।
1: ओके,
0: वो सिर्फ आपका डेंटिस्ट ही चेक करके बताएगा कि इस दांत में ये परेशानी है और उसका समय से इलाज हो जाएगा।
1: अरे वाह, क्या बात है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने भी इस इन्फॉर्मेशन को सुना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमें अपने मैसेज जरूर पहुंचाइएगा, अपने फीडबैक। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। हमारा नंबर बहुत सिंपल है, 9837896896, और ऐसी तमाम सारी जानकारी आपके लिए हम लेकर

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में और आप अर्जुन हीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं श्रेया घोषाल और उदित नारायण जी की आवाज में बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है राधा राधा। और आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव जी। और समय की बात करूं तो 9:10 हो चुके हैं श्रोताओं, और जैसे ही त्योहार नजदीक है वैसे ही हर चीज की यानी कि महंगाई बढ़ती जा रही है, चीनी से लेकर सब्जी तक। यानी कि ऊपर से अब ये कहा जा, देखिए सब्जी तो महंगी हो ही गई है, 60 रुपए किलो से नीचे कोई भी आपको सब्जी नहीं मिलेगी। एक आलू ही है जो 20 से 25 मिल रहे हैं, अदरवाइज सारी सब्जी महंगी हो गई है। चीनी यानी कि 65 और 70 के करीब में पहुंचने वाला है आगे आगे देखिए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अरहर की दाल जो कि पहले 120 रुपए किलो मिल रहा था, अब वो आपको मिलेगा यानी कि 150 रुपए किलो। यानी कि अरहर की दाल भी महंगी कर दी गई है, साथ ही साथ चावल भी महंगे हो चुके हैं। यानी कि 90 से सीधा वो 100 पर पहुंच चुका है, 100 रुपए किलो। अगर आप सामान लेने जा रहे हैं तो एक बार मोल भाव जरूर। हर चीज महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरा एक मेरे दिमाग में ना एक सवाल हमेशा, जब भी कुछ ऐसी होती है तो सवाल तो देखिए हर किसी के मन में होता है कि हर चीज तो महंगी होती जा रही है। सरकार सुबह से लेकर यानी कि लंच से लेकर डिनर तक की हमारी यानी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है। तो सरकार को ये भी ऐलान कर देना चाहिए कि हर कंपनी, कोई भी कंपनी हो, सबकी सैलरी भी बढ़ाए। अब देखिए बढ़ती जब सामानें बढ़ रही हैं, हर चीज महंगी हो रही है, तो सैलरी भी सबकी और महंगी होनी चाहिए, और भी ज्यादा होनी चाहिए सबकी सैलरी। इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए। बाकी आपका क्या राय है, आप अपना राय भी हमें बता सकते हैं। नंबर है 9823789689। आज जो रीना के साथ कनेक्ट होकर श्रोताओं बिंदास मॉर्निंग शो में मैसेज की बात करूं तो हमारे पास जनकपुरी सहारनपुर से जोन ओजिस पलवली जी कनेक्ट हो गई है गुड मॉर्निंग के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और ये लिखते हैं हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस विद स्माइल न्यू वीक। ओके चलिए, फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं श्रोता हो तो मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट हो गए हैं। आपको और सभी रेडियो सुनने वाले को यानी कि सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। और बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं राकेश वर्मा जी।

और अगले मैसेज की बात करूं तो आरजे रीना जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, तुसी बड़ी मेहनत कर रही हो, गुड वाली मॉर्निंग है जी, क्या बात है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी आज जी क्या करे सर। ये तो हम देखिए जब भी आपको मिले, मौका मिले मॉर्निंग में शो करने का इवनिंग में, तो मुझे लगता है कि मौका जो मिले आपको तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। बाकी कल से शायद आरजे आनंद आप सभी के साथ कनेक्ट ही हो जाए, उम्मीद है कि वो कल से कनेक्ट हो जाएंगे। खैर अभी उनके पापा जी के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है, तो बस महादेव से यही मतलब प्रार्थना है कि आज कल उनके पापा जल्दी मिल ही जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया, यानी कि सोमवार के दिन ही उनके पापा गुम हुए थे और आज जो सोमवार है, तो बस भगवान करे जल्दी मिल जाए और वो आप सभी के साथ कनेक्ट हो। फिलहाल एक गाना आप सभी के बीच,

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
6: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। बिंदास मॉर्निंग शो में और समय की बात करें तो 9:24 हो चुके श्रोताओं, और आज का इतिहास भी और आज का डे भी बहुत ही खास है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे का हो सकता है, अरे अरे बिल्कुल, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 1991 में यूक्रेन में यानी कि आज इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी हर देश के लिए कितनी कीमती होती है। हर देश में यानी कि देश धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया जाता है, और साथ ही साथ आज एक और खास स्पेशल डे है ये, यानी कि इंटरनेशनल स्ट्रेंजर म्यूजिक डे, यानी

आज कुछ अलग सुनने का दिन, रोज वही गाने सुनने की बजाय आज किसी ऐसे म्यूजिक को सुनिए जो पहले आपने कभी नहीं सुना हो। कोई नई भाषा, नया म्यूजिक स्टाइल या अलग कोई देखिए आजकल अगर देखा जाए पहले के ओल्ड इज गोल्ड यानी कि पहले के जो गाने होते थे बड़े समूह, हर कोई उसको आसानी से समझ लेता था और उन गानों में इतना म्यूजिक भी नहीं होता था, बिल्कुल आराम से इंसान सोते सोते भी सुन लेता था, उसको नींद आ जाती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, म्यूजिक बहुत लाउड हो गया है और डीजे की बात कर लीजिए, कल की अगर मैं बात करूं मुरादाबाद की गलियों में भैया इतना लाउड वाला डीजे था ना कि भाई कोई इंसान जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो ना वो जाए ना वही उसकी हार्ट फेल हो जाए। अब जैसे जैसे मॉडल यानी कि देश होता जा रहा है, मॉडल तरीके से हर चीजें बदलती जा रही है, तो आप में भी लगन है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, तो बिल्कुल सीखिए। लेकिन जो आपका लगता है कि नहीं मैं ये चीज कर सकती हूँ, मैं वो चीज कर सकता हूँ, बट आप किसी के कहने से वो चीज नहीं कर पा रहे तो गलत बात है। मुझे लगता है कि आप अपनी सुनिए और अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं वो करिए, क्योंकि कर आप सकते हैं। बोलने वाले तो बहुत आपको बोलेंगे, अलग अलग तरीके से राय भी देंगे, लेकिन आप अपना देखिए कि आप कैसे बेटर कर सकते हैं। और मैसेज की तरफ बढ़ो तो बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी आपके हम प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। चलिए श्रोताओं फिलहाल एक गाना सुनते हैं और ये गाना भाई सच बताऊं हर किसी का फेवरेट वाला गाना होता है। आज जिनका जिनका फास्ट है यानी कि चौथे सोमवार की यानी कि अंतिम सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की जो आशीर्वाद है आप सभी के ऊपर हमेशा यूं ही बरसती रहे। और आज भैया धूप निकलेगी, कड़ाके वाली धूप निकलेगी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं और लौट कर आते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। We'll be right back.

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। यो योहानी सिंह, दिल चोरी साडा हो गया वे, की करिए की करिए। हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में आरजे रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 9:37 हो चुके हैं, और यानी कि रक्षाबंधन पर यानी कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में यानी कि मुरादाबाद की जितने भी प्यारी प्यारी विमनियां हैं, गर्ल्स है, उनके लिए एक बहुत ही शानदार वाला गिफ्ट मिल चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या गिफ्ट। देखिए, हर तरफ अलग अलग है, यानी कि कहीं पर 27 तारीख से ही लेकर 31 तारीख तक बस की सेवाएं फ्री है, लेकिन अपने मुरादाबाद की अगर मैं बात करूं तो 27 अगस्त से लेकर यानी कि 29 अगस्त तक सभी बहनों के लिए बस सेवाएं यानी कि फ्री है। आप फ्री यात्रा कर सकते हैं, आप अपने घर जा सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, लेकिन आपने सरकारी बस में ही बैठना है। अदरवाइज आप प्राइवेट बस में बैठते हैं तो शायद पॉकेट से खर्चा हो सकता है तो इस चीज का भी आपने पूरा ध्यान रखना है कि प्राइवेट बस में नहीं बैठना है आपने, सरकारी जो यूपी बस है उसमें बैठना है, उत्तर प्रदेश वाली बस में आपने बैठना है, और आपको उसमें कोई भी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। तारीख ये नोट कर लीजिए जी, 27 तारीख से लेकर 29 अगस्त तक ये मौका आपके रहने वाला है आपके पास। यानी कि आप 27 को घर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं, कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। अगर आप सोच रहे होंगे कि पहले अपने हम जाएंगे, दो दिन रह के भी आएंगे, तो 29 तारीख को आप रिटर्न आ सकते हो, तो भी आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला है। चलिए, फिलहाल कुछ मैसेज भी हैं, उनको भी शामिल करते ही रहेंगे। हर हर महादेव। रीना जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से कनेक्ट हो गए हैं, कश्मीर से कनेक्ट होते हैं मिराज उद्दीन जी। थैंक्स आरजे, ओके, वाव, नाइस सॉन्ग, थैंक यू जी कि आपको गाना अच्छा लगा। और एक रक्षाबंधन का हम गाना प्ले करेंगे आप सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन है। और भाई, मार्केट में ना सच बताऊं तो अलग ही रौनक है, हर तरफ राखी ही राखी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इस रक्षाबंधन पे आपने एक चीज और भी ध्यान रखनी है, जो भी आप मिठाइयां ले रहे हैं उसके ऊपर भी थोड़ा नजर जरूर डालिएगा, क्योंकि आपने सोच समझ कर चीजें खरीदनी है, क्योंकि इस टाइम मिलावटें भी बहुत ज्यादा आती है महंगाई के साथ साथ, इसका भी आपने ध्यान रखना है। और अगली बार फिर एक म्यूजिक के बाद कनेक्ट होंगे, कड़क म्यूजिक के साथ। चलिए, फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग।

0: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में। और समय की बात करूँ तो 9:46 हो चुके हैं श्रोताओं। और इसी बीच आप सभी के लिए मैं लेकर आ गई हूँ कड़क म्यूजिक, जिसको आपने सुनना है और राइट आंसर हमें आपने पहुंचाना है। तो रेडी है ना जी? आई नो कि आप सभी रेडी हैं। फिलहाल मैसेज की बात करते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार यानी कि प्रेम नगर लाइन पर मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं। शुभ सोमवार यानी कि सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चौथे सोमवार है। अगले मैसेज की बात करूं तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन हंसारी जी, इनके दोस्त है सैयद शारिक अली, जहीर अहमद, कदीर अहमद। गुड मॉर्निंग रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, बिंदास मॉर्निंग शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं आप, थैंक यू सो मच जी। और कश्मीर से कनेक्ट होते हैं, इनका कहना है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही है मैडम जी, थैंक यू सो मच जी। तो आज का हमारा कड़क म्यूजिक भी बहुत ही कड़क वाला है सर, उसको आपने सुनना है और गेस करना है कि आखिरकार गाने का क्या नाम है और प्लस मूवी का भी नाम आपने बताना है। तो चलिए आसानी से बता पाएंगे, सच बताओ, ये तो हर कोई भाई इस मूवी का दीवाना था, सच बताओ। तो चलिए,
1: तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगी।

हाँ जी, क्या सोच रहे हैं? सोचिए सोचिए और महसूस करिए कि आखिरकार ये जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है, गाने का क्या नाम है? क्योंकि आज तो मैंने बहुत आसान वाला आप सभी से म्यूजिक पूछा है, क्योंकि इस गाने को हर कोई सुनता भी है और ये मूवी भी हर किसी ने देखी होगी। तो अपने गाने का नाम बताने प्लस मूवी का भी नाम बताने, एक बार और मैं रिपीट करती हूँ वंस अगेन।

चलिए जी, सोचिए, महसूस करिए कि ये जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था, गाने का क्या नाम है। एक और गाना आप सभी के बीच, और उसके बाद फिर एक और अपडेट के साथ आप सभी के साथ कनेक्ट होंगे, और जो आपके मैसेज आएंगे वो भी शामिल करेंगे। क्या कहना जी, एक बार और म्यूजिक प्ले कर दिया जाए? चलिए जी, एक बार और प्ले करते हैं।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, उदित नारायण जी की अलका याग्निक जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। दिल है तुम्हारा 2002 में भी मूवी रिलीज हुई थी भैया। और साथ ही साथ आज के वेदर की बात कर लेते हैं, यानी कि 24 अगस्त है और समय की बात करूं तो 9:54 हो चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि भैया आज 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश आने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, बिहार, नई दिल्ली और साथ ही साथ मुरादाबाद, अलीगढ़, कानपुर, अजमगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, बहुत जगह आज बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। और भाई बारिश आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, लेकिन अपनी सेहत का आपने ध्यान रखना है, मच्छरों से बचने का भी आपने ध्यान रखना है। कूलर अगर आप यूज करते तो उसका पानी आपने चेंज करना है, गमलों का भी पानी आपने देखना है कि इकट्ठा पानी नहीं होने देना है, यानी कि अपने आसपास साफ सफाई रखना आपके लिए बहुत जरूरी है श्रोताओं। और साथ ही साथ आज का कड़क म्यूजिक मैंने पूछा है, जल्दी सोचिए और महसूस करिए क्योंकि समय बहुत कम है। और साथ ही साथ आज सावन का अंतिम सोमवार है और आज बहुत जगह आज एकादशी का भी फास्ट रखा जाएगा, फिलहाल हमने तो कल ही रख लिया है। पता नहीं भैया क्या हो गया, हर त्योहार अब दो दो तीन तीन बार मनने लग चुके हैं। अब बताओ आज आधे आज एकादशी का फास्ट रख रहे हैं, हमने कल रख लिया है, बस क्या है, भगवान का नाम लेते रहिए और अपनी सुबह की शुरुआत अच्छे पॉजिटिविटी के साथ करते रहिए, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव रहेंगे आपका ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा। और कोशिश करिए नेगेटिव बातों से आप दूर रहे, जितना आप नेगेटिव बातों से दूर रहेंगे आपका माइंड भी उतना ही सही रहेगा। चलिए फिलहाल एक म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, उसको आपने सुनना है, ध्यान से समझना है। देखिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहने वाला है।

हाय हाय जी, जल्दी जल्दी सोचो आखिरकार क्या है इसका राइट आंसर। बापू, चलिए जी फिलहाल इतना ही बता पाएंगे हम भी, और आपने सोचना है, महसूस करना है। नंबर है 9837896896। एक और गाना हम आप सभी के बीच प्ले करते हैं जो कि बहुत ही शानदार गाना है, और इसके बाद सीधा आपके मैसेज पर हमला बोलने वाले हैं जी। तो बस श्रोताओं यही कहेंगे कि सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

जी गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में श्रोताओं आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है और समय की बात करूं तो 10:00 यानी कि 4 मिनट हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 24 अगस्त देखिए यानी कि रक्षाबंधन के मौके पर बस तो फ्री खरीद दी गई है लेकिन साथ ही साथ ट्रेनों की सुविधाएं भी यानी कि जो ट्रेनें हैं यानी कि इस टाइम 47 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं ताकि रक्षाबंधन पर भाई घर जाने वाले हैं या फिर बहन अपने भाई के घर आने वाली है उनको किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो उनके लिए यानी कि साथ ही साथ यानी कि 47 ट्रेनें स्पेशल चलाई गई हैं ताकि आप घर आसानी से पहुंच सके। अगर आपको एक ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दूसरी ट्रेन में जा सकती हैं लेकिन इस त्योहार पर ये जो इतना प्यारा फेस्टिवल है यानी कि भाई बहन का रिश्ता होता है लड़ ले झगड़ ले दुश्मन वाली लड़ाई करते हैं। सच में मेरी तो सच बताऊं मेरे भाई के साथ इतनी गंदी वाली लड़ाई होती है ना कोई तो हमेशा मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं ऐसे लड़ाई तो दुश्मन के बिना होए और फिर 2 सेकंड में हम ठीक हो जाते हैं। तो मतलब एक भाई बहन का प्यार होता है ना निस्वार्थ प्यार जिसको बोलते हैं जैसे मम्मी पापा के प्यार होते हैं वैसे भाई का प्यार होता है और एक बड़ा भाई पिता का फर्ज निभाता है। तो ये वाला जो रिश्ता है ना लड़ाई भी नोक झोंक भी हो लेकिन थोड़ी देर बाद में फिर सब ठीक हो जाता है फिर बोलने लगते हैं चल भाई घूमने चलते हैं फोटो खिंचवा

0: आते हैं, मतलब ऐसा रिश्ता है, ऐसा रिश्ता मिलेगा कहाँ मिलेगा जी, इतना शानदार वाला रिश्ता है। इसीलिए सरकार भी चाहती भैया किसी भी परिकार से आपको किसी भी तरह का परेशानी ना आए, इसीलिए स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं और बस की सुविधाएं हैं वो भी फ्री कर दी गई हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट बस में जाते हैं तो आपको कोई सुविधाएं शायद नहीं मिलने वाली है, इसीलिए बस भी आपने चेक करना है कि भैया ये उत्तर प्रदेश वाली बस है या फिर प्राइवेट बस है। इस चीज का जो रोडवेज वगैरह है वो उनमें फ्री है। तो आज मैंने आप सभी के बीच एक म्यूजिक प्ले किया था और देखिए भैया मैसेज करके एक सेकंड के अंदर कैसे आप सब डिलीट कर देते हैं, भाई क्या बात है। मैंने कहा लगता है मेनू आप गलत आंसर तो नहीं पहुंचा रहे, इस वजह से आप जल्दी से मैसेज डिलीट भी कर देते हैं, क्या कमाल की बात है। लेकिन देखिए जी 10 बजे नहीं, लेकिन भैया खुशी जी हमारे गाने प्ले कर दीजिए, ये प्ले कर दीजिए, लेकिन हमने जो पूछा है उसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, कतई भी दिमाग नहीं लगाना है आपने। देखिए जी दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए एक बार और मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ, एक और चांस आपको मिलता है सुनने के लिए और आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं क्योंकि अगली बारी आप सभी के मैसेज की ही है।
1: पहलवानों की जिंदगी जियोगी,

0: चलिए जी, फिलहाल एक और मौका आपको मिल चुका है सोचने के लिए।
1: अन्नों की जिंदगी जी होगी।
0: म्यूजिक और मूवी का नाम बताना था, सोच लीजिए क्या हो सकता है। फिलहाल एक गाना आपको सुनवाते, बहुत ही शानदार वाला, बहुत ही झकास वाला, ये गाना सभी का बहुत फेवरेट है।
2: हाय हाय, ये तेरा कन्हैया।
0: जन्माष्टमी भैया 4 सितंबर को है, लेकिन गाने में भाई एकदम

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
4: हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो में, लेकिन समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती है भैया, क्योंकि समय हो चुका है 10:11। चलिए फिलहाल म्यूजिक प्ले करते हैं आज जो मैंने आप सभी से पूछा है।
5: पहलवान जिंदगी जियोगी।
4: चलिए भैया मैसेज तो बहुत आगे हैं, अब ये देखना है कि सबसे पहले किनका मैसेज आया है और कौन विनर बनते हैं आज की सुबह। रीना जी नमस्ते, सलीम अंसारी जी कनेक्ट हो गई हैं, इनके वाइफ इनकी बीवी का नाम है चमन और बेटी का नाम है इनाया शनाया। दंगल मूवी से ये गाना आपने प्ले किया है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है आए हाय। लेकिन पापा से बढ़कर कोई हीरो नहीं होता है और आप बन चुके हैं सलीम जी विनर, बन चुके हैं बिंदास मॉर्निंग शो के, क्योंकि इन्होंने भैया सबसे पहला राइट आंसर पहुंचा दिया है। क्या बात है सर, एंजॉय करिए। अगले मैसेज की बात करूं फिलहाल तो अब देखना ये भैया सबने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए हैं। बापू सेहत के लिए हानिकारक है दंगल मूवी से है रीना जी। गुड मॉर्निंग बिंदास मॉर्निंग शो में, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे जी। और गाने बिंदास प्ले कर रही हैं। ललिता कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि आज आखिरी सोमवार के यानी कि सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आपको भी हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव जी। एक वॉइस मैसेज आया है, जरा उनको भी नजर देखते हैं भैया ये मधुर आवाज में क्या कहना चाहती हैं।
6: जी कैसे हो, मैं आपको बताती हूँ। मूवी है दंगल और सॉन्ग है बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है।
4: चलिए जी, ये भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट हो गई हैं, बापू सेहत के लिए। अगले मैसेज की बात करूं तो दंगल मूवी से हैं राधे राधे रीना जी, राधे राधे मैम और बापू सेहत के लिए तो हानिकारक हैं। अलका वर्मा जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती हैं। हानिकारक बापू फ्रॉम मूवी दंगल और ये हमारे साथ कनेक्ट होती है सृष्टि जैन फ्रॉम मुरादाबाद। गुड मॉर्निंग रीना मैम, कैसी हैं आप? और ये हमारे साथ कनेक्ट होती हैं सना विद माय सिस्टर नाजिया। बापू बापू तू तो आगे बताइए जी, आगे पूरा गाने का नाम बताइए। अधूरा नाम नहीं बताना जी, यानी कि आप थोड़ा कर सही आंसर के साथ कनेक्ट, कंप्लीट नहीं बोलेंगे, अधूरा बोलेंगे।

अगले मैसेज की बात करूं तो भैया ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, यानी कि अविनाश सतनागर जी, और बहुत ही प्यारी लाइनें भी लिखते हैं। क्या बात है सर, लिखते हैं शोले फिल्म में हेमा मालिनी जी का यू की कौन बोला, और रीना जी का यानी कि दोनों के अंदाज में है बात कुछ खास, एक ने पर्दे पर दिल जीता, एक ने रेडियो पर, दोनों के तकिया कलाम ने बना दी अपनी अलग पहचान। आय हाय आय हाय आय हाय, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, यानी कि मतलब ये जुबान पे है सर, हरियाणा वाले जितने होते हैं ना मक्का, यानी कि उनके जुबान पे रहते हैं ये, तो यानी कि मक्का, ये तो आप हर किसी के हरियाणा वाले के मुंह पे सुनेंगे, आप जुबान पे रहती है तो बस। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, दंगल मूवी से जिला मुरादाबाद ग्राम बिजना से रिजवान खान जी कनेक्ट होते हैं, सही आंसर की बात। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुए हैं, बापू सेहत के लिए फ्रॉम मूवी दंगल, दंगल मूवी बापू सेहत के लिए, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, गलत बात है जी, इनके नंबर के 4 डिजिट है 9142। गुड मॉर्निंग रीना जी, नमस्कार नमस्कार जी, और इनका कहना है मुरादाबाद में रहते हुए आपके ऊपर यानी कि यूपी का भाषा का असर दिखने लगा है। अच्छा जी, दिखने लगा है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए बस। यानी अरमका सर यूपी हरियाणा में भी बोलते हैं। आई एम एकता फ्रॉम मुरादाबाद मंडी चौक से कनेक्ट होती हैं, और इनका कहना है गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, दंगल मूवी से बापू सेहत के लिए राइट आंसर के साथ ही भी कनेक्ट हो गई हैं। हर हर महादेव दीदी, हर हर महादेव भैया जी, चलिए श्रोताओं इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से फुर यानी कि जाने की इजाजत, हम आपको मिलेंगे यानी कि आज ही मिलने वाले हैं भैया, ये मैं सोची कि हम कल मिलेंगे, आज ही आपको शाम को मिलने वाले हैं इवनिंग मस्ती शो में, शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आप सभी को एक बार और हर हर महादेव, और यानी कि अंतिम सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि अंतिम सोमवार कोई नहीं होता है, महादेव का तो हर दिन दिन होता है, उनकी आराधना कीजिए सच्चे मन से, वो अपनी भक्तों को अपने भक्तों की पुकार है वो जरूर सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि सावन के महीने में ही वो ज्यादा सुनते हैं, बट ये होता है कि उनका दिन होता है सावन के महीने में, और सावन का जो सोमवार होता है बहुत ही खास होता है, बहुत ही स्पेशल होता है। बाकी आप सभी को हर हर महादेव, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, चलिए जी गाना आप इसी गाने के साथ में लेती हूँ, बाय बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इनसिग्नि

0: किसी रोज क्यों इंतजार करना भैया, हम आ गए आपसे मुलाकात करने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और ऐसे कैसे हो सकता है मंडे हो और खुशी आपसे मुलाकात करने ना आए। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गए उसके लिए सॉरी, बट हाँ दोस्तों देखिए सावन का लास्ट मंडे है आज। और आपको भी पता है कि मंदिर में इतने श्रद्धालु सभी जा रहे हैं जल अभिषेक अर्पित करने के लिए, महादेव जी को जल अर्पित करने के लिए। और इतने भक्तों का रश मंदिर में देखने को मिल रहा था, तो थोड़ा सा हम भी कतार में लगे हुए थे। तो हमने कहा अब महादेव जी बहुत ज्यादा परीक्षा ले ली है आपने, जल्दी से अब हमें भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि महादेव जी इतना बिजी हैं आज कि श्रद्धालु भी क्या ही कह सकते हैं, इतनी भीड़ है, इतना महादेव जी कह सकते हैं कि वो सभी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सभी के जीवन में खुशियां आए। और जो चाहते हैं सब शिव जी भक्तों को दे ही देंगे, ऐसे भोले बाबा हमारे बड़े ही भोले भाले हैं भोलेनाथ। और हम तो आ गए मंदिर से जल भगवान जी को अर्पित करके, एंड आप भी आ गए हैं ना मंदिर से या मंदिर जा रहे हो अभी। बहुत सारे श्रोता हमारे अभी मंदिर से आ चुके हैं, घर पर अभी क्या कर रहे हैं, बैठे हैं और रेडियो को सुन रहे हैं, कुछ ऑफिस पहुंच चुके हैं, कुछ ऑफिस से अभी ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस ऑन द वे कार में है। और खुशी भी अपने ऑफिस पहुंच चुकी है, दौड़ती भागती फिलहाल मैं तो आ गई हूं और आप भी जा रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है केयरफुली गाड़ी चलाइएगा एंड कीप स्माइलिंग एवरीवन। मैं बस अभी लौट कर आती हूं एक छोटे से कमर्शियल एड ब्रेक के बाद, उसके बाद करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। मंडे की सुबह है, आप भी मुस्कुराइए, पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना एवरीवन कि सुबह अगर हमारी खूबसूरत होती है ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है, और जब पूरा दिन अच्छा जाता है तो फिर पूरा वीक भी अच्छा जाता है। क्यों, सही कहा ना खुशी ने, अब मुस्कुरा भी दो, इतनी सारी बातें कर ली है इस प्यारी सी लड़की ने। अब हम बस आते हैं अभी, आप कहीं मचाइए, यूं ही बने रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं आपकी खुशी।
1: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यूं गया और यूं आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। Thank you.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दोस्तों शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी केदारनाथ से अमित त्रिवेदी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और दिन भी बहुत ही खूबसूरत सा है मंडे का। सावन की अंतिम सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सावन के आखिरी सोमवार में महादेव जी से आपकी सारे मैं तो बस यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि महादेव जी आपके जीवन में जितने भी हमारे जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनके जीवन में जितने भी कष्ट हैं सबको हर लें और आपके जीवन में हमेशा खुशियों की बारिश होती रहे। और दोस्तों आप भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर मैसेजों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। बैक टू बैक आपके खूबसूरत संदेश आ रहे हैं, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। और हाँ, आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं अपने मुरादाबाद में, क्या चल रहा है, सब आपको खुशी बताने वाली है यहाँ पर। तो बस ऐसे ही बने रहिए, जुड़ी रहिए खुशी के साथ। और जो मैसेज आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले मैसेज हमें पहुँचाती हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर से सना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, साथ में नाजिया भी हैं, नाजिया एंड सना। और आज की सुबह सुबह ये ट्रैक सुनना चाहती हैं फिरकी वाली तो कल फिर आना। ओ हो हो क्या बात है, सुबह सुबह चलिए सुनवाएंगे आपको। अगला मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का एंड लक्ष्मी जी का। और ये कहती हैं आपको सुबह की गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी मैम। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, हेलो गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, जिला रामपुर चौराहा से ये मैसेज पहुँचाते हैं, जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से रजा हुसैन जी आज की सुबह हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों आप भी मुझे अपने संदेश जल्दी जल्दी से पहुँचा दीजिएगा, कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। माना कि आप काम में व्यस्त हैं लेकिन थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाल लीजिएगा। और मैं अभी वापस आती हूँ कुछ खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेकर्स पर।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल

0: मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा ट्रैक, और दोस्तों आज सावन के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर मुरादाबाद के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़, भारी भीड़ उमड़ रही है। हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव जी के जयकारों से माहौल भक्ति में बना हुआ है। शहर से लेकर हवाई हाईवे तक कांवड़ियों की आस्था और सेवा का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु भगवान शिव का जल अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने भी प्रमुख मार्गों और हाईवे पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं। और समय अगर आपको बताएं तो वक्त हुआ है हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:56। और आप सभी के खूबसूरत बैक टू बैक मैसेज आ रहे हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल करूंगी। एंड आज और कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जाते हैं सब आपको खुशी बताने वाली है। बस आप ऐसे ही बने रहिए और कुछ बातें हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिल्कुल पहुंचा सकते हैं आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, एक तो बड़ा प्यारा सा वॉइस नोट आया है तो जल्दी से हम उसको प्ले कर लेते हैं। आज की सुबह हमारे लिसनर क्या पहुँचाती हैं?
1: गुड मॉर्निंग खुशी दी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग।
1: मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: न तुम दूर जाना न हम दूर जाएंगे, न तुम दूर जाना न हम दूर जाएंगे, अपने अपने हिस्से की दोस्ती निभाएंगे। बहुत अच्छा होगा जिंदगी का ये सफर, बहुत अच्छा होगा जिंदगी का ये सफर। तुम वहां से याद करना हम यहाँ मुस्कुराएंगे, तुम वहां से याद करना हम यहाँ मुस्कुराएंगे। दी, ये शायरी आपके और मेरी बेस्ट लाइबा के लिए है। दी, आपको और सभी लिसनर्स को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। दी, मुझे एक सॉन्ग सुनना है, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। जिंदगी में भाई का होना बहुत ही जरूरी है। दी, मेरे बड़े भाई और छोटे बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मुझे ये रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में मेरी कुछ दोस्त हैं, मेरी बेस्टी लाइबा, मेरी सिस्टर नजमा, दरक्सा, राबिया, रुकैया, आसिया और रामपुर से हैं सबनम भी। थैंक यू दी, मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा।
0: मोस्ट वेलकम डियर। और सही कहा आपने कि बहन भाई का जो रिश्ता होता है ना, सिस्टर ब्रदर का, बहुत ही खूबसूरत होता है। एंड उसमें नोक झोंक भी होती है, प्यार भी बहुत होता है एंड केयर भी बहुत ज्यादा होती है। और कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है ना, चाहे दूर रहे या पास, दिल से रिश्ता होता है। और अभी देखिए जैसे राखी फेस्टिवल आने वाला है तो बहनें कितनी दूर दूर रहती हैं और भाई भी कितने दूर दूर रहते हैं ना, लेकिन राखी फेस्टिवल पर भाई भी अपनी बहन से मिलने के लिए घर आते हैं और राखी बंधवाते हैं। एंड बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है, बहन भाई के लिए हमेशा दुआएं करती हैं एंड उनको ब्लेसिंग्स देती हैं। और हाँ, गिफ्ट भी लेना लेती हैं, गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं भूलती हैं। मैं तो अपने भाइयों से गिफ्ट लेती हूँ, देखो पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि भैया मेरे को ये चाहिए तो वो बोलते हैं अच्छा जी राखी आई नहीं कि आपकी डिमांडें बढ़ गई हैं, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा ये रिश्ता है। और अभी यहाँ पर एक और मैसेज मेरे पास आया है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं एकता जी फ्रॉम मंडी चौक मुरादाबाद से। और ये ट्रैक सुनना चाहती हैं, मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर। बिल्कुल सुनवाएंगी एकता जी, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े आज की सुबह। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का, साथ में इनकी फैमिली भी है और ये अपने परिवार के साथ इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, सावन का सोमवार, सावन की लास्ट सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सीनियर सर, और अमित यादव जी हैं, रितु यादव जी हैं। निरांशी यादव हैं एंड साथ में शंकर जी हैं। लाइन पर से अपना मैसेज हमें पहुंचाते हैं। हर हर महादेव आपको भी। तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं इतने प्यारे राखी स्पेशल सॉन्ग्स यहाँ पर हमारी जो श्रोताओं ने रिक्वेस्ट की है, तो प्ले करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं एंड बताएंगे आज बहुत ही अच्छा सा डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे एंड आपसे भी बातचीत करेंगे। बस मैं थोड़ी सी देर में आती हूँ वापस। जाने का मन तो नहीं करता है, जब बात करना शुरू करती हूँ ना मैं तो मेरा मन करता है कि बहुत सारी बातें करूँ, पर ब्रेक लेना भी जरूरी है ना। चलो अभी आती हूँ मैं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा

0: हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक, और इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी एकता जी ने मंडी चौक मुरादाबाद से। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि लौट कर आऊंगी तो बताऊंगी कि आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत ही स्पेशल सा दिन है। और आपको पता है दोस्तों, वहां का ना ढोकला एंड फाफड़ा जलेबी बहुत ज्यादा फेमस है। अब आप समझ गए होंगे ना कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। और वहां का गरबा भी बहुत फेमस है। अब इतने सारे मैंने हिंट दे दिए हैं आपको, अब तो आप समझ ही गए होंगे ना। चलिए मैं बता देती हूँ आपको, फाइनली इंतजार और नहीं करवाती हूँ। दोस्तों, आज सेलिब्रेट किया जाता है विश्व गुजराती भाषा दिवस। जी हाँ, हैप्पी वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन। दोस्तों, विश्व गुजराती दिवस, ये दिन गुजराती भाषा के गौरव और उसकी समृद्धि संस्कृति को याद करने का सबसे खूबसूरत अवसर है। गुजराती सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि अपनी मीठा संस्कृति, साहित्य और परंपराओं को अपने में समेटे हुए है। और कुछ लिटिल बीट वर्ड्स मेरे को भी गुजराती के आते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हम हालचाल पूछते हैं आप कैसे हैं, तो गुजराती में बोलते हैं केम छो, मजा मा, हाँ मैं ठीक हूँ। और जैसे हम बोलते हैं धन्यवाद, तो वो बोलते हैं आभार। और जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में कि फिर मिलेंगे, तो गुजराती में बोलते हैं आवजो, मतलब फिर मिलते हैं। और गुजराती कल्चर बहुत ही खूबसूरत है। एंड वहाँ का गरबा इतना पॉपुलर है, जब नवरात्रि आते हैं, शरद नवरात्रि आते हैं, तो वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में वहाँ का गरबा पॉपुलर है। और लोग विदेशों से भी सेलिब्रेट करने के लिए गुजरात में गरबा आते हैं। गुजराती लैंग्वेज, खान पीन, गुजराती लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड हमारे बहुत सारे लिसनर भी हैं जो गुजरात में रहते हैं, जो गुजराती लिसनर्स हमारे हमें सुनते हैं एंड अभी भी सुन रहे होंगे और सुनकर मुस्कुरा भी रहे होंगे। तो देखिए, हमने गुजरात की बात की है एंड गुजराती लैंग्वेज की बात की है, तो एक प्यारा सा गाना तो होना चाहिए ना। तो चलो एक गुजराती ट्रैक सुनते हैं, उसके बाद अभी लौट कर आते हैं। तब तक आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचाती रहिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और जब गुजरात की बात आए और ये गाना हमारी जुबान पे ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, और ये गाना सभी को याद है, तो सुनवा देते हैं बिना किसी देरी के।

एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर आई हूँ, आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। समय हुआ है अभी 11:23 राइट नाउ। और दोस्तों, एक ऐसी न्यूज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप सुनेंगे तो आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। एंड वो क्या अपडेट है मैं बताती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इस बार प्याज सिर्फ रसोई में नहीं बल्कि ट्रेन में भी दौड़ने वाली है। जी हाँ श्रोताओं, बात हो रही है कांदा एक्सप्रेस की। अगर बढ़ते प्याज के दाम ने आपकी रसोई का बजट बिगाड़ दिया है तो सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए प्याज की सप्लाई बढ़ाने की तैयारी की है। फिलहाल देश में प्याज का औसत खुदरा भाव करीब 42 रुपए किलो बताया जा रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 45% और पिछले महीने के मुकाबले करीब 19% ज्यादा है। दिल्ली में प्याज का भाव करीब 65 रुपए किलो है, जबकि चेन्नई में करीब 58 रुपए किलो तक पहुंचने की बात सामने आई है। अब नासिक से प्याज को ट्रेन के जरिए दिल्ली, चेन्नई और गुवाहाटी जैसे शहरों तक पहुंचाया जाएगा ताकि बाजार में सप्लाई बढ़े और कीमतों पर दबाव कम हो। तो उम्मीद यही है कि कांदा एक्सप्रेस की रफ्तार तेज हो और प्याज के भाव थोड़े नीचे जाएंगे, क्योंकि श्रोताओं, प्याज काटते समय आने वाले आंसू तो समझ में आते हैं, लेकिन प्याज खरीदते वक्त जब देखकर जेब देकर आंसू आए, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, है ना? तो अब आप टेंशन ना लीजिए, प्याज के जो प्राइस हैं वो थोड़े गिर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत मैसेज भी आ गए, मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। एंड मेरे पास यहाँ पर मैसेज आया है बबलू सैनी जी का मुंबई महाराष्ट्र से, और ये कहते हैं, हर हर महादेव खुशी मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। कहते हैं कि सावन के चौथे सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सेम हियर सर, सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ट्रैक सुनना चाहते हैं आज की सुबह, फ्रॉम द मूवी राज, आपके प्यार में हम सवरने लगे, बिल्कुल सुनवाएंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है यहाँ पर कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, गुड मॉर्निंग आरजे खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास आया जिला मुरादाबाद ग्राम खेर खाता से शमशाद अली जी का, और साथ में इनकी फैमिली भी है और ये अपने परिवार के साथ हमें सुन रहे हैं इस समय।

और इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी लाइनें भी लिखी हैं, वो लौट कर आएंगे तब आपको सुनाएंगे, ठीक है। अगला मैसेज हमारे पास आया, हाय खुशी मैम, गुड मॉर्निंग। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं मोहम्मद सलमान जी। इसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आए हैं और ये मैसेज हमें पहुंचाती

इनका नाम निखत फातिमा जी, कहती हैं एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन दी आपको और सुनने वाले सभी दोस्तों को, सेम टू यू, आपको भी। देखिए अभी तो फ्राइडे को राखी फेस्टिवल है एंड आप अपनी से शुभकामनाएं दे रहे हैं, थैंक यू। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश बिल्कुल पहुंचाइएगा अपने नाम के साथ। और हाँ, अभी लौट कर आऊंगी ना तो एक सवाल भी पूछने वाली हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, उसका जवाब देने के लिए आप सब तैयार हैं ये भी मैं जानती हूँ।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आपकी दोस्त आरजे खुशी है आपके साथ। और बिल्कुल, जब रेडियो का एक बार फितूर सर पर चढ़ जाता है ना, फिर उतरना बहुत मुश्किल है। मतलब मुश्किल नहीं, ये जो मतलब फितूर है ना, जो रेडियो के प्रति प्यार है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये ना ऑलवेज वाला प्यार है, ये हमारे सुख दुख दोनों में हमारे साथ रहता है ना। और यहाँ पर समय मैं आपको बता देती हूँ, 11:39 हो गए हैं। और आपके खूबसूरत जो मैसेज आए हैं मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर मैसेज आया है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजी परवली जी का। आरजी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, दिल कहता है रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, फ्रॉम द मूवी मन की आंखें। एंड ये ट्रैक हम आपको सुनवाएंगे सर, क्योंकि गाना बहुत ही प्यारा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? उम्मीद करते हैं आपका संडे बढ़िया गुजरा होगा। एंड हमें तो हर दिन आपके प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार रहता है। सच कहूँ तो आपकी आवाज दिन बना देती है। ओ हो हो, ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आसिफ फ्रॉम इटली से। और सर ने गाने की रिक्वेस्ट हमें की है, तो हम बिल्कुल सुनवाएंगे आपको, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाकर रखना है सर, थोड़ा इंतजार करना है, क्योंकि धैर्य बहुत जरूरी है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आरजे खुशी जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, लदावली जिला मुरादाबाद से। तो दोस्तों, आप मैसेज करने में क्यों पीछे हैं? आप भी हमें संदेश पहुंचा सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। और सुनते हैं खूबसूरत सा गाना।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता

0: गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा। सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो दोस्तों, देखिए दिल तो मतलब आप लगाने का सोचते हैं और लग जाते हैं जैसे ही रेडियो आप ऑन करते हैं। चाहे आपके मन में कितनी भी बातें चल रही हों, आप कितना भी परेशान क्यों ना हो, एंड जब रेडियो सुन लेते हैं ना तो आपका मन भी थोड़ा अच्छा फील करता है, हैप्पी फील करता है। ऐसा लगता है, देखो दोस्तों, जब रेडियो ऑन करते हैं ना और आप अकेले होते हैं, तब आप अकेले नहीं होते हैं, मैं आपके साथ होती हूँ, है ना। तो आप खुद को अकेला मत सोचिएगा, आपकी सुख दुख के साथ ही आरजी खुशी आपके साथ है। और हमारे पास ना टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं तो मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। एंड ये मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, आप कैसे हैं, आपका शो अच्छा लगता है एंड प्लीज मैम मेरा एक ट्रैक प्ले कर दीजिएगा, मेरा भाई तू मेरी जान है। ऑफ कोर्स ये ट्रैक मैं प्ले करूंगी, लेकिन मुझे आपका नाम शो अप नहीं कर रहा है यहाँ पर। ओके, अभी मुझे यहाँ पर मिला है आपका नाम, नेहा फ्रॉम मुरादाबाद। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। सनी अग्रवाल जी मैसेज करते हैं हमें काशीराम नगर मुरादाबाद से, और ये कहते हैं कि मैम मुझे आज की सुबह एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ मूवी का शॉर्ट सॉन्ग सुनवाएंगे आपको। एंड नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महाराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर। और ये कहते हैं कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिएगा, बिल्कुल। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी मैम आपको आदाब, आपको भी आदाब सर। इन्होंने लिखा है कि प्यास की जो आपने अपडेट दी थी वो बहुत ही अच्छी थी मैम, और आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है हमें, एंड धन्यवाद आपका। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से अंसार हुसैन जी, साथ में समीर मलिक भी हैं। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, नाम नहीं लिखा, बस गुड मॉर्निंग विश किया है। अगला मैसेज हमारे पास आया संदीप सागर जी का, मुरादाबाद से मैसेज करते हैं, जिला मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कहते हैं कि चल रही हूँ धूप में, तो महाकाल तेरी छाया है, शरण है तेरी सच्ची, बाकी सब तो मोह माया है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सी लाइनें हैं आपकी। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है कोमल शर्मा जी का, खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और मैम ने भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, खुशी जी जय श्री राम, गौरव टेलर जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से। लगता है सर आज थोड़ा बिजी थे, हाँ बट कोई बात नहीं, देर से ही सही आपका मैसेज आया, हमें बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने आज की सुबह एक थॉट शेयर किया है कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला, जब ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। अरे वाह, क्या बात है, हाँ एग्जैक्टली, इंसान की बातों से ही पता चल जाता है कि सामने वाला शख्स कैसा है, उनके विचारों से मालूम हो जाता है। एंड वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू सो मच, आप सब आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमारे साथ जुड़े, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। और हाँ, मैं आप सभी को फिर से सावन के अंतिम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
आपके जीवन में महादेव जी की कृपा हमेशा बनी रहे और आप ऑलवेज हैप्पी रहें। जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपकी लाइफ में हैं तो सब महादेव जी उन संकटों को हर लें। मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ मैं मुलाकात करूंगी आपसे 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुझे बिल्कुल भी मत भूल जाना, ठीक है? चलो बाय।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: ज्यादातर उन इलाकों में देखने को मिलती है जहाँ जागरूकता कम है या पहुंच में दिक्कत है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से।
1: मतलब अभी भी हमें बहुत काम करना बाकी है।
0: बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इस चुनौती को समझते हुए लगातार प्रयास कर रही है। इसी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया है, मिशन इंद्रधनुष।
1: अरे हाँ, मिशन इंद्रधनुष का नाम तो मैंने भी कई बार सुना है, लेकिन ये करता क्या है?
0: देखिए, मिशन इंद्रधनुष एक ऐसा अभियान है जिसका मकसद साफ है, जो बच्चे अब तक टीकाकरण से छूट गए हैं उनका टीकाकरण देना। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक अभियान है जो गांव-गांव जाकर काम करता है। इसने हजारों गांव तक अपनी पहुंच बनाई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 16,000 से ज्यादा गांव में और 48,000 से ज्यादा आकांक्षी जिलों में इसका काम किया है।
1: वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा काम है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, इतने बड़े देश में इतने सारे गांव और लोग, ये सब कैसे संभाले जाते हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल आज के समय में तकनीक ने इस काम को काफी आसान बना दिया है। जैसे हमारे पास ईविन यानी इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि टीके सही तापमान पर सुरक्षित रहें और जहां जरूरत हो वहां समय तक पहुंच जाएं।
1: मतलब टीके खराब ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है।
0: बिल्कुल सही समझे आप। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है UWIN। ये एक डिजिटल सिस्टम है जो हर बच्चे और हर गर्भवती महिला का रिकॉर्ड रखता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी बच्चा या महिला टीकाकरण से छूट ना जाए।
1: यानी अब पूरा सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि हर व्यक्ति तक पहुंचना आसान हो रहा है।
0: जी हाँ बिल्कुल, अब हम डेटा के आधार पे काम करते हैं जिससे निगरानी भी आसान हो जाती है और छूटे हुए लोगों को पहचानना भी।
1: बहुत बढ़िया, लेकिन सेहतिया जी एक बात अभी भी समझ नहीं आई आती, इतनी सुविधाएं होने के बावजूद भी लोग टीके से डरते क्यों हैं?
0: देखिए आरजे खुशी जी, की ही सबसे बड़ी वजह है अधूरी जानकारी और अफवाहें। कई बार लोग बिना सही जानकारी के ही बातें फैलाने लगते हैं और कह देते हैं कि टीका लगवाने से बच्चा बीमार पड़ जाएगा, तो कोई कहता है इससे बुखार आता है।
1: हाँ, ये बातें तो मैंने भी कई बार सुनी है,
0: लेकिन सच्चाई कुछ और है। हल्का बुखार या सूजन आना बिल्कुल सामान्य बात है। इसका मतलब है कि शरीर उस बीमारी के खिलाफ लड़ना सीख रहा है और यह एक अच्छी प्रक्रिया है, ना कि डरने वाली बात।
1: तो असली खतरा क्या है?
0: असली खतरा है टीका ना लगवाना, क्योंकि अगर बच्चा टीकाकरण से वंचित रह गया तो वह गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है, जैसे खसरा, पोलियो, टिटनेस या निमोनिया। ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो सेहतिया जी, क्या आप हमें पूरा टीकाकरण थोड़ा विस्तार में समझा सकते हैं?
0: जरूर, यह जानना हर माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसे 3 महत्वपूर्ण टीके लगाए जाते हैं, BCG जो टीबी से बचाव करता है, OPV जो पोलियो से बचाता है और हेपेटाइटिस बी का टीका।
1: ठीक है, यानी शुरुआत जन्म से ही हो जाती है।
0: बिल्कुल, इसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते की उम्र में बच्चों को कई टीके दिए जाते हैं। इनमें ओपीवी की खुराक, पेंटावेलेट वैक्सीन जो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और HIV से बचाव करता है। साथ ही रोटा वायरस और कुछ जगहों पर PCV भी शामिल होते हैं।
1: ये तो काफी विस्तृत प्रक्रिया है।
0: जी हाँ, और यह यहीं खत्म नहीं होती। 9 महीने की उम्र में बच्चों को खसरा, रूबेला का टीका दिया जाता है। इसके बाद 16 से 24 महीने के बीच बूस्टर डोज दी जाती है ताकि पहले लगे टीकों का असर और मजबूत हो सके।
1: और बड़े होने पर?
0: जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है तब TPT का बूस्टर दिया जाता है। इसके बाद 10 साल और 16 साल की उम्र में TD यानी टिटनेस और डिप्थीरिया के टीके लगाए जाते हैं।
1: और गर्भवती महिलाओं के लिए?
0: गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीकाकरण बहुत जरूरी है। उन्हें TD का टीका दिया जाता है जिससे माँ और होने वाले बच्चे दोनों को सुरक्षा मिलती है। यह समय पर लेना बहुत जरूरी होता है।
1: सेहतिया जी, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। सच में अगर हर व्यक्ति ये समझ जाए कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं।
0: बिल्कुल आरजे खुशी, और यही हमारा लक्ष्य भी है, हर बच्चे तक, हर परिवार तक सही जानकारी पहुंचाना, ताकि कोई भी जीव सिर्फ जानकारी की कमी के कारण खतरे में ना पड़े।
1: सेहतिया जी, आपकी
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ का प्रोग्राम और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है श्रोताओं। आज का एपिसोड उन माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके घर में अभी अभी नन्ना मेहमान आया है। श्रोताओं, नवजात शिशु की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी सी गलती भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। तो आज हमारी मदद करेंगी टीकन भाभी, वो हमें बताएंगी कि माँ और नवजात का ख्याल कैसे रखा जाए और साथ ही सही खान पान से नवजात और माँ का भविष्य कैसे मजबूत बन सकता है। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, अक्सर मैंने देखा है कि

0: सलाह मानी। उसने बच्चे को तुरंत अपना पहला गाढ़ा दूध पिलाया। आज उसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, ना उसे बार बार सर्दी जुखाम होता है, ना ही पेट की कोई दिक्कत। याद रखिए कि ना शहद, ना घुटी, ना गाय बकरी का दूध और ना ही पानी। बच्चे की असली ताकत तो उसकी माँ के दूध में होती है।
1: भाभी, कभी कभी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होता है, ऐसे में माँ को होश आने में समय लग सकता है। उस वक्त नवजात को डब्बे बंद दूध या बोतल से दूध दिया जा सकता है क्या?
0: बिल्कुल नहीं। अगर माँ को होश आने में कुछ घंटे लग रहे हैं तो उस दौरान माँ के साथ आए हुए किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को चाहिए कि शिशु को माँ की छाती से लगाकर जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करवाए। शिशु को तो ना डिब्बे बंद दूध देना चाहिए, ना ही पानी और ना ही किसी और का दूध। बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित दूध सिर्फ उसकी माँ का ही होता है। और एक बात खास याद रखे, बच्चे को कभी भी बोतल से दूध ना दे। बोतल से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना। ये
1: भाभी, अक्सर कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के एक घंटे के अंदर ही दूध पिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है?
0: देखिए, बच्चे को जन्म के एक घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो बच्चे को कोलोस्ट्रम मिलता है, इसे बच्चे का पहला टीकाकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। दूसरा फायदा कि बच्चा जब माँ के शरीर से सटा रहता है तो उसे पर्याप्त गर्माहट मिलती है, इसे वो आराम और सुरक्षित महसूस करता है। तीसरा, माँ को भी इसका फायदा होता है, प्रसव के बाद उसका रक्तचाप कम हो जाता है और सेहत जल्दी ही संभल जाती है। साथ ही साबित हुआ है कि अगर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद एक घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाए तो नवजात शिशु की कुछ मौतों में से करीब 22% रोकी जा सकती है।
1: भाभी, डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है, आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं?
0: इसमें वो सब कुछ है जिसकी नवजात को शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बच्चे के शरीर को बढ़ाने के लिए ताकत चाहिए तो उसमें प्रोटीन है, दिमाग को तेज और शरीर को गर्म रखने के लिए फैट है, ताकत देने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, हड्डियां मजबूत बनाने और खून बनाने के लिए विटामिन और मिनरल्स है। माँ के दूध में ऐसी ताकत होती है जो बच्चों को बीमारियों से बचाती है, मतलब बच्चा अगर सिर्फ माँ का दूध पिएगा तो उसे बाहर से दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए खाना भी है और दवा भी है।
1: भाभी, अक्सर माँ को समझ नहीं आता कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए, और अगर बच्चा कम वजन का पैदा हुआ हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: बच्चा जब भी चाहे दिन में या रात, माँ को बार बार दूध पिलाना चाहिए। बच्चा रोकर या इशारा करके बता दे कि उसे भूख लगी है, ऐसे समय पर दूध रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चा कम वजन का है, यानी 2.5 किलो से कम, तो उसे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना जरूरी है। अगर बच्चा माँ का दूध ढंग से नहीं पी पा रहा है तो माँ अपना दूध निकाल कर कप या छोटे साफ चम्मच से उसे पिला सकती है। हमारे गांव की सरोज का बेटा 2.5 किलो से भी कम वजन का पैदा हुआ था। शुरू में सबको चिंता थी कि बच्चा कमजोर रह गया है, लेकिन सरोज ने आशा बहन की सलाह मानी। उसने बच्चे को हर 2 घंटे पर दूध पिलाया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया।
1: भाभी, कैसे समझें कि बच्चा पूरा दूध पी रहा है और उसका पेट भर रहा है?
0: देखिए, ये पहचानना मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा दिन भर में कम से कम 6 बार पेशाब कर रहा है तो समझे कि उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा, बच्चा अगर चैन से सो रहा है, जागने पर खेल रहा है और रो रो कर परेशान नहीं कर रहा है तो ये भी अच्छी निशानी है। और कुछ और सबसे पक्की बात ये है कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता है।
1: भाभी, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता, ऐसे में माँ को अपना दूध निकालकर बच्चे को पिलाना पड़ता है, लेकिन ये काम कैसे किया जाएगा? कई बार इसे लेकर माँ बहुत घबराती है।
0: देखिए, दूध पिलाते समय माँ को आरामदायक स्थिति में होना चाहिए, पीठ के पीछे सहारा लेकर आराम से बैठना चाहिए ताकि थकान ना हो। बच्चे को भी कमर और नीचे के हिस्से से सहारा देकर गोद में अच्छे से पकड़ना चाहिए। बच्चे की पोजीशन बहुत जरूरी है, उसका पूरा शरीर शरीर और चेहरा माँ की तरफ होना चाहिए। और हाँ, जब बच्चा सही तरह से दूध पी रहा हो तो उसे गटकने की हकी सी आवाज भी सुनाई देती है। माँ और बच्चे दोनों आराम में हो

0: वो तभी स्तनपान सही तरह से हो पाता है।
1: भाभी, कई बार मैं सुना है कि नई माओ को दूध पिलाते समय तन में सूजन, दर्द या सख्त जैसी परेशानियां हो जाती हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की परेशानी आम है। अगर माँ को ऐसा लगे तो सबसे पहले स्तन की धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। दूध पिलाने से पहले गर्म तौलिए से सेकने से भी आराम मिलता है।
1: अच्छा, मतलब मालिश और गर्म से काम आता है, लेकिन शिशु को दूध पिलाने में परेशानी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए?
0: इसके लिए माँ को आरामदायक अवस्था में बैठना चाहिए, शिशु को सही ढंग से स्तन से जोड़ना चाहिए। अगर स्तन ज्यादा भरा हुआ हो तो थोड़ा सा दूध पहले निकाल ले, इससे स्तन नरम हो जाएगा और बच्चा आसानी से मुंह में पकड़ पाएगा।
1: दूध पिलाना बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या माँ को भी इसका कोई फायदा होता है?
0: माँ के लिए भी बड़े फायदे हैं। जब बच्चा जन्म लेते ही दूध पीना शुरू करता है तो माँ का गर्भाशय सिकुड़ने लगता है, इससे पेसेटा भी जल्द बाहर आ जाता है और प्रसव के बाद ज्यादा खून बहने का खतरा भी कम हो जाता है। दूध पिलाने वाली माताओं को अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाए और वो भी पहले से करीब 1.5 गुना ज्यादा। बीच बीच में 2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी जरूरी है।
1: अच्छा भाभी, खाने में खास तौर पर क्या होना चाहिए?
0: हर दिन कम से 5 तरह की चीजें जरूर खानी चाहिए, जैसे दाल, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और अनाज, तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेंगे।
1: दोस्तों, आज की बातों से साफ है, माँ का दूध न सिर्फ बच्चे के लिए अमृत है बल्कि माँ की सेहत के लिए भी ढेर सारे फायदे लेकर आता है। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और माँ और बच्चे की सेहत पर फिर हम अहम बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका सेहत से लाभ कई में। एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूं और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजेरीना।
4: अरे पहले आराम से बैठ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। मगर आरजेरीना, तुम्हारे तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी बारिश और मुश्किल हालात में भी तुमने हमारे श्रोताओं से रूबरू होना नहीं छोड़ा।
3: यही तो हमारी सामुदायिक रेडियो की खासियत है, हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में हो अपने श्रोता को कभी अकेले छोड़ते थोड़ी हैं। हम सब उन्हें जानकारी और सहारा देने के लिए तैयार रहते हैं।
4: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए, आज किस मुद्दे पर चर्चा करेंगी?
3: भाभी, बस इतनी बारिश और बाढ़ का माहौल है, तो क्यों ना आज बाढ़ और उससे होने वाली बीमारियों पर ही बात की जाए। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, इसके साथ आती है कई तरह की फैलने वाली बीमारियां और साथ इन बीमारियों से बढ़ने वाले खर्चे, तो इसके लिए हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है।
4: सही कहा अर्जेरीना, बाढ़ तो खैर बाढ़ है, पर बाढ़ का पानी साफ नहीं होता, इसमें नालियों का गंदा पानी, कीचड़ और तरह तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। यही गंदा पानी जब खाने पीने की चीजों या पीने के पानी में मिल जाता है तो लोगों को बहुत सी बीमारियों की लपेट में ले लेता है। ऐसे में हैजा, टाइफाइड, पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
3: और हाँ, जब पानी धीरे धीरे सूखता है तो जगह जगह गड्ढों में पानी जमा रहता है।
4: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, और वहीं सबसे तेज मच्छर पनपते हैं, पर मच्छरों से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं।
3: भाभी, आपने तो देखा ही होगा पिछले साल रामपुर गांव में क्या हुआ था।
4: अरे कैसे भूल सकती हूँ, वहाँ बाढ़ आई थी, नालियों का गंदा पानी, खेतों की कीचड़ सब मिलकर कुएं और हैंडपंप तक चला गया, लोग वहीं का पानी पीने लगे, बस वहीं से बीमारियां फैल गई। यही हैजा का सबसे बड़ा कारण होता है, कई लोग बीमार पड़ गए। रेशमा को गंदा पानी पीने से अचानक उल्टी, दस्त होने लगा, बच्चा इतना कमजोर हो गया कि चल भी नहीं पा रहा था। उसकी माँ बहुत घबरा गई। पहले तो सोचा कि घर पर ही इलाज कर लें, लेकिन हालात और बिगड़ गए।
3: फिर क्या किया गया भाभी?
4: रेशमा को हम तुरंत गांव के हेल्थ सेंटर ले गए। डॉक्टर साहब ने जांच की और बोले कि रेशमा को हीजा है। इस बीमारी से उसके शरीर का पानी बहुत कम हो गया था। डॉक्टर साहब ने उसे ORS का घोल पिलाया, दवा भी दी। अच्छा हुआ समय पर इलाज मिल गया, इसीलिए रेशमा जल्दी ठीक हो गई।
3: भाभी, बाढ़ के समय बहुत लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं, जैसे दस्त, उल्टी और पेट दर्द। ऐसा क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है?
4: रीना जी, बाढ़ के दौरान पानी गंदा हो जाता है, लोग वही पानी पी लेते हैं या उसे खाना बना लेते हैं। इससे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, दस्त, उल्टी, पेट में मरोड़, शरीर में गड़बड़ी के लक्षण हैं।
3: तो भाभी, प्राथमिक सावधानी क्या होनी चाहिए?
4: बचाव के लिए साफ पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाएं, हाथ धोना भी बहुत जरूरी है, खासकर खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद हाथ जरूर धोएं। अगर कोई ज्यादा बीमार लगे तो डॉक्टर से अवश्य दिखाएं।
3: बिल्कुल भाभी, हैजा से बचने का सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी पीना और ताज़ा भोजन करना। वैसे आजकल गाँव में बहुत लोग बुखार से भी परेशान हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे थे टाइफाइड फैल रहा है। टाइफाइड कैसे होता है?
4: टाइफाइड बुखार साल्मोनेला नामक जीवाणु के कारण होता है। इसका मुख्य कारण है मल मुख मार्ग है, यानी ये संक्रमण तब फैलता है जब दूषित भोजन या पानी के माध्यम से ये जीवाणु शरीर में पहुंच जाता है। ये दूषित संक्रमण व्यक्ति या बिना लक्षण वाले वाहक के मल से होता है। गंदगी, साफ पानी की कमी, बिना धोए फल सब्जियां या सड़क का खाना खाने से ये संक्रमण आम तौर पर फैलता है, खासकर बरसात या बाढ़ के बाद ये बीमारी तेजी से फैलती है।
3: अच्छा, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
4: लक्षण बड़े साफ होते हैं रीना। लगातार तेज बुखार आना, सर दर्द करना, पेट में दर्द रहना, कमजोरी लगना, भूख ना लगना और कई बार उल्टी भी हो जाती है। ये सब दिखे तो समझ लीजिए कि टाइफाइड हो सकता है।
3: और इससे बचने का क्या उपाय है?
4: इस बीमारी से बचना है तो अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, जैसे काम करके घर आने पर साबुन से हाथ धो लें, बच्चे खेल कर आए तो उनके हाथ पैर साफ करें, पानी चाहे कुएं का हो या हैंडपंप का उबाल कर ही पिए। कई बार पानी साफ दिखता है लेकिन अंदर की गंदगी नजर नहीं आती। खाना हमेशा ढककर रखें। बाढ़ के बाद तो और ज्यादा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि हर तरफ कीटाणु फैले रहते हैं। अगर किसी को लगातार बुखार रहे, थकान लगे या पेट दर्द करे तो मरीज को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
3: सही कहा भाभी, दवा तो डॉक्टर देगा लेकिन समझदारी और सावधानी हमारे हाथ में है। तो सभी सुनने वाले श्रोताओं से मैं यही कहना चाहूँगी, साफ सफाई से रहने से हमारी पास भी नहीं भटकेगी।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रीना।
3: भाभी, बाढ़ के बाद पड़ोस के गांव में कई लोग बुखार, थकान और पेट की शिकायत लेकर अस्पताल जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये हेपेटाइटिस है, ये बीमारी कैसे होती है?
4: हेपेटाइटिस ए और कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये सीधे हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती है। गंदे पानी, दूषित भोजन में मौजूद कीटाणु शरीर में जाकर लीवर को खराब कर देते हैं। यही है हेपेटाइटिस का असली कारण।
3: तो भाभी, इसके लक्षण कैसे पहचाने?
4: अगर किसी को लगातार थकान लगे, हल्का बुखार बना रहे, पेट भारी लगे और खासकर आंखें व पेशाब पीले रंग की दिखने लगे तो समझ लीजिएगा लीवर पर असर हो रहा है। हेपेटाइटिस के साफ संकेत हैं। अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं।
3: क्या हमारे गांव में भी ऐसा कोई मामला हुआ है?
4: पास के मोहल्ले में हन्नू काका के बेटे को बाढ़ के बाद यही दिक्कत हुई। उसे बार बार बुखार आ रहा था, शरीर में कमजोरी थी, धीरे धीरे उसकी आंखें पीली पड़ गई। पहले वो मामूली बुखार समझ घर के पास इलाज कराना शुरू किया लेकिन हालात बिगड़ते गए। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर साहब ने बताया कि हन्नू को हेपेटाइटिस ए है। समय पर इलाज मिला तो बच्चा बच गया, वरना मुश्किल हो सकती थी।
3: भाभी, फिर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
4: सबसे पहले तो साफ पानी पीजिए। अगर किसी में ये लक्षण दिखे तो खुद इलाज करने की गलती मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। याद रखिए, देर करना जानलेवा हो सकता है।
3: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग बुखार और बदन दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं ये तो लेप्टिस
0: फाइब्रोसिस हो सकता है। लोग इसे आसान भाषा में जंगली बुखार भी कहते हैं। ये बीमारी कैसे होती है?
4: देखिए श्रोताओं, ये बीमारी बाढ़ के गंदे पानी से फैलती है। उस पानी में जानवरों का मलमूत्र मिला होता है। अगर कोई गंदे पानी में जाता है और उसके शरीर पर कहीं भी चोट, खरोच या कटाफटा हिस्सा है, तो वहीं से बीमारी अंदर चली जाती है। फिर बुखार, बदन दर्द जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
3: अच्छा भाभी, तो इसके लक्षण कैसे पहचाने?
4: शुरुआत में तेज बुखार आता है, सर में और मांसपेशियों में दर्द होता है, कई बार आंखें लाल हो जाती हैं। अगर समय पर इलाज ना हो तो जंगली बुखार लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचाता है।
3: इससे बचने का उपाय क्या है?
4: सबसे जरूरी है सावधानी। बाढ़ के पानी में नंगे पांव मत चलिए। अगर जाना ही पड़े तो रबड़ की चप्पल या बूट पहनकर जाएं। शरीर पर कहीं भी कटा या चोट हो तो उसे अच्छी तरह ढककर रखिए। जंगली बुखार के लक्षण दिखे तो घर पर इलाज करने की जगह डॉक्टर के पास जाइए।
3: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में जगह जगह पानी जमा हो गया है, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं, डर है कि कहीं डेंगू मलेरिया ना फैल जाए।
4: देखिए, जब बाढ़ का पानी गड्ढों, पुराने डिब्बों, कूलर या टंकी में जमा रह जाता है तो वहीं मच्छर अंडे दे देते हैं। ऐसे पानी में मच्छर बहुत ज्यादा पनपते हैं। डेंगू और मलेरिया दोनों बीमारियां मच्छर के काटने से ही फैलती हैं। डेंगू वाला मच्छर ज्यादातर दिन में काटता है, जबकि मलेरिया वाला मच्छर रात में काटता है। ये बीमारियां बहुत तकलीफदायक होती हैं और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं।
3: ओहो, तो भाभी इसके लक्षण कैसे पहचाने?
4: डेंगू में तेज बुखार आता है, शरीर बहुत टूटता है, आँखों में दर्द होता है और कई बार खून की कमी भी हो जाती है। मलेरिया में अचानक जोर की कपकपी लगती है, फिर तेज बुखार आ जाता है। इसके बाद खूब पसीना छूटता है और मरीज बिल्कुल निडाल हो जाता है। और समय पर इलाज ना मिले तो हालात और भी खराब हो सकते हैं।
3: भाभी, बचाव का सही तरीका क्या है?
4: बचाव आसान है, थोड़ी सावधानी रखनी है। घर के आसपास पानी जमा मत होने दीजिए। टंकी, गमले, कूलर सब हफ्ते में एक बार साफ कीजिए। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और हाँ, ढीले ढाले पूरे कपड़े पहनिए ताकि मच्छर काट ही ना पाए।
3: भाभी, बाढ़ के बाद गांव में कई लोग कहते हैं उनके शरीर पर लाल लाल चकत्ते निकल रहे हैं, खुजली हो रही है, कुछ लोगों को तो फफोले भी पड़ जाते हैं, क्या ये सब त्वचा की बीमारी है?
4: बिल्कुल ठीक। बाढ़ आती है तो कई लोग गंदे पानी में चलते हैं। उस पानी में कीचड़, नालियों का गंदा पानी और जानवरों का मलमूत्र तक मिला होता है। अब जरा सोचिए रीना जी, अगर किसी के हाथ या पैर कटा या घाव है और वो गंदे पानी में चला जाए तो कीटाणु सीधा अंदर घुस जाते हैं, वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है और फिर त्वचा पर तरह तरह के रोग हो जाते हैं।
3: ओहो, तो इसके लक्षण क्या क्या है भाभी?
4: शुरुआत में तो हल्की सी खुजली होती है, फिर धीरे धीरे लाल लाल दाने निकल आते हैं। अगर इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, उससे पानी भी निकलने लगता है। कई बार जलन और दर्द इतना बढ़ जाता है कि आदमी चैन से बैठ ही नहीं पाता। अगर ध्यान ना दिया जाए तो इस शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है, इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए।
3: तो लोग इससे कैसे बचे?
4: सबसे पहले तो जितना हो सके गंदे पानी से बचिए। अगर बाहर जाना ही पड़े तो नंगे पांव मत जाइए। रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए। अगर गलती से भीग जाए तो घर आकर साबुन से पैर धो लीजिए। यदि खुजली, लाल चकत्ते या फफोले दिखें तो घरेलू नुस्खे में वक्त मत गवाइए, डॉक्टर को दिखाइए, तभी सही इलाज होगा।
3: भाभी, बाढ़ के समय कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्या ये किसी बीमारी के संकेत हैं?
4: जी बिल्कुल रीना जी, बाढ़ के दौरान जब लोग एक जगह जैसे स्कूल या पंचायत भवन में इकट्ठा हो जाते हैं तो भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अगर किसी को खांसी, जुकाम या बुखार है तो बीमारी दूसरों तक पहुंच जाती है। ऊपर से गीले कपड़े, लगातार नमी और चारों तरफ गंदगी, ये सब फेफड़ों पर बुरा असर डालती है। इसी वजह से सांस की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और श्वसन संक्रमण फैलने लगता है।
3: इसके लक्षण क्या होते हैं भाभी?
4: देखिए, इसके लक्षण साफ होते हैं। अगर किसी को बार बार खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ है, सीने में भारीपन लग रहा है या बुखार भी आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि मामला हल्का नहीं है।
3: इसके बचने का सही तरीका क्या है?
4: सबसे पहले तो साफ सफाई रखिए। गंदे और गीले कपड़े तुरंत बदल लीजिए। जहाँ रह रहे हों वहाँ खिड़कियाँ, दरवाजे खोलकर हवा का रास्ता बनाइए। अगर भीड़ में वो तो मास्क जरूर पहने, खासकर जिनको खांसी जुकाम है। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़ा पहनाइए। किसी को सांस लेने में जरा भी दिक्कत लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखा दीजिएगा।
3: भाभी, बाढ़ के समय लोग सिर्फ पानी से नहीं कई और खतरों से भी जूझते हैं। कई बार लोग जाते हैं, फिसल जाते हैं या फिर किसी जहरीले जीव के काटने से बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए?
4: देखिए, बाढ़ का पानी बाहर से चाहे जितना भी शांत दिखे, अंदर से उतना ही खतरनाक होता है। इसमें गड्ढे होते हैं, टूटी हुई तारें हो सकती हैं, फिसलन होती है और तेज बहाव से आदमी गिर भी सकता है। सबसे बड़ा डर होता है कि जहरीले जीव का, जैसे सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़ों का, ये सब पानी के साथ बहकर घरों तक आ जाते हैं।
3: अच्छा भाभी, अगर किसी को सांप या बिच्छू काट ले तो कैसे पहचाने?
4: सांप या बिच्छू काटने की साफ साफ लक्षण दिखते हैं, जैसे काटे गए हिस्से में तेज जलन, सूजन, चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ होना और कई बार तो बेहोश भी हो जाती हैं। अगर सांप जहरीला है तो काटी हुई जगह नीली या काली पड़ जाती है। ऐसे हालात में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है।
3: तो फिर भाभी, ऐसे वक्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए?
4: सबसे पहले तो घबराइए मत। घबराहट में ही लोग गलती कर बैठते हैं। काटे गए हिस्से को हिलाइए मत, हिलाने से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए। देसी इलाज, झाड़ फूंक या नीम हकीम पर समय बिल्कुल मत गवाइए। जितनी जल्दी डॉक्टर तक पहुँचेंगे उतनी ही जल्दी इलाज होगा। और हाँ, बचाव के लिए आप कुछ बातें जरूर कीजिए, जैसे बाढ़ के पानी में नंगे पांव बिल्कुल भी मत चलिए, रबड़ की चप्पल या बूट पहन लीजिए, रात को सोते वक्त दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए, घर के कोनों और बिस्तरों के नीचे साफ सफाई कर लीजिए ताकि सांप बिच्छू ना सके।
3: दोस्तों, आपने सुना, बाढ़ सिर्फ पानी नहीं कई खतरनाक बीमारियां भी ले आती है, लेकिन अगर हम सतर्क रहे, साफ सफाई का ध्यान रखे और समय पर इलाज करवाए तो इसके खतरों से बचा जा सकता है। पर जाने से पहले हम लेंगे शपथ,
4: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
3: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
4: नियमित जांच और टीकाकरण कराएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगी।
3: पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
4: सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई यहीं पर समाप्त होता है। अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। अगली बार फिर मिलेंगे सेहत संबंधित किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
5: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ गई। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात उठाने वाले, किशोरों का यौन और प्रजनन स्वास्थ्य 10 से 19 साल की उम्र में ना सिर्फ शरीर बदलता है बल्कि मन में भी सवाल उठते हैं। ऐसे में सही जानकारी मिलना बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि इस उम्र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस तरह से माता पिता, स्कूल, समाज और सरकार मिलकर बच्चों की मदद कर सकती है। इन सभी मुद्दों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए सिहतिया जी हैं। सिहतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे खुशी जी। देखिए, जैसे किसी बगीचे में सही समय पर पानी और खाद ना मिले तो पौधा सूख जाता है, वैसे ही किशोर उम्र में अगर सही जानकारी और सलाह ना मिले तो बच्चा उलझ सकता है। इसलिए इस उम्र में सही बात जानना और समझना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिहतिया जी। वैसे किशोर अवस्था के दौरान शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं?
1: जब बच्चा 10-11 साल का होता है तब से उसके शरीर में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, उनका कद एकदम तेजी से बढ़ता है, लड़कियों में मासिक धर्म यानी पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। शरीर बदलेगा तो इसका असर मन पर भी पड़ेगा। कभी गुस्सा आएगा, कभी बिना बात के मन उदास हो जाएगा या अकेलापन लगेगा। ये सब एकदम नॉर्मल है, डरने की बात नहीं है।
0: सिहतिया जी, जब हम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं?
1: देखिए खुशी जी, कई बातें जिनके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि महावारी यानी पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हर लड़की और औरत के शरीर में होती है। इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि किसी को शर्म या डर ना लगे। अब बात आती है गर्भ ठहरने की यानी बच्चे होने की बात। आजकल ये जरूरी है कि लड़का और लड़की दोनों ये समझे कि बिना सोचे समझे जल्दी माता पिता बन जाना मुश्किल बढ़ा सकता है। गर्भ निरोधक उपाय की जानकारी सबको होनी चाहिए और सबसे अहम बात, किसी भी संबंध का फैसला सोच समझ कर होना चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ना कहने का हक है और अपने शरीर के बारे में फैसले लेने का भी अधिकार है। ये समझना ही असली समझदारी है।
0: अगर किसी किशोर को डर लगे, शर्म आए या मन में कोई सवाल हो तो उसे क्या करना चाहिए?
1: सवाल उठाना तो अच्छी बात है, ऐसे में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अपने घर में माता पिता से, स्कूल में टीचर से या किसी ऐसे बड़े से बात करनी चाहिए जिस पर भरोसा हो। अगर डॉक्टर या काउंसलर से बात करने का मौका मिले तो बिना हिचक अपने सारे संदेह पूछ लेने चाहिए।
0: सिहतिया जी, जब हम किशोरों की यौन और प्रजनन सेहत की बात कर रहे हैं तो कई बार समाज की पुरानी सोच और परंपराएं ही रुकावट बन जाती हैं। जैसे लड़कियों पर जल्दी शादी का दबाव और लड़कों पर हमेशा रो मत मर्द बन का बोझ रहता है। ऐसे माहौल में सही जानकारी और सही सुविधा कितनी जरूरी है?
1: बिल्कुल आरजे खुशी जी, चाहे गाँव हो या शहर, ऐसी सोच हर जगह मिलती है। लड़की बड़ी हो गई तो लोग कहते हैं कि बोझ बन गई। लड़कों से कहा जाता है कि अब घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब ऐसे ताने मिलेंगे तो बच्चे कैसे खुलकर बात करेंगे। इसलिए जरूरी है कि किशोरों को सही जानकारी दी जाए, अच्छे से समझाया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए। किशोरों को डांटना नहीं, उनकी बातें सुननी है और उनका साथ देना है।
0: सिहतिया जी, अब हम सुन रहे हैं कि कई जगह बहुत छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। ऐसा करने से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है और अगर किशोरी गर्भवती हो जाए तो ये खतरनाक हो सकता है ना?
1: बिल्कुल, ये चिंता की बात है। शादी से लड़की के ऊपर बहुत बोझ आ जाता है, शरीर पर भी और मन पर भी। अगर कम उम्र में गर्भवती हो जाए तो माँ बच्चे की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। फिर लड़की की पढ़ाई, करियर, सपने सब पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी बस घर और गृहस्थी तक ही सीमित हो जाती।
0: अगर कोई लड़की गलती से गर्भवती हो जाए तो कई बार वो डर की वजह से चोरी छुपके गर्भपात करवा लेती है, ये कितना खतरनाक है सिहतिया जी?
1: जब किसी किशोरी को डर लगता है, शर्म आती है या सही जानकारी नहीं होती तो वो गुपचुप गलत जगह जाकर डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भपात करवा लेती है। ऐसे में उसे नुकसान हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, बहुत खून बहना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इसलिए सही जानकारी जरूरी है अगर लड़की को सही सलाह और सुरक्षित इलाज मिले तो ऐसे हालात से बचा जा सकता।
0: ठीक कहा आपने सिहतिया जी। अब एक दूसरी समस्या पर आते हैं। आजकल किशोरों में यौन संक्रमण और HIV जैसी बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ रहा है?
1: किशोर अवस्था में शरीर और मन में कई बदलाव आते हैं। वे बहुत सी नई बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें जरूरी जानकारी नहीं मिलती, जैसे कि सुरक्षित यौन संबंध क्या है या कंडोम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो वे कभी कभी ऐसा काम कर सकते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं होती। HIV और बाकी यौन संक्रमण असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। अगर किशोरों को ये नहीं पता कि इन बीमारियों से कैसा बचा जाए, तो वे अपनी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। इसलिए जरूरत है कि उन्हें खुलकर सही और साफ जानकारी दी जाए।
0: सिहतिया जी, हमने किशोरों की शारीरिक सेहत और यौन स्वास्थ्य की बातें, लेकिन एक बात जो अक्सर पीछे छूट जाती है वो है मानसिक स्वास्थ्य। आजकल किशोरों में डिप्रेशन, चिंता और तनाव की दिक्कत क्यों बढ़ रही है?
1: देखिए, किशोर नए माहौल में जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, पढ़ाई का दबाव होता है, शरीर में बदलाव आता है और ऊपर से समाज की उम्मीद की तू लड़का है रो नहीं सकता या तू लड़की है समझदारी से चल, ये बातें दिमाग पर बोझ डालती हैं। कोई लड़का या लड़की किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन उसे बोलने की इजाजत नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ अपने अंदर छुपाएगा। धीरे धीरे ये चीजें तनाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की वजह बन सकती है। कई बार किशोर रिश्तों को लेकर डरे रहते हैं और कोई उनकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग कहते हैं कि चुप रहे, ऐसी बातें मत कर। इसलिए किशोर को सुनने और समझने की जरूरत है। अगर वो मदद लेते हैं तो ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। स्कूलों में काउंसलर हो, घर में प्यार से बात हो और हेल्थ सेंटर में उचित सलाह मिले तो बहुत कुछ सुधर सकता है।
0: किशोरों के सामने बहुत सवाल होते हैं, जैसे शरीर में हो रहे बदलाव, रिश्तों की समझ और सही गलत का फर्क। क्या ऐसे में कोई तरीका है जिससे वे अपने फैसले समझदारी से ले सके?
1: सबसे बढ़िया तरीका है कि बच्चों को समग्र यौन शिक्षा दी जाए। अब नाम सुनकर कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ सेक्स की बातें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों को ये समझाया जाता है कि उनका शरीर कैसे बदलता है, उनके अधिकार क्या होते हैं और रिश्तों में कैसे समझदारी और जिम्मेदारी से ये फैसले लेने चाहिए। जैसे अगर किसी लड़की को स्कूल में बताया जाए कि पीरियड्स बिल्कुल सामान्य चीज है और इसे लेकर शर्माने की जरूरत नहीं है, या किसी लड़के को सिखाया जाए कि अगर कोई ना कहे तो उसे मनाना चाहिए, तो दोनों आगे चलकर ज्यादा समझदारी और इज्जत से रिश्ते निभाएंगे।
0: बिल्कुल सिहतिया जी, किशोरों को सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या गर्भ से बचने के लिए उपाय यानी गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जानकारी भी दी जानी चाहिए?
1: एकदम दी जानी चाहिए। जब कोई किशोर या किशोरी यौन संबंध के बारे में सोचने लगते हैं, तो उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी देना बहुत जरूरी है। गर्भ निरोधक साधन इस जानकारी का अहम हिस्सा है। अगर किसी को कुछ पता ही नहीं हो और वो किसी रिश्ते में शारीरिक रूप से जुड़ जाए, फिर अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी पढ़ाई, करियर, पूरा भविष्य बिगड़ सकता है। उस लड़की की सेहत भी खतरे में पड़ सकती है। अब अगर पहले से उसे पता हो कि कंडोम क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली कैसे काम करती है या फिर इमरजेंसी पिल कब लेनी चाहिए, इन बातों की जानकारी से फैसला समझदारी भरा होगा।
0: लेकिन सिहतिया जी, कुछ लोग कहते हैं अगर किशोरों को ये सब सिखाया बताया तो वे कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़े।
1: यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जानकारी देना कोई गलत रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि समझदार और जिम्मेदार बनाना। अगर किशोरों को कुछ बताया ही नहीं गया तो वे कहीं और से, इंटरनेट या दोस्तों से अधूरी या गलत जानकारी लेकर उलझ सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल, घर या हेल्थ सेंटर में खुले मन से बात हो तो वे खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे।
0: सिहतिया जी, आपने बताया कि किशोरों को सही जानकारी और सही माहौल देना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी पहल हुई है?
1: बिल्कुल खुशी जी, सरकार ने इस पर काफी काम किया है। देखिए, एक योजना है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK। इसके तहत किशोरों को सेहत, पोषण, मानसिक तनाव, यौन स्वास्थ्य और नशे से बचाव जैसी चीजों पर जानकारी दी जाती है।
0: आखिर इस योजना में क्या क्या सुविधा मिलती है, यदि कोई किशोर या किशोरी हेल्प लेना चाहे तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं?
1: RKSK बहुत काम की चीज है। सरकार ने इसे खास तौर पर 10 से 19 साल के किशोरों के लिए शुरू किया है। इस योजना के कई हिस्से हैं। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, ये सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं, जहां किशोर अपनी समस्या खुलकर डॉक्टर या काउंसलर से कह सकते हैं। क्लिनिक में उन्हें उचित सलाह मिलती है। दूसरा है अनुपूर्ण कार्यक्रम, इसके तहत लड़के और लड़कियों को हफ्ते में एक बार आयरन की गोली दी जाती है ताकि उनमें खून की कमी ना हो। तीसरा है सहकर्मी शिक्षक योजना, इसमें गांव के ही कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने जैसे बाकी बच्चों से सेहत की बातें कर सके।
0: अच्छा सेहतिया जी, ऐसा है क्या?
1: हाँ, अब जैसे मेरे गांव की सीमा है, वो कक्षा 10 में पढ़ती है। RKSK से जुड़ने के बाद सीमा अपनी सहेलियों को मासिक धर्म, साफ सफाई और सुरक्षित यौन व्यवहार पर खुलकर बात करना सिखाती है, जानकारी देती है। सहेलियां भी अपनी बात बिना झिझके सीमा से साझा करती हैं। चौथा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना, इसमें सरकार सैनिटरी पैड्स खरीदने के लिए पैसे देती है ताकि गांव की लड़कियां साफ सफाई से पीरियड्स संभाल सके। पहले कई लड़कियां कपड़े का इस्तेमाल करती थी जिससे इन्फेक्शन हो जाता था, अब ये स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। RKSK सिर्फ आम किशोरों के लिए ही नहीं बल्कि LGBTQ बच्चों जैसे लेस्बियन, ग्रे, ट्रांसजेंडर के लिए भी है। डॉक्टर, ANM, काउंसलर सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह सभी किसी ना किसी की मदद बिना भेदभाव के कर सके।
0: सेहतिया, अगर RKSK जैसे प्रोग्राम हर गांव, हर स्कूल तक पहुंचाएं, तो किशोर सिर्फ तंदुरुस्त ही नहीं होंगे बल्कि कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे।
1: देखिए आरजे खुशी जी, एक और बढ़िया योजना है ARSH, इसका मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, यानी किशोरों को उनकी उम्र के हिसाब से शरीर और सेहत से जुड़ी जरूरी बातें समझाना, जैसे कि शरीर में बदलाव क्यों होते हैं, पीरियड्स और यौन व प्रजनन से जुड़ी बातें क्या हैं। इन बातों को धीरे धीरे प्यार से खुलकर समझाया जाता है।
0: ये तो बहुत बढ़िया है सीतिया जी।
1: हाँ, अब सरिता की आप बीती आपको सुनाता हूँ। 14 साल की सरिता पढ़ाई में बहुत तेज है। पहले जब कोई पीरियड्स या शरीर के बदलाव की बात करता था तो सरिता और उसकी सहेलियां नजरें चुरा लेती थी, शर्मा जाती थी। फिर एक दिन गांव में RKSK योजना के तहत किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उस दिन ANM दीदी भी आई। उन्होंने लड़कियों से प्यार से बात की, बोली कि पीरियड्स आना कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो शरीर का एक सामान्य हिस्सा है। फिर उन्होंने बताया कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। उस दिन की बातें सरिता के दिल और दिमाग में घर कर गई। अब सरिता खुलकर बोलती है, अपनी सहेलियों को भी समझाती है।
0: बिल्कुल सेहतिया जी, जब कोई इतनी गंभीर बात हो, खासकर सेहत को लेकर, तो बात खुलकर ही करनी चाहिए। इसमें डर और शर्म करके अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी नुकसान होता है।
1: सरिता की सहेली गीता कई दिनों से थकी थकी सी रहती थी, कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, चक्कर आते रहते थे। फिर वह आंगनवाड़ी केंद्र आई तो वहाँ मौजूद ANM रेखा दीदी ने गीता से बात की, फिर उनकी जांच करवाई। पता चला कि उसे खून की कमी यानी एनीमिया है। अगर समय रहते पता ना चलता तो परेशानी बढ़ सकती थी, लेकिन समय पर इलाज मिला और गीता स्वस्थ हो गई।
0: मतलब ये योजना सच में जमीन पर असर कर रही है।
1: और सुनिए, सबसे प्रेरणादायक बात तो ये रही पास के गांव की रीना की कहानी। रीना बहुत होनहार लड़की थी, 8वीं में पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा अंक लाए थे, लेकिन जब वो 16 साल की हुई तो घर वालों ने शादी की बात शुरू कर दी। बोली, अब ज्यादा पढ़ाई का क्या फायदा, लड़की तो घर ही संभालेगी। रीना ने हिम्मत जुटाई और अपनी आंगनवाड़ी दीदी और स्कूल की शिक्षिका से बात की। उन्होंने उसके माता पिता को समझाया कि 18 साल से पहले शादी करना ना सिर्फ कानूनन गलत है बल्कि लड़की की सेहत और भविष्य के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और स्किल ट्रेनिंग देती है, धीरे धीरे परिवार मान गया। आज रीना इंटर की पढ़ाई कर रही है और आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है।
0: क्या बात है सियातिया जी, जब सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से मिले तो किशोर अपने फैसले खुद लेने लगते हैं।
1: किशोर छोटे बच्चे नहीं होते और ना ही वो पूरी तरह बड़े हो जाते हैं, वे बीच का सफर तय कर रहे हैं। उन्हें सुना जाना और साथ दिया जाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं सियातिया जी। दोस्तों ये ठान लें कि हम किशोरों को टोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, सुनेंगे और उनका साथ देंगे, क्योंकि जब जानकारी सही होगी, सोच खुली होगी, तभी सेहत भी अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभकारी के अगले एपिसोड में। पर जाने से पहले लेते हैं हम अपने सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए हम जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। तो दोस्तों सेहत सही
0: तो लाभ कई। सुनते रहिएगा अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी।
1: और आज हमारी कहानी पहुंची है उस शहर में जिसकी सुबह गंगा की लहरों से होती है, जिसकी गलियों में सदियों की संस्कृति बसती है और जिसकी पहचान सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है।
0: जी हाँ, आज बात होगी काशी की, हमारे बनारस की, हमारे वाराणसी की।
1: एक ऐसा शहर जहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती दिखाई देती है। एक तरफ गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियाँ और बनारसी संस्कृति की मिठास,
0: तो दूसरी तरफ सड़क, बिजली, आवास, रोजगार और जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से बदलती हुई तस्वीर।
1: क्योंकि विकास सिर्फ बड़े शहरों की ऊंची इमारतों का नाम नहीं,
0: विकास तब मायने रखता है जब उसकी रोशनी गांव के उस घर तक पहुंचे जहां एक माँ अपने बच्चे को बेहतर भविष्य के लिए दिन रात संघर्ष करती है।
1: और ऐसी ही एक कहानी है वाराणसी के छितौना गांव की।
0: छितौना की रहने वाली जड़ावती देवी, एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली जड़ावती देवी ने जिंदगी में मुश्किलें तो बहुत देखी, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ।
1: सीमित साधन, घर की जिम्मेदारियां और बच्चों की पढ़ाई का सपना, जड़ावती देवी ने संघर्ष किया, मेहनत की और अपने बच्चों को पढ़ाने की पूरी कोशिश की।
0: क्योंकि माँ के लिए बच्चों की पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, वो उसके सपनों की वो सीढ़ी होती है जिस पर चढ़कर उसके बच्चे उससे बेहतर जिंदगी जी सकें।
1: और आज जब सरकार की योजनाओं का लाभ ऐसी जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचता है तो उनके संघर्ष में एक नया सहारा जुड़ता है।
0: जड़ावती देवी को आवास की सुविधा मिली, परिवार को राशन कार्ड की सुविधा मिली और मनरेगा का जॉब कार्ड भी मिला।
1: यानी कि सिर पर छत का सहारा, परिवार के लिए खाद्यान्न सुरक्षा का सहारा और रोजगार के अवसर से जुड़ने का एक माध्यम।
0: किसी बड़े शहर में बैठकर ये सुविधाएं शायद सिर्फ योजनाओं के नाम लगे,
1: लेकिन जड़ावती देवी जैसे परिवार के लिए यही सुविधाएं जिंदगी की मुश्किल राह को थोड़ा आसान बनाने वाली उम्मीद बनती है। दोस्तों, गांव की मिट्टी की खुशबू अलग ही होती है, पर फिलहाल आज हम गांव की मिट्टी की बात नहीं करने आए हैं, आज हम बात करने आए हैं विकास की। प्रदेश भर में जो विकास की लहर चल रही है उसकी छवि जो है बनारस में भी देखने को मिल रही है। बनारस और इससे संबंधित जो भी गांव है यहां पर भी विकास की जो छटा है वो बहुत अच्छे से छा रही है। और दोस्तों, विकास से जुड़ी बातें करने के लिए हम आपके साथ विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो जुड़ते ही हैं, और उसी कड़ी में आज हम आ चुके हैं वाराणसी के एक गांव में एक लाभार्थी से बात करने। इन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए।
2: हमारा नाम जड़ावती देवी है।
1: घर में कौन कौन है आप?
2: हमारा बस माई है ना, एक लड़का बस, और हम हैं, तीन लोग बस हैं।
1: और क्या करती हैं आप?
2: बस खाना बनाते हैं, सरकारी काम मिला है बस वही।
1: और बेटा क्या करता है?
2: अभी कुछ नहीं।
1: तो जड़ावती जी, जो सरकार की विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं में से आपको किन किन परियोजनाओं का लाभ मिला है?
2: बस शौचालय, आवास, हाँ, आयुष्मान कार्ड बस बना है।
1: तो आपको, जैसे कि आपका घर नहीं था पहले, तो अब
2: पहले मड़ई था, इस पर ये जो बना है इस पर मड़ई था, अब उधर भी एक था, बस यही था
1: पहले, कच्चा घर।
2: हाँ, एकदम।
1: तो अब आवास के तहत जो आपको लाभ मिला है उससे अभी क्या क्या चीजें बनी है आपके घर?
2: पहले बहुत दिक्कत हुआ था, बस छत ढला है, आरियारी ढला है, अभी अब जाके जब आवास मिला है तब तो ठीक थी, सब कुछ आरियारी दीवार हो गया है, छत भी बन गया है और सब बाकी है अभी करने के लिए।
1: पहले आप कच्चे घर में रहती थी। हाँ। तो अब क्या है कि अब आपके पास पक्का मकान हो गया है, टीन शेड लग गया है। हाँ। और जैसे कि आपने बकरी भी पाली है तो हाँ, बकरी को भी रखने में उसमें आपको आसानी होती है।
2: हाँ।
1: और ये बताइए जड़ावती जी कि जैसे अब शौचालय बन गया है आपके यहाँ, तो शौचालय बनने से क्या फायदा है?
2: बहुत फायदा है, उतरे खुले में जाना पड़ता है, हमारी माँ को ज्यादा दिक्कत होती है,
1: बिल्कुल। और शौचालय बनने से क्या होता है कि शौचालय जो है किसी भी औरत के सम्मान या उनकी मर्यादा से भी संबंधित, उसको हम देखते हैं समाज में। लोग जो है खुले में शौच में जाते थे, तो उससे क्या है कि कई सारी बीमारियों का भी खतरा रहता था, बीमारियों का भी खतरा रहता था। या वृद्ध जन है आपके घर में, एजेड है आपकी जो माता जी है, तो उनको भी अब सुविधा रहती है और आपको भी सुविधा रहती है।
2: पहले हम मड़ई में रहते थे, आवास मिल गया है, अब मकान बन गया है, शौचालय है, राशन कार्ड भी है। मोदी को और योगी को हमारा धन्यवाद।
0: आपने सुना, ये सिर्फ एक लाभार्थी की आवाज नहीं है,
1: ये उस माँ की आवाज है जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष किया और अब सरकारी योजनाओं के जरिए अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है।
0: लेकिन किसी योजना का लाभ जब गांव के परिवारों तक पहुंचता है तो उसके पीछे स्थानीय स्तर पर भी कई लोगों की भूमिका होती है।
1: तो आइए जानते हैं चितौना गाँव में विकास और सरकारी योजनाओं के लाभ को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का क्या कहना है। दोस्तों, असली विकास वो होता है जो सबको लेके चले, यानी कि समावेश करके चले। और वाराणसी में भी जो विकास की लहर है पूरे उत्तर प्रदेश की, वो दिखाई दे रही है। और इसी लहर के चलते आज हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के छितौना गांव में, जहां पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास शख्स से जो कि इस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो चलिए अपनी बातचीत को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यहां पर क्या क्या कार्य हुए हैं विकास से संबंधित। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, आप अपना नाम बताइए।
3: आलोक यादव।
1: आलोक जी, इस ग्राम में जो है कई तरीके के विकास परियोजनाओं पे काम हो रहा होगा, तो अभी फिलहाल में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं और किस प्रकार से जो है उसका लाभ लोगों को दिया जा रहा है?
3: कच्चे रोडों को बनवाया जा रहा है, जो पहले से बने हुए रोडों उन पे कंक्रीट डाला जा रहा है, खड़पे लगाए जा रहे हैं और डमरू लगाया जा रहा है, और जहाँ जहाँ पानी लग रहा है उसका निस्तारण के लिए नालियाँ लगाई जा रही हैं, और जो इनके पास घर नहीं उनके लिए मुख्यमंत्री आवास, विधवा और विकलांगों के लिए ऑलरेडी मिल चुका है 12-13 लोगों को मेरे गांव में, और कुछ लोगों का जो अभी लिस्ट में नाम गया है, जीरो प्रॉपर्टी वालों का भी गया है जिनके पास एकदम ही कुछ नहीं।
1: यदि कोई आवास के लिए अप्लाई करना चाहता है तो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं या क्या उसका प्रोसेस होता है?
3: उसमें जैसे कि वो पात्र होना चाहिए, उसके पास 6 फीट से ऊपर पक्की दीवार नहीं होनी चाहिए, प्लस झोपड़ी टाइप रहना चाहिए, ये न कि वो झोपड़ी बनाकर दिखाए, झोपड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि 2-3 बार उसकी जियो टैगिंग होती है, वहाँ से अधिकारी आते हैं जांच करते हैं, तब उनको लाभार्थी को लाभ दिया जाता है।
1: कोई तरीके की ऐसे आपको समस्या भी देखने को मिलती है कि लोगों को अलॉट करने में या इस प्रोसेस में कोई तरीके की समस्या जो लोगों को आ रही हो या आपको आ रही हो अपने लेवल पर?
3: जैसे क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग दूसरे के घरों में रहते हैं और वो पक्का होता है, और तो उनसे ये मांगा जाता है कि आप जिसके मकान में रह रहे हैं या फिर आप अपने भाई के ही मकान में रह रहे हैं तो उनसे लिखित ले लें एक स्टाम्प पे कि वो मेरा घर है, मैं इनको भाड़े पे या उनके रहने के लिए दिया हूँ, तब मैं अलॉट कर पाता हूँ, इसी वजह से उनको नहीं मिल पाता है।
1: मतलब कि दस्तावेजों से संबंधित जो है कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं। और अभी जो है कई तरीके की परियोजनाओं का लाभ जो है यहाँ पर लोगों को मिल रहा है, हमने देखा है, जिसमें से कि मुख्य तौर से मुख्यमंत्री आवास योजना और राशन कार्ड की सुविधा और मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है उससे संबंधित भी चीजें हैं। तो लक्ष्य आपका एकदम साफ है कि बाकी जो आगे भी है, जो डेवलपमेंट की चीजें हैं या विकास कार्य आपका निरंतर चलता रहेगा, और ग्राउंड लेवल पर चीजें करने के लिए साथियों बहुत जरूरी होता है नेतृत्व। जब ऊपर बैठे लोगों का नेतृत्व हमें अच्छा मिलता है तभी विकास कार्य की जो छवि है वो ग्राउंड लेवल पर आपको दिख पाती है अच्छे तरीके से। और आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ
3: मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद बोलना चाहते हैं, इसी तरह करते रहें हमारे गांव का विकास, उनको मेरे तरफ से धन्यवाद।
0: ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की बातों से साफ है कि गांव के स्तर पर विकास की तस्वीर सिर्फ सुविधाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं की पहुंच से भी जुड़ी है।
1: लेकिन चितौना की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
0: हमारी दूसरी कहानी है आशिमा बेगम की, 2 बच्चों की अम्मा और जीवन की कठिन परिस्थितियों के बीच अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालती हुई एक सशक्त महिला।
1: आशिमा बेगम के पति भी नहीं है। ऐसे में दो बच्चों की परवरिश और परिवार की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं रहा होगा।
0: लेकिन मुश्किल हालात के सामने खड़े होकर आगे बढ़ना ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है।
1: आशिमा बेगम को भी आवास की सुविधा, राशन कार्ड और मनरेगा का जॉब कार्ड मिला।
0: यानी एक महिला, दो बच्चे और चुनौतियों से भरी हुई जिंदगी, लेकिन अब परिवार के पास एक सुरक्षित आवास, खाद्यान्न सुविधा से जुड़ाव और रोजगार के अवसर से जुड़ने का रास्ता है।
1: दोस्तों, विकास की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुकी है और वही लहर अब हमें देखने को मिल रही है वाराणसी और उसके आसपास के गांव में भी। और ऐसे ही कुछ विकास की बातें लेकर हम आ पहुंचे हैं वाराणसी के एक गांव में, जहां पर हम एक लाभार्थी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको किस तरीके के लाभ सरकार द्वारा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं गरीबों के कल्याण के लिए या इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए किए अपने लाभार्थी से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है?
4: आशिमा।
1: और क्या आपके गांव का नाम है?
4: चितौना।
1: क्या करती हैं आशिमा जी?
4: यही मजदूरी का काम, बच्चों के खेते हैं, आप जानते हैं गरीब है।
1: तो जैसे मजदूरी में जो मनरेगा आपका
4: गेहूं धान काटते हैं,
1: तो मनरेगा के तहत आप अपना मजदूरी करती हैं। और परिवार में कौन कौन है?
4: यही दोनों बच्चे हैं।
1: अच्छा, तो स्कूल जाते हैं?
4: हाँ, स्कूल जाते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं दोनों।
1: कितने बड़े बच्चे?
4: एक दिन पाँच में पढ़ते हैं और एक दिन दो में पढ़ते हैं और एक दिन पाँच साल का है। और
1: तो आशिमा जी, आप मुझे बताइए कि जैसे कि आपको जो है, हमें पता चला है कि आवास योजना के तहत लाभ मिला है, तो पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है? पहले कैसे रहती थी जब मकान नहीं बना था? तो
4: जैसे कि मैं पहले तो कच्चे में रहती थी, कच्चे के बाद तम्मी जो मजदूरी को बच्चों लोग बना के खिलाते हैं और जो अपने राशन बना के खिलाए हैं। अभी जो है
1: 18-19 साल से आप कच्चे घर में रहती थी। हाँ। फिर उसके बाद जो है, जब आपको आवास मिला है, तो उसके बाद जो पक्के मकान में आप रहने लगी?
4: दो साल हुआ था तो दो साल हुआ तो बना है
1: आपका जो घर है, दो साल से आप उसमें रह रही हैं। आशिमा की कहानी हमें एक बात सिखाती है
0: कि जब किसी जरूरतमंद परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, तो उसका असर सिर्फ कागज पर दर्ज नहीं होता है,
1: उसका असर घर की चौखट पर दिखाई देता है,
0: बच्चों के भविष्य में दिखाई देता है
1: और उस माँ के चेहरे पर दिखाई देता है जो कल की चिंता के बीच आज थोड़ा सुकून महसूस कर पाती है। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है,
0: ये आस्था है, संस्कृति है और विरासत है।
1: और अब तो ये विकास की नई कहानी भी लिख रहा है।
0: वाराणसी में विकास की तस्वीर आज कई स्तरों पर दिखाई देती है, बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लेकर कनेक्टिविटी, पर्यटन, रोजगार और जन कल्याण तक।
1: और इस विकास यात्रा में गांव और गरीब परिवार पीछे न छूटे, यही किसी भी जन कल्याणकारी व्यवस्था की सबसे बड़ी कसौटी है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार विकास के साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद परिवारों तक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दे रही है।
1: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रूप में वाराणसी में भी विकास की कई परियोजनाओं और योजनाओं ने शहर की तस्वीर को नई दिशा देने का काम किया है।
0: लेकिन बनारस की असली खूबसूरती सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट में नहीं है,
1: बल्कि उस छोटे से गांव में भी है जहां जड़ावती देवी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखती है,
0: जहां आशिमा बेगम अपने दो बच्चों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं,
1: और जहां सरकारी योजनाएं उनके संघर्ष में सहारा बनने का काम कर रही हैं।
0: यही है विकास का असली मतलब।
1: जब विकास शहर से गांव तक पहुंचे,
0: जब परियोजनाएं कागज से निकलकर जरूरतमंद परिवारों के घर तक पहुंचे,
1: जब एक माँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा और निश्चिंत हो सके,
0: और जब हर परिवार को लगे कि बदलते उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में उसकी भी हिस्सेदारी है,
1: गंगा की लहरों की तरह निरंतर आगे बढ़ती काशी,
0: अपनी विरासत को संजोते हुए विकास की नई राह पर बढ़ता वाराणसी
1: और छितौना जैसे गांव में उम्मीद जगाती जन कल्याण की कहानियाँ,
0: यही है नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर।
1: एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां विकास की रफ्तार के साथ जन कल्याण को भी आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
0: तो ये थी बनारस के छितौना गांव से आई दो परिवारों की कहानी,
1: जड़ावती देवी और आशिमा बेगम की कहानी,
0: संघर्ष की कहानी,
1: हौसले की कहानी
0: और सरकारी योजनाओं से मिली नई उम्मीद की कहानी।
1: आप सुन रहे थे
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी।
5: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और आज की कहानी है इस शहर की जहां आस्था की गहराई भी है और विकास की नई रफ्तार भी। जी हां, बात हो रही है गोरखपुर की।
1: बिल्कुल, गोरखपुर जहां की मिट्टी में परंपरा की खुशबू है, तो वहीं आज के बदलते दौर में मेहनत, हुनर और उद्यमिता की नई पहचान भी दिखाई दे रही है। शहर की गलियों से लेकर छोटे छोटे कारोबार तक बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर यहां साफ नजर आती है।
0: और इस बदलाव के पीछे है विकास की ऐसी सोच जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े हैं, स्थानीय प्रतिभा को मंच मिले और अपने पैरों पर खड़ी होने का सपना सच हो।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और दूरदर्शी सोच में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिससे युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं।
0: गोरखपुर में भी इस प्रयासों का असर उन चेहरों पर दिखता है जिन्होंने अवसर को अपनी मेहनत से सफलता में बदलना है।
1: तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं एक ऐसी महिला उद्यमी की कहानी जिनके लिए कारोबार सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता है।
2: नमस्कार, मेरी यात्रा 2014 में एक साइकिल से शुरू हुई थी और आज मैं जिस जगह पर बैठी हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आज मैं उद्यमी के रूप में आप लोगों के बीच आऊंगी। तो ये सब संभव हुआ हमारे प्रयास और सरकार की योजनाओं से।
3: आप अभी इस समय सिद्धिविनायक पैकेजर्स नामक जो आपका संस्थान है, इसके माध्यम से थोड़ा सा और विस्तार में हमको बताएं कि इसको यहाँ तक पहुँचाने के क्रम में आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला, आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आपने किन किन योजनाओं का लाभ दिया, और जिससे आपके साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनका जीवन स्तर जो सुधरा हुआ है। तो जो विकास की यात्रा है वो आप अपने मुंह से खुद बताएं कि आपके साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको आप किन किन योजनाओं से लाभान्वित कराया है।
2: पहले तो जब मैं अकेले इस मुहिम में निकली थी तो मैं अकेली थी और साइकिल से मैंने यात्रा को तय किया, और उन दिनों कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे एक डूडा का जो लोन होता है वो भी नहीं मिल पाया। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, मुझे PNGP से 50 लाख का लोन मिला मुझे आगे काम बढ़ाने में, और मैंने अपने साथ साथ जो मेरी संस्था है वुमेन स्ट्रेंथ सोसाइटी, उसके माध्यम से मेरे साथ हजारों महिलाएं जुड़ी हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जुड़ी हैं। तो मैं जिस तरह से मैं यात्रा में अकेले निकली थी, तो मैं ये नहीं चाहती थी कि हमारी बहनों को भी संघर्षों का सामना करना पड़े। इसीलिए मैं अपनी बहनों को जोड़ के, और आज हमारे सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, उन अपने तो मैं लाभान्वित हुई ही, और अपने साथ साथ मैं अपने संस्था से जुड़ी और भी जितनी बहनें मेरे पास आती हैं उनको सरकार की योजनाओं से मैंने स्वयं लाभान्वित किया, युवाओं को, महिलाओं को। तो सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिससे हमारी बहनें जुड़ी हैं, CM युवा से जुड़ी हैं बहनें, ODOP के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से महिलाएं सम्मानित हो रही हैं, और उन्होंने अपना स्वयं का व्यापार शुरू किया। तो मशीन सरकार से मिलती है और सिलाई का काम उन्हें मैं दे देती हूँ। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनसे हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनी हैं, और इससे हमारी बहनें भी चाहती हैं, हम भी ये चाहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट जब से उत्तर प्रदेश में आई है तब से महिलाओं का और युवाओं का बड़ा विकास हुआ है। जो कहीं नौकरी के लिए जाते थे, आज युवा और महिला स्वयं 10-20 लोगों को रख के समूह के ही माध्यम से अपना व्यापार चला रहे हैं और आत्मनिर्भर बने हैं। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ जिस तरह से मैंने अपने व्यापार को बढ़ाया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें 1.8 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारी संस्था को मिला जो ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाला है, जिसमें करीबन 300 महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के मुख पर ये मुस्कान कि हम कहाँ जाते रोजगार के लिए शहर में। आज हमारे सरकार की ये देन है, ये उपलब्धि है कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने ऐसे अवसर दिए।
3: दिव्यवाली दीदी, आपसे एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ। जो मैं जानता हूँ, जो मेरे सुनने में आया है कि आपसे जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हम लोगों का ये लगता हुआ ब्लॉक चरगामा है, तो चरगामा ब्लॉक के अंतर्गत, उस विकास खंड के अंतर्गत जो वहाँ के BDO साहब हैं, उनसे लाइजनिंग करके, उनसे बातचीत करके तमाम बहनों को आपने जो सरकार द्वारा अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे आपका जो है आयुष्मान कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इस प्रकार की जो अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनसे भी आप से जुड़ी जो महिलाएं हैं, अन्य महिलाएं हैं, उनको भी आप वीडियो साहब से बातचीत करके जोड़ने का प्रयास करती हैं, तो थोड़ा सा उसको भी आप बताना।
2: बिल्कुल, वीडियो साहब से हमने प्रयास, क्योंकि महिलाएं कोई भी काम होता है तो मेरे पास आती हैं, तो वृद्धा पेंशन और आयुष्मान कार्ड जिन महिलाओं के नहीं बन पाते हैं, हम लोग जाती है, हमारी टीम, हम भी जाते हैं। तो आज महिलाएं आयुष्मान कार्ड के साथ साथ वृद्धा पेंशन, आवास योजना और आवास के लिए तो ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जो बिल्कुल रीढ़ी थी, उसकी जरूरत थी, वैसी महिलाओं को आवास मिला है इस सरकार में। तो वो सारी महिलाएं हमारे साथ इसीलिए जुड़ी हैं कि मैं सरकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ पाती हूं और उसका लाभ उनको सीधे अधिकारियों के संपर्क के द्वारा उनको हम लोग देते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, चूंकि मैं सभी अधिकारियों से मिलती जुलती हूँ, जाती हूँ, आज हमारे सरकार की बहुत योजनाएं हैं, योजनाओं की बाढ़ है और इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा एक ये भी कहना है कि जितना हो रहा है उससे भी अधिक हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारे अधिकारी गण हैं, वो युवा और महिलाओं को कहीं भी देखें तो उनको अपने बुलाएं और उनसे बात करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें।
3: बिल्कुल संगीता जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी महिलाओं को आपने जो है सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है और साथ ही साथ उद्योग जगत से भी उन लोगों को जोड़ा है, उनका रोजगार का सीजन हुआ है, उनका जीवन सुखमय हुआ है, तो क्यों न हम एक साथ बोले कि विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार, धन्यवाद पूज्य महाराज जी।
2: धन्यवाद तो उत्तर प्रदेश सरकार को है ही, और ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये तमाम महिलाएं जो अपने घर के चार दीवारी में कैद थी, उसको समूह के ही माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाहर निकाला और उनको ये अवसर दिया कि वो स्वरोजगार से जुड़ी, आत्मनिर्भर बनी। तो इसके लिए धन्यवाद उत्तर प्रदेश और धन्यवाद हमारे माननीय महाराज जी को, हम सभी महिलाओं की तरफ से और हम सभी युवाओं की तरफ से।
3: बहुत बहुत आभार संगीता पांडे जी, आपने जो है अपना कीमती समय दिया और सरकार की योजनाओं का लाभ किस प्रकार से लोग ले रहे हैं, किस प्रकार से आपने इसका लाभ उठाया है, तो विकास का प्रदेश
2: उत्तर प्रदेश।
0: सुना आपने, जब सरकारी सहयोग अपने हुनर और मेहनत का साथ मिलता है तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़ी मिसाल बन सकता है।
1: और यही कहानी गोरखपुर के एक और लाभार्थी की है, जहां विकास का मतलब सिर्फ रोजगार या कारोबार तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए जीवन में बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा का विस्तार भी है।
4: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश अभियान के अंतर्गत हम आ पहुंचे हैं यहां से लगे हुए गांव घोसीपुरवा में, जहां पर तेजू प्रसाद जी का घर है। उनसे हम जानेंगे कि सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। तो विकास की कहानी लाभार्थी की जुबानी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे।
5: हमारा नाम तेजू प्रसाद है।
4: तेजू जी, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हुआ है?
5: उनको घर का पैसा मिला, घर बन गया है, आयुष्मान कार्ड का हो गया, राशन कार्ड भी चलता है, माँ का रह गई वृद्धा पेंशन में, और बाकी जो सरकार की तरफ से वो ठीक ही चल रहा है।
4: हमको आपका घर ठीक नहीं था, सरकार की तरफ से आपको आवास मिल गया है।
5: मिल गया, आवास मिल गया, घर बन गया।
4: आपकी माता जी को वृद्धा पेंशन भी मिल रही है, तो फिर भी आप संतुष्ट हैं सरकार की योजनाओं का लाभ पाकर?
5: हाँ, एकदम संतुष्ट हूं।
4: अभी जिन योजनाओं से आप लाभान्वित हो रहे हैं उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे?
5: उनका धन्यवाद, हमारे लिए इतना कुछ किए, अब उससे अधिक कुछ करें तो और अच्छा भी लगेगा।
4: तो ये थे हमारे साथ तेजू प्रसाद जी, जो यहाँ से लगे हुए गांव घोसीपुरवा के निवासी हैं। हम देख रहे हैं, इनसे भी बात करके हमने जाना और आप भी सुन रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है, संतुष्ट है। कुछ कमियां हैं, वो भी पूरी होंगी, जैसे सरकार ने अभी तक विकास की इस कहानी को विस्तृत किया है। हम आशा करते हैं कि बाकी जनता भी जो लाभान्वित होने से अभी वंचित है, उसको भी इन सभी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा और तेजू प्रसाद जी की तरह बाकी जनता भी हमारी सरकार से ऐसे ही संतुष्ट होगी और उनके द्वारा संचालित योजनाओं का इसी तरह से लाभ प्राप्त करती रहेगी।
0: यानी एक और मेहनत से आगे बढ़ने का अवसर, तो दूसरी ओर परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा का सहारा, यही योजनाओं का असली असर है।
1: मुख्यमंत्री आवास योजना से परिवार को अपने घर का सहारा मिला, आयुष्मान कार्ड से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद मजबूत की, राशन कार्ड ने परिवार की रोजमर्रा की जरूरत में मदद की, वृद्ध पेंशन ने बुजुर्ग सदस्य के जीवन में आर्थिक संबल जोड़ा।
0: मतलब सरकारी योजनाएं जब जरूरतमंदों पर सीधे पहुंचती हैं, तो उनका असर सिर्फ कागजों पर नहीं रहता, वो घर की चौखट से लेकर फिर खुशियों तक दिखाई देता है।
1: और यही तो विकास की वह तस्वीर है, जहां एक परिवार अपने आज को संभालते हुए बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाता है।
0: वाकई इन अनुभवों में सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखाई देती है।
1: और इस बदलाव को जमीन पर किस तरह गति मिल रही है, योजना का लाभ लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, इसे लेकर अब सुनते हैं संबंधित अधिकारी की बात।
6: मेरा नाम उज्जवल सिंह है और वर्तमान में मैं जनपद गोरखपुर में डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट के रूप में कार्यरत हूँ।
4: सबसे पहले जानना चाहूंगी गोरखपुर जनपद में सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो प्रभावी रूप से संचालित हो रही हैं?
6: वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा कई सारी जो है योजनाएं एमएसएमई विभाग के द्वारा जो है संचालित है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुसीन स्कीम अभी लॉन्च की है, जिसके अतिरिक्त जो है ODOP मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, CM युवा जिसे हम लोग मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहते हैं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP टूल किट योजना, इसके अतिरिक्त जो है MSME 2022 और टेक्निकल अपग्रेडेशन, ऐसी तमाम योजनाएं जो है संचालित हैं, जिनका जो है लाभ समाज के विभिन्न तबके के लोग जो है उठा रहे हैं।
4: जो संबंधित व्यक्ति हैं इस योजनाओं के, वो किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं?
6: जो विभाग के द्वारा योजनाएं संचालित हैं, उसमें उनको जो है ट्रेनिंग देने से लेके, यानी कि उनको कौशल उन्नयन से लेके और उनको कैसे जो है स्वरोजगार तक ले जाने के जितने भी चरण होते हैं, हर एक चरण पे जो है हमारी जो विभागीय योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो संचालित हैं, उसका लाभ लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि कोई व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है किसी विधा में, तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत जो है दर्जी, लोहार, नाई, टोकरी बुनकर, ऐसे तमाम जो है जो विधाएं हैं, उसमें उनको जो है प्रशिक्षण उनको प्राप्त होता है। ODOP के अंतर्गत जो है टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट से संबंधित जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे लोग जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, और साथ ही अन्य लोग जो इस काम में इच्छुक हैं, कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए जो है ऋण स्कीम है, लोन स्कीम है, उदाहरण के लिए ODOP मार्जिन मनी स्कीम है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, CM युवा जिसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कहते हैं, इसके अतिरिक्त एक जनपद एक व्यंजन स्कीम जो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लॉन्च की गई है, इनके माध्यम से वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो MSME की इकाइयां हैं, उनके लिए MSME पॉलिसी 2022 है, उसके तहत उनको लाभ प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो है बहुत सी इकाइयां जो अपने यहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्कीम है। कुछ लोग जो समूहों में काम करना चाहते हैं, क्लस्टर बेस काम करना चाहते हैं, उनके लिए क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो ODOP CFC की योजनाएं हैं, साथ ही गवर्नमेंट द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा MSC CTP योजना भी राज्य सरकार द्वारा जो है वो भी लागू है। तो काफी बड़े कैनवास पे जो है कई स्कीमों के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति जो है सरकार की विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके।
4: हमारी आधी आबादी महिलाएं, युवाओं के लिए और जो जन समूह में जो लोन करते हैं, इन लोग के लिए क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से ये लाभान्वित हो रहे हैं उसमें?
6: सभी स्कीमों में जो है विशेषकर महिलाओं के लिए विशेष जो है प्राविधान किया गया है, चाहे हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, चाहे CM युवा हो, चाहे ODOP हो, और चाहे MSME पॉलिसी 2022 हो, हर स्कीम में महिलाओं के लिए विशेष प्राविधान किए गए हैं। और जहां तक युवाओं की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा CM युवा स्कीम जो लॉन्च की गई है, वो विशेषकर युवाओं को ही फोकस करते हुए लॉन्च की गई है, और जिसमें युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया जा रहा है। इसमें 21 से 40 उम्र के जो भी युवा हैं, वो अगर अपना कोई उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो विभागीय योजना के माध्यम से वो लाभान्वित हो सकते हैं। और युवाओं को ही दृष्टिगत रखते हुए भी एक जनपद एक व्यंजन जो स्कीम है, क्योंकि ये खान पान से संबंधित है और मुझे लगता है कि युवाओं के द्वारा जो है बढ़ चढ़ के इस तरह से जो व्यंजनों से संबंधित उसमें काफी उनकी रुचि भी होती है, तो उस क्षेत्र में भी वो कार्य कर सकते हैं।
4: कोई व्यक्ति जो इन योजनाओं का लाभ लेना चाह रहा है किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहा है, क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए उसे?
6: सबसे पहले तो लाभ अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो सबसे पहले हमारे जो ऑफिस है, हमारे ऑफिस में किसी भी कार्य दिवस में वो आ सकता है। यहाँ पे उनको जो है जो भी स्कीम का वो लाभ लेना चाहते हैं उससे संबंधित उनको स्कीम के बारे में बताया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो है विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं हैं हमारी वो सारी पोर्टल पे ऑन बोर्ड की गई है, तो पोर्टल के माध्यम से भी जाके वो स्कीम के बारे में समझ सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, अगर चाहे वो ऑनलाइन मोड में या फिर अगर वो अगर इतने इसलिए अवेयर नहीं है, लगता है कि शायद चीजें हम पोर्टल के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे, तो किसी भी कार्य दिवस में ऑफिस में आके स्कीम्स के बारे में जान सकते हैं।
4: योजनाएं सिर्फ टेबल तक ना रह जाए, कागजों तक ना रह जाए, आम जनमानस तक जाए, प्रभावी रूप से संचालित भी हो, इस पे क्या पैनी नजर है?
6: जितनी भी स्कीम्स हैं सभी स्कीम्स का यही मकसद होता है कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक वो स्कीम पहुंचे। और हमारी जितनी भी स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी संचालित स्कीम है विभाग के द्वारा जिनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बढ़ चढ़ के लोगों के द्वारा उसमें हिस्सा लिया जा रहा है, चाहे वो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हो, चाहे वो DUP स्कीम हो, चाहे CM युवा हो, तो सभी में ही बहुत ही मतलब ग्रास रूट लेवल पे योजना हो, चाहे वो DUP स्कीम हो, चाहे CM युवा हो, तो सभी में ही बहुत ही मतलब ग्रास रूट लेवल पे भी जो लोग हैं वहां तक वो स्कीम पहुंच रही
4: है। अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे?
6: मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा और मेरा यही कहना है कि विभाग और सरकार के द्वारा बहुत सी अच्छी स्कीम्स आपके लिए लॉन्च की गई हैं और ये स्कीम आपकी ही है, और बढ़ चढ़ के जो है इन स्कीम्स का फायदा लेते हुए और उत्तर प्रदेश की आर्थिक तरक्की में आप लोग जो है सहभागी।
4: बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री उज्ज्वल सिंह जी। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार के द्वारा आयोजित ये इन योजनाओं का संबंधित व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
0: यानी गोरखपुर की ये कहानी बताती है कि विकास सिर्फ बड़ी इमारतों और बड़ी परियोजनाओं का नाम नहीं,
1: बल्कि विकास वो है जब किसी के हुनर को अवसर मिले, किसी के कारोबार को सहारा मिले और किसी परिवार को आवास, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं का संबल मिले।
0: यही है नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जहां परंपरा के साथ प्रगति है और अवसर के साथ आत्मनिर्भरता।
1: और गोरखपुर इस बदलती तस्वीर का एक जीवंत अध्याय है।
0: इसी के साथ विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश के आज के एपिसोड गोरखपुर की गाथा में हमें दीजिए इजाजत।
1: जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में ऐसी कई कहानियां अभी बाकी हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं सोच बदलो, जो कि अक्सर आप आनंद को और प्राची को ही सुनते थे, लेकिन आज रीना, खुशी और प्राची भी आप सभी के साथ है। हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सोच बदलो शो में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोच बदलो, और आज का सवाल है क्या आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या फिर उन बचपन बदल गया है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले, यानी कि देखिए, अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो हमारा बचपन था और आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है। उनको अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई, इनको साफ करो जल्दी जल्दी, कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी अरे और खेलो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची, मैं तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी।
1: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे मिस कर रहे हैं। पेड़ों पर चढ़ना, और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में, और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि इसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी, हमारी मम्मी, कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें, नेचर के साथ जो हमारा लगाव था, वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया, और भी बहुत सारी ऐसी पैंडमिक होती ही रहती है। अब तो एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और नेचर से बच्चों का ही नहीं, हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय है। खुशी, आपको क्या लगता है?
2: थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया। एंड आज के बच्चे, उनके पास तकनीक है, जानकारियां हैं, लेकिन क्या कहीं बचपन की वो सादगी, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है? दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी लाइक सोशल मीडिया, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए, हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं। लेकिन पहले के टाइम में प्राची, हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें, तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे, सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना, एक्टिविटीज। बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम प्राची से भी जानते हैं, प्राची आप क्या कहना चाहते
1: हैं? बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बस आजकल फोन चाहिए, और फोन ने जो उनके अंदर एक चीज उनके अंदर ये इवॉल्व हो गई है नई, कि उन्हें हर चीज एकदम चाहिए, एकदम क्विकली। वो उनके अंदर वेट और पेशेंस जैसी चीजें बहुत कम हो रही है। आप देख सकते हो जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जब से आ गई है, होम डिलीवरी सर्विसेज, तो बच्चों को क्या है कि अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अभी 2 मिनट में पिज्जा चाहिए, मुझे 2 मिनट में ये सामान चाहिए, ये ब्रिंग इट से। तो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया है, इवन यंगस्टर्स में भी। और ये वो चीज है लाइफ में पेशेंस, जो एक हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं, और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकल्केट करने की जरूरत है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात की है। लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे, लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे। और पता है, जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे तो उससे खेलते थे, और उसमें ना एक अपनापन होता था। हम जैसे सारे बच्चे मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके हम बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए।
1: आजकल तो आपको पता है बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं कुछ नहीं पता है हमें, बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हमको।
0: तो क्या होता था वो सूखने के बाद ना हम उसपे कलर करते थे बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
1: चीजें हमें इतनी अच्छी लगती थी।
0: और हम बच्चे खुद का मतलब अब क्या है इतना उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है पहली बात तो, और फिर हम पहले मतलब खुद का घर बनाते, ये इसका घर है वो उसका घर है, फिर हम सब छोटी मोटी कीर्तन करते थे।
2: मैं कहना चाहती हूँ रीना, जैसे प्राची भी बता रही थी कि पहले हम ईंट से हम घर बनाया करते थे और उस पर हम फिर हम उसे सजाया करते थे पत्तों से एंड फूलों से, तो कितना वो हैप्पीनेस वाला टाइम था ना। आगे आप राजी क्या कहना चाहते हो,
0: तुम बताओ पहले तुम क्या बचपन में कैसे खेलती थी। मैं तो सच बताऊं मिट्टी के बर्तन बना के गली मोहल्ले में हम सब बहुत खेलते थे, और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं दिवाली वगैरह तो हम वैसे बच्चों बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के मिठाइयां बनाते थे फिर उनको बांटते थे, घर घर में जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली हैप्पी दिवाली मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे।
2: अमेजिंग टाइम था। आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं।
0: हाँ, और जो साइकिल की जो टायर होती थी ना उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी।
2: हाँ, वो
0: हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा।
2: चलाया प्राची ऐसा वाला,
0: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम। आजकल के बच्चों की हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
2: नहीं बढ़ती है, प्रॉब्लम्स कितनी है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर नई नई बीमारियां आ रही हैं,
0: वो एक्टिविटी नहीं करते ना, एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए, मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेके जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं। अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी, मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रांग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं।
1: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया है। तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं, पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी आप यू नो आप ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम बिताए,
2: जुड़े नेचर से जुड़े।
3: दोस्तों एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं।

0: दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, ना उन्हें चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है, ना ही पेड़ों की ठंडी छाओं का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें, उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपने प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी,
1: व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत, ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से को अपने दायरे में ले आएगा। इससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इन देशों का संयुक्त रूप से सकल घरेलू उत्पाद 15 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उन्होंने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्ष में हस्ताक्षरित 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। ये 9 समझौते 60 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं और 38 विकसित देशों को अपने दायरे में लाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे। श्री गोयल 200 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
2: We have about 80 companies.
3: हमारे प्रतिनिधिमंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधिमंडल की विविधता को दर्शाती है।
2: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत के पहले गैर जीएमओ उच्च विस्तार क्षमता वाले पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज के विकास को कृषि में आत्मनिर्भरता और देश में विकसित नवाचार को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के मुसुनुरु में आगोमे पॉपकॉर्निका परिसर में इस बीज का शुभारंभ करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले पॉपकॉर्न मक्का के लिए आयातित हाइब्रिड बीज तकनीक पर निर्भर रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का उल्लेख करते हुए पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और नमो ड्रोन दीदी जैसी केंद्र सरकार की पहलों की सराहना की।
4: I appreciate both the state and the central governments for their various schemes for safeguarding the interest of farmers, like PM Kisan Samman Nidhi, PM Special Bima Yojana, Kisan Credit Card schemes, and many others. National Food Security and Nutrition Mission also ensures seed certification, integrated nutrient and pest management, and farm mechanization assistance and field demonstrations for maize farmers.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए मामले की जांच राज्य से सीबीआई को सौंपने की मांग की गई है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिवसीय ये सम्मेलन वर्चुअली भी आयोजित किया जाएगा।
5: 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से ज्यादा अधिकारी शामिल होंगे। ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मौजूदा मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यह वार्षिक बैठक देश की खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चर्चा का एक मंच प्रदान करती है, जिसमें आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। साल 2016 में हुई डीजीपी आईजीपी सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा और पुलिस प्रमुखों से हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर काम कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने रेल नेटवर्क में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को लगातार स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसके अंतर्गत पेयजल टैंक और पेयजल को स्वच्छ बनाने की प्रणाली को साफ और कीटाणु मुक्त किया जाएगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस अभियान के दौरान जोनल रेलवे जल स्रोतों, जल शोधन और फिल्ट्रेशन संयंत्रों, भूमिगत और ऊपरी टैंकों, पीवीसी टैंकों, वाटर बूथ, नलों और पेयजल वितरण केंद्रों का व्यापक निरीक्षण करेंगे। साथ ही टैंकों के ढक्कन अच्छी तरह बंद रखने और वेंट तथा ओवरफ्लो पाइपों को पक्षियों, जानवरों और शैवाल से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाएंगे। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के योगदान को याद करते हुए कहा है कि गुरु रविदास के विचारों और कार्यों ने सामाजिक बुराइयों पर कड़ा प्रहार किया और सामाजिक समरसता की नींव मजबूत की। नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए श्री नवीन ने कहा कि गुरु रविदास जी के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए भाजपा ने यह समरसता अभियान शुरू किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की भी सराहना की।
7: मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नौ

0: एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं जो संभवतः अपने छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदल कर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है, और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीडा के साथ, जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स शेरपा और विदेश मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता मानवता प्रथम के सिद्धांत पर आधारित जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। लखनऊ में 18वें ब्रिक्स अकादमिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री दलेला ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान समायोजन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। ये बैठक लखनऊ में 23 से 25 अगस्त तक आयोजित की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 27वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार भी साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: भारत और रूस के बीच दीर्घकालिक और मजबूत साझेदारी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उच्च स्तर के साथ एक गुणात्मक रूप से नयापन आया है। रणनीतिक साझेदारी के तहत सहयोग गतिविधियों पर नियमित बातचीत के साथ साथ अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक और आधिकारिक दोनों स्तरों पर कई संस्थागत संवाद आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टर जयशंकर कल रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है, पर इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने बताया कि यह शुल्क समुद्री, पर्यावरणीय और लॉजिस्टिक संबंधी कई सेवाओं को सम्मिलित करेगा। इससे पहले ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रजाई ने कहा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा और तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की आर्थिक कार्रवाई का समर्थन करने वाले किसी भी देश के कदम को युद्ध माना जाएगा। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को नए अमेरिकी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाली एक तस्वीर साझा करके इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अमेरिकी नियंत्रण के अपने दावे को दोहराया है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने दोनों पक्षों के बीच सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सऊदी अरब में भारत के राजदूत विपुल और GCC के महासचिव जासिम मोहम्मद अल बुदैवी के बीच हुई बैठक में मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत भी की गई। फरवरी में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने वाले संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से फोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया है। श्री चौधरी ने कहा है कि फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से गंगा के पानी का प्रवाह सुचारू हो सकता है और बिहार में बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल तक अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, माहे,

0: मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के गांव में आज भूमि धंसने और मकानों में दरारें आने के बाद एहतियात के तौर पर 3 परिवारों के 10 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि चेनाब नदी के किनारे तहसील राजगढ़ के कुल्थी चक्का कुंड इलाके में भूमि धंसने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच बारिश के कारण रोक दिया गया है। खेल रोके जाने तक भारत ने 8 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 278 अंक गिरकर 77,263 और निफ्टी 84 अंक गिरकर 24,168 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत 8 से 9 और देशों के समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। और कोलंबो में दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की स्थिति मजबूत। ऋषभ पंत ने भारत के लिए विदेशी धरती पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: हेलो, हाय एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अब पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और मेरे साथ में है प्यारी सी आरजे रीना। जी हाँ, आपको पता ही है एवरीवन कि हम एवरीडे आपके लिए लेकर आते हैं आपका खास कार्यक्रम महिला मंच। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जिस पर चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन बदलाव की जरूरत आज भी उतनी ही है। दहेज प्रथा, शादी दो लोगों की जीवन की नई शुरुआत होती है, लेकिन अगर इस शुरुआत से पहले ही सामान, पैसे और गाड़ी की मांग सामने आ जाए तो क्या रिश्ता सच में बराबरी का रह जाता है? शादी कोई सौदा नहीं, ये दो लोगों का साथ है, दो परिवारों का जुड़ना है। इसीलिए रिश्ता शुरू होने से पहले मांगों की नहीं, समझ और सम्मान की बात चाहिए।
7: बिल्कुल सही कही तुमने, क्योंकि सम्मान की बात होती है तो वहाँ मांग की बात नहीं होती है।
6: और बात करेंगे दहेज की मांग आखिरकार क्यों होती है। कभी आपने सोचा है कि शादी के समय आखिर इतनी सारी मांगे क्यों जुट जाती है? कहीं कार चाहिए, कहीं महंगे गहने, कहीं फर्नीचर और कहीं नगद पैसे। शुरुआत में शायद एक छोटी सी मांग होती है, लेकिन धीरे धीरे वह उम्मीद और फिर दबाव बन जाती है। खासकर लड़की माता पिता सोचते हैं कि कहीं उसकी बेटी को शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। लेकिन दोस्तों, रिश्ते की मांग और रिश्ते की नींव अगर मांगने पर रखी जाए तो क्या वह नींव मजबूत रह पाएगी? क्या अपनी सोच बदलनी होगी? और शादी को आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि जीवन भर का साथ समझना होगा। और मुझे लगता है कि जहां रिश्ते में मांग हो वो रिश्ता कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि आज आपसे मांगा जा रहा है, कल को शादी होने के बाद आपके ऊपर और दबाव डाला जाएगा, आपकी बेटी के ऊपर और दबाव डाला जाएगा कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। मुझे लगता है कि जहां पर ये मांगे आती है वहां रिश्ता खत्म करो। दुनिया में बहुत लड़के हैं यार, और आजकल मुझे लगता है कि लड़कियां कंधे से कंधे मिला के चल रही है, उनके माता पिता उनके पैसे पढ़ाई में इतने पैसे लगा रहे हैं, तो वो भी सोचो। और दहेज प्रथा मुझे लगता है कि जड़ से खत्म कर देनी चाहिए।
7: बिल्कुल, ये बैन होना चाहिए। और रीना बताएं, सरकारी नौकरी और दहेज, जिनकी सरकारी नौकरी होती है उनकी भी बहुत सारी डिमांड्स होती है, हम सबको नहीं इन्वॉल्व करेंगे,
6: उनकी तो और भी ज्यादा डिमांड होती है। पता नहीं कौन से 30 मार्क खान से वो पढ़कर आते हैं, कहाँ से पढ़कर आते हैं जो उनके अंदर भी सोच भी वैसी आ जाती है। मतलब कह रहे हैं ना, जितने शिक्षित हो रहे हैं लोग उतनी ज्यादा मांगे बढ़ती जा रही है।
7: अक्सर सुनने को भी मिलता है कि लड़का सरकारी नौकरी में है इसीलिए मांग तो होगी ही, लेकिन जरा सोचिए श्रोताओं, क्या सरकारी नौकरी किसी इंसान की कीमत तय करती है? सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मेहनत और उपलब्धि है और उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन शादी के बदले किसी परिवार से कार या लाखों रुपए मांगना सम्मान नहीं बल्कि दबाव बन सकता है। सवाल ये होना चाहिए कि लड़का और लड़की एक दूसरे को कितना समझते हैं, उनके विचार कैसे हैं और वे जिंदगी साथ कैसे बिताएंगे। नौकरी अच्छी हो सकती है लेकिन अच्छा इंसान होना उससे भी बड़ी बात है।
6: बिल्कुल, बिल्कुल, अरे बिल्कुल, इंसानियत अच्छा होना चाहिए बस।
7: देखो, अगर इंसान के पास बहुत पैसा हो और वो इंसान हमें ना समझे
6: तो क्या फायदा,
7: उस रिश्ते में फिर इंसान नहीं रह पाएगा।
6: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आजकल इंसान पता है क्या देखता है, कोई भी हो पैसे वाले के घर शादी होना चाहिए। ये नहीं पता कि भाई जिस पैसे, देखो हर किसी को हम नहीं कह सकते, बहुत से ऐसे हैं जो दहेज के बिल्कुल खिलाफ लेते ही शादी में पैसे, और बहुत ऐसे होते हैं नहीं भैया हमें तो पूरा खजाना ही दे दो, मतलब लगता है कुबेर जी को ही दान में दे देना चाहिए उनको तो।
7: बेटी तो वो देते ही देते हैं, साथ में वो इतनी डिमांड्स भी लोग करते हैं। पर रीना, मुझे ऐसा लगता है, देखो जो अपने जिगर का टुकड़ा देता है अपनी बेटी को पाल पोस कर बचपन से बड़ा कर वो अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे घर में करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ा और क्या दान हो सकता है जिसने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया।
6: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन बहुत से नहीं समझते है ना, मुझे लगता है कि देखिए आज आप किसी की बेटी के लिए मतलब अपने घर में शादी करके ला रहे हैं, उस दहेज ले रहे हैं, लेकिन क्या पता आपके घर में भी लड़की होए और आपकी आपसे बोला जाए डबल यानी कि दहेज दो, तो आप उस टाइम सोचेंगे कि मैंने शायद गलत करा था दहेज लेके। इसीलिए कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा तो देखो भरना पड़ेगा आपको। तो खुशी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम्हें कार चाहिए या साथ चाहिए?
7: देखो, कार तो मैं खुद भी पैसे कमा कर ले सकती हूँ, बट तुम्हारा साथ मुझे चाहिए क्योंकि वो मिलना बहुत मुश्किल है।
6: ये तो बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन आज मुझे हमें दुनिया को बताना है ना कि कार नहीं साथ ढूंढो, क्योंकि आज के समय में साथ किसी का पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है श्रोताओं। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। शादी की बातचीत में कभी कभी सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि क्या क्या मिलेगा, कार होगी या नहीं, इतने गहने होंगे या नहीं। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, कभी इस सवाल को बदल कर देखिए, पूछिए क्या दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे, मुश्किल समय में साथ खड़े होंगे, क्या लड़की अपने सपने पूरे कर पाएगी, क्योंकि कार सड़क पर साथ चल सकती है लेकिन जिंदगी के रास्ते पर साथ चलने के लिए समझदारी चाहिए। इसीलिए शादी में चीजें कम और समझ ज्यादा हो तो ये रिश्ता कहीं ज्यादा खूबसूरत बन सकता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप कार चाहिए दहेज में तो सावित्री जैसी पत्नी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर सावित्री जैसी पत्नी चाहिए तो कार नहीं, समझ होनी चाहिए, आप
8: टैक्सी में, ताकि वो यमराज जब आपकी प्राण लेकर जाना तो उसके पीछे पीछे जाकर लेकर अपने पति का प्राण लेकर आ जाए।
7: बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि देखिए अगर आपको सावित्री जैसी पत्नी चाहिए तो उसके लिए आपको डिमांड्स नहीं, अच्छी लड़की देखनी चाहिए, अच्छा व्यवहार, अच्छा नेचर। क्योंकि हमेशा ना इंसान अच्छा होता है तो हर चीज हम खरीद सकते हैं।
8: हाँ, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप उसका साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है
7: जिंदगी में। तो अभी ना हम
8: आगे बढ़ेंगे अपने शो में,
7: लेकिन एक पहले गाना तो सुन ले यार, बहुत बातें हमने कर ली है। एक म्यूजिकल ब्रेक होना भी जरूरी है, उसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है म्यूजिक के बिना।
8: ये गाना सुनेंगे, सासू जी तूने
7: कदर न जानी।
8: ये गाना सुनने वाले श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत और हम लौट कर आ चुके हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है महिला मंच और मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और मेरे साथ में रीना जी भी हैं यहाँ पर। और दोस्तों, माता पिता का दबाव, बेटी की शादी हर माता पिता के लिए खुशी का पल होता है, लेकिन जब सामने से लगातार मांगे आने लगती है तो ये खुशी चिंता में बदल सकती है। कई माता पिता अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए, लेकिन दोस्तों, बेटी की शादी की खुशी उसके माता पिता की आर्थिक मजबूरी पर नहीं टिकी होनी चाहिए। माता पिता ने बेटी को प्यार दिया, शिक्षा दी, संस्कार दिए, ये किसी भी महंगे सामान से कहीं ज्यादा कीमती है। बेटी की विदाई मुस्कुराती हुए होनी चाहिए, कर्ज के बोझ के साथ नहीं।
1: ये तो बिल्कुल 100% तुमने सही कही है, कर्ज के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत से मिडिल क्लास फैमिली में कर्ज भी लेना पड़ता है यार, तो वो इसलिए लेना पड़ता है ना कि दहेज की मांगे होती है। जब दहेज की मांगे ही नहीं होंगी तो कर्ज भी मुझे लगता है कि नहीं लेना
0: नहीं लेना पड़ेगा। या आई एग्री विद यू रीना।
1: हाँ, तो देखिए श्रोताओं, बहुत से घरों में लड़कियों को बोझ माना जाता है। बेटी कोई बोझ नहीं, हम अक्सर कहते हैं बेटी को अच्छे घर में भेजना है, लेकिन अच्छा घर आखिर किसे कहेंगे? वह घर जहाँ बहुत सम्मान हो या वह घर जहाँ बेटी को सम्मान मिले? मेरे हिसाब से अच्छा घर वही है जहाँ बेटी को अपनेपन का एहसास मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसे बराबरी का अधिकार मिले। बेटी कोई जिम्मेदारी नहीं जिसे किसी भी कीमत पर पूरा करना है, वह परिवार का हिस्सा है, एक इंसान है अपने सपने और अपनी पहचान के साथ। इसीलिए उसकी शादी में सबसे जरूरी बात दहेज की ना करें, अच्छे रिश्ते की करें।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लड़की की जिम्मेदारी दहेज प्रथा को खत्म करने की बात होती है तो हम अक्सर सिर्फ लड़के वालों की तरफ देखते हैं, लेकिन बदलाव की सबसे मजबूत शुरुआत खुद लड़का कर सकता है। अगर कोई लड़का शादी से पहले साफ कह दे मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, तो ये बात बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि शादी में लड़की की आवाज़ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपने परिवार से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन गलत मांग के सामने अपनी बात रखना भी जिम्मेदारी है। एक युवा की ऐसी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन सकती है। क्यों रीना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत फैमिलीज में मैंने देखा है कि लड़का डिमांड नहीं करता है, उसके पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन लड़का उसी वक्त अगर वहाँ एक्शन ले, अपने पेरेंट्स को बोले, तो चीजें संभल सकती हैं।
1: बिल्कुल संभल सकती है यार। और मुझे लगता है कि दहेज पर जो पैसे मिलते हैं, जो सामान मिलते हैं, उस पर कितने दिन तक राज कर पाओगे? एक महीना, दो महीना, उसके बाद फिर से वैसा ही। तो क्यों ना हम अपने बलबूते पर आगे बढ़े। जो भी सामान खरीदना है, सबसे बड़ी बात है कि इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचकर जो भी आप काम करेंगे ना, तो देखिए आपके पास लक्ष्मी कैसे भागती भागती आएगी। लेकिन मन में जब वही पाप भरा होगा तो लक्ष्मी भी नहीं टिकती है वहाँ पर। इस चीज को जरूर सोचे। और मुझे ना ये लगता है कि लड़कियों को भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जब लड़कों की सुनी जा सकती है तो लड़कियों की क्यों नहीं सुनी जा सकती है। मुझे लगता है कि उनकी बातें भी सुननी बहुत जरूरी है। अगर किसी रिश्ते में शादी से पहले लगातार मांगे रखी जा रही हो तो लड़की और उसका परिवार उस पर खुलकर बात कर सकते हैं। शादी जिंदगी का बड़ा फैसला है और इसमें आपकी सहमति, आपकी खुशी और आपका मान सबसे जरूरी है। सिर्फ इसलिए किसी बात को स्वीकार करना जरूरी नहीं। अब रिश्ता तय हो गया है या लोग क्या कहेंगे, सही रिश्ता वही है जहाँ दोनों परिवार एक दूसरे का सम्मान करे और दोनों की खुशी को महत्व दे। ये बिल्कुल सच है। कभी कभी रिश्ता तय हो जाने के बाद ये कहा जाता है, बहुत से हमने न्यूज भी देखी है जहाँ पर बारात मतलब लड़की के घर पर चले जाते हैं और वहाँ से वापस ले जाते हैं।
0: बारात वापस
1: या फिर ये होता है कि बारात की पूरी तैयारी हो जाती है और लड़के वाले से कॉल आता है कि इतने लाख पैसे अभी पहुँचाओ तब हम आएंगे आपके घर, वरना शादी कैंसिल। ऐसे भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है जब ऐसे ऐसी बातें आती हैं तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि समाज क्या कहेगा, समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सोचिए, जब आपकी बेटी ही नहीं रहेगी तो इज्जत का क्या करिएगा। इसीलिए भाई मुझे लगता है कि जब आप शादी तय होती है वहाँ पर अच्छे से बातें हो जाना चाहिए, और जहाँ पर मांग हो, मुझे लगता है कि मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि वहाँ शादी कैंसिल कर देना चाहिए।
0: मुझे लगता है रीना, देखिए शिक्षा सबसे बड़ा उपहार है। अगर बेटी की शादी के लिए पैसा बचा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता में भी निवेश कीजिए।

0: क्योंकि एक
1: और एक
0: महिला,
1: बात और, जितना पैसा हम दहेज में लगाते हैं अगर उतना ही पैसा बेटियों को पढ़ाने में आगे बढ़ाने में लगेंगे तो मुझे लगता है कि जब वो भी अपने पैर पर खड़ी रहेगी और लड़का भी अपने पैर पर
0: तो
1: खड़ा
0: वही
1: है,
0: मैं
1: तो वहाँ दहेज की बात ही नहीं आएगी।
0: हाँ, तो वही मैं कहना चाह रही तुमसे कि अगर बेटी की शादी के लिए पैसा बचा रहे हैं तो उसके साथ साथ उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता में भी निवेश कीजिए, क्योंकि एक महंगा सामान कुछ समय बाद पुराना हो सकता है लेकिन शिक्षा जिंदगी भर साथ रहती है। बेटी को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दीजिए, उसे फैसले लेने का आत्मविश्वास दीजिए, उसे ये एहसास दिए कि शादी उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है, उसकी पूरी पहचान नहीं। जब बेटियां शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तो दहेज जैसी सोच के खिलाफ उनकी आवाज़ भी मजबूत होगी।
1: ये तो बिल्कुल बात सही कही है तुमने। और एक और बात जो आज के समय में ना, मतलब एक दूसरे को देखा देख बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो है दिखावे की शादी। आजकल
0: मैंने अगर 50 लाख की शादी की तो यार मैं 60 लाख की शादी करूँ।
1: हाँ, ये रहता है आज के टाइम में, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ी चीज देखते हैं बड़ा वेन्यू, महंगे कपड़े, शानदार सजावट और लाखों का खर्चा। खुशी मनाना गलत नहीं है, लेकिन जब दिखावे के लिए परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने लगे तो हमें रुक कर सोचना चाहिए। शादी कुछ घंटों का समारोह है लेकिन वैवाहिक जीवन सालों का सफर, इसलिए शादी में दिखावा कम और समझदारी ज्यादा हो। आखिरकार जिंदगी की खूबसूरती वेडिंग डेकोरेशन से नहीं रिश्तों की समझदारी से बनती है।
0: दहेज और आत्मसम्मान। देखिए दोस्तों, दहेज की मांग सिर्फ आर्थिक बोझ नहीं होती, कई बार ये परिवार के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाती है। सोचिए, कोई परिवार अपनी क्षमता से ज्यादा सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कहीं रिश्ता ना टूट जाए। क्या ऐसा रिश्ता सच में मजबूत हो सकता है? रिश्ते में सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर शुरुआत ही दबाव से हो तो आगे चलकर समर्थ और बराबरी कैसे आएगी? इसीलिए दहेज के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ पैसा बचाना नहीं बल्कि अपने सम्मान की रक्षा करना है। तो दोस्तों, अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आएंगे और भी आपसे इसी विषय पर चर्चा करने लगे। तो बने रहिए, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6।

0: और क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और इसी के साथ अर्जेंटीना फिर से आप सभी के बीच कनेक्ट हो गई है महिला मंच शो में। और अब बात करने वाले हैं कि हर किसी के जुबान पे एक ही बात होता है, लोग कहेंगे, है ना। हमारे समाज में एक वाक्य बहुत कुछ बदल देता है, लोग क्या कहेंगे। कई बार इसी डर से परिवार ऐसी मांगे भी मान लेते हैं जिन्हें वे खुशी से नहीं मजबूरी से पूरा करते हैं। लेकिन जिंदगी आपको और आपकी बेटी को जीनी है, समाज को नहीं। कुछ लोग कुछ दिन बात करेंगे और फिर अपने जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन कोई फैसला जिंदगी भर परेशानी बन जाए तो उसका असर परिवार को ही झेलना पड़ता है। इसलिए फैसले समाज के दबाव से नहीं, समझदारी और अपनी क्षमता को देख कर लेनी चाहिए, ताकि आपको आगे पछतावा ना होए।
1: बराबरी का रिश्ता, रीना आजकल बराबरी बहुत देखते हैं लोग। अगर मैं इतना कमाता हूँ तो उसका स्टैंडर्ड भी इतना ही होना चाहिए, है ना। लेकिन शादी का सबसे खूबसूरत शब्द क्या है? साथ। और साथ तभी खूबसूरत होता है जब उसमें बराबरी हो। और एक परिवार अपनी बेटी को प्यार और सम्मान के साथ रहा है तो दूसरे परिवार की जिम्मेदारी भी है कि वह उसे उसी सम्मान के साथ स्वीकार करे। शादी में किसी एक को छोटा या बड़ा समझने की जरूरत नहीं, दोनों परिवार बराबर हैं, दोनों बच्चे बराबर हैं और दोनों की खुशियां बराबर हैं। तो मुझे लगता है रीना कि दहेज की जगह अगर बराबरी आ जाए कितने ही रिश्ते ज्यादा मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं ना। अगर रिश्ते यहाँ पे एकता हो, है ना, कि देखिए वो लड़की भी मेरी मतलब इक्वल है और मैं भी, दोनों को एक समान देखा जाए। ये नहीं कि वो गरीब घर से आई है, मिडिल फैमिली से आई है, मैं रिच फैमिली से हूँ, तो उसकी वैल्यू कम करते हैं कि ये तो मिडिल फैमिली से लड़की है, मिडिल क्लास लड़की है, इसकी क्या रिस्पेक्ट करना। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप एक दूसरे से रिश्ते में बनते हैं, एक दूसरे से रिश्ता होता है, तो वहाँ पर आपको एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट, बराबर सम्मान, प्यार देना चाहिए।
0: बिल्कुल, ये तो है। ये चीजें अगर दुनिया में सबकी सोच ऐसी हो जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की परेशानी ही नहीं आएगी किसी की भी जिंदगी में। कई बार दहेज की शुरुआत बहुत छोटी मांग से होती है, बस इतना ही और चाहिए, लेकिन यही छोटी सी मांग आगे चले बड़ी अपेक्षाओं का रूप ले सकती है। और जब परिवार एक मांग पूरी करता है तो अगली मांग के लिए रास्ता खुल जाता है। इसीलिए शुरुआत में ही अपनी सीमाएं और अपनी सोच स्पष्ट रखना जरूरी है। शादी में उपहार देना अगर खुशी और अपनी इच्छा से हो तो अलग बात है, लेकिन मांग और दबाव बिल्कुल अलग चीजें हैं। फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्या उपहार भी दहेज होता है खुशी?
1: नहीं, दहेज और उपहार दोनों में डिफरेंस है। दहेज हम देने की इच्छा नहीं होती, दहेज जबरदस्ती दिया जाता है,
0: वो ना मांगा जाता है।
1: लेकिन अगर बात करें उपहार की, तो उपहार हम अपनी मर्जी से देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं,
0: अपनी बेटी के लिए देते हैं।
1: हाँ, तो दोस्तों आजकल बेटियां आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्टडी कर रही हैं, हर फील्ड में वो हर क्षेत्र में किसी कंधा मिलाकर चल रही हैं, बराबरी कर रही हैं। और आज की बेटियां पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं और अपने सपने पूरे कर रही हैं। ऐसे में सबसे खूबसूरत तोहफा ये है कि उसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसे ये भरोसा मिले कि अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। आत्मनिर्भर बेटी सिर्फ अपनी जिंदगी मजबूत नहीं करती बल्कि पूरे परिवार को मजबूत बनाती है। इसीलिए बेटियों के भविष्य में निवेश कीजिए, उनकी पढ़ाई, स्किल्स और कॉन्फिडेंस में यही असली संपत्ति है।
0: ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। रिश्ते की असली कीमत, अगर कोई रिश्ता सिर्फ वह वजह से टूट जाए कि सामने वाला परिवार कार या पैसा नहीं दे सकता, तो शायद हमें उस रिश्ते की असली कीमत पर विचार करना चाहिए। रिश्तों की कीमत बैंक बैलेंस से नहीं, व्यवहार से तय होनी चाहिए। जीवन साथी ऐसा हो जो बीमारी में साथ दे, मुश्किल समय में साथ पकड़े और आपकी खुशियों में भी दिल से खुश हो। ऐसी चीजें किसी दुकान से खरीदी नहीं जा सकती, इसीलिए शादी में सबसे पहले इंसान देखिए, सम्मान नहीं देखा जाता है श्रोताओं। देखिए, सम्मान तो आप जितनी मर्जी खरीद लेंगे, लेकिन है जब उसमें प्यारी समझ ही नहीं होगा, एक दूसरे का साथ ही नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा ऐसी दहेज का। इस पे सोचिएगा जरूर आप। मैं आरजे रीना बोल रही हूँ आप सभी से, और मुझे मैसेज करके भी आपने बताना है। नंबर है 9837896 6896 पर कि दहेज के प्रति आपका क्या राय है, क्योंकि देखिए हमारे साथ साथ मुझे लगता है कि आपकी भी राय हमारे लिए बहुत, मतलब ऐसा कुछ तो लगेगा कि हम आप सभी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपका फीडबैक जब तक ना आए तो मजा नहीं आता। इतनी मेहनत करो तो थोड़ा बहुत फीडबैक बनता है श्रोता। जल्दी जल्दी मैसेज करिए, वेट कर रहे हैं हम आपके मैसेज का, देख लीजिए। अब आप
1: बेटियों को सिर्फ ये मत सिखाइए कि शादी के बाद सबको खुश रखना है, उन्हें ये भी सिखाइए कि अपना सम्मान कैसे पाएं, और उन्हें ये भी बताइए और उन्हें अपनी बात कहना सिखाइए, अपने फैसले लेना सिखाइए और गलत बात को गलत कहना सिखाइए। साथ ही बेटों को भी सिखाइए कि पत्नी किसी के घर से आई हुई जिम्मेदारी नहीं बल्कि बराबरी की साथी है। अगर बेटियों और बेटों की परवरिश में सम्मान और बराबरी होगी तो आने वाली पीढ़ी की सोच अपने आप बदल जाएगी। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी शादी जहां कोई मांग नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तुलना नहीं, दोनों परिवार की खुशी से मिलें, बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू करें और माता पिता के चेहरे पर सिर्फ संतोष हो। ऐसी शादी शायद बहुत महंगी ना हो लेकिन उसकी यादें बहुत कीमती होंगी। दहेज मुक्ति शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, एक संदेश है कि हम रिश्तों को सम्मान से ऊपर रखते हैं और हर परिवार अपने स्तर पर इस बदलाव की शुरुआत कर सकता है। क्यों रीना, कितनी अच्छी रहेगी ना ये शादी। हाँ। ना कोई दहेज
0: और क्या, मतलब दहेज ना हो, जहाँ वहीं पे पता क्या रिश्तों की समझ होती है ना, उस जगह पे दहेज नहीं लिया जाता। तो श्रोताओं, हर चीज के बारे में हमने बात करी लेकिन अब हम बात करते हैं बेटी की खुशी। बेटी की खुशी, बेटी की शादी में माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? यही कि उसकी बेटी खुश रहे। तो फिर उसकी खुशी को सम्मान और पैसे से क्यों जोड़े? बेटी के चेहरे की मुस्कान क्या किसी कार से बड़ी है? उसका सम्मान किसी गहने से ज्यादा कीमती है? उसका सुरक्षित और खुशहाल जीवन किसी बड़े समारोह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए बेटी की शादी में खर्च करने से पहले ये जरूर सोचिए कि उनके आने वाले जीवन में उसे किसी चीज की सबसे बड़ी जरूरत क्या होगी। सम्मान या समझदारी, सम्मान देने वाले साथी, ये जरूर ध्यान दीजिए। तो श्रोताओं, आज का जो मेरा ये सवाल है उन युवाओं, उन जेनजी से जो अब शादी करने जा रहे हैं, तो आप अपने होने वाले जीवन साथी से क्या चाहते हैं? प्यार, सम्मान, समझदारी, साथ। अगर यही आपकी जरूरतें हैं फिर उसके परिवार से अतिरिक्त सम्मान की मांग क्यों? और अगर आप लड़की है तो क्या आप ऐसे रिश्ते को स्वीकार करेंगी जहां आपकी पहचान से ज्यादा आपके परिवार की आर्थिक क्षमता देखी जाए? बदलाव का सबसे अच्छा समय आज है और शुरुआत हमारी अपनी सोच से ही होती है और सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। श्रोताओं,
1: बात करते हैं मायका और ससुराल की। तो शादी के बाद बेटी दो परिवार से जुड़ती है। मायका चाहता है कि बेटी खुश रहे और ससुराल चाहता है कि नई बहू परिवार का हिस्सा बने, लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत तभी खूबसूरत होगी जब दोनों तरफ से सम्मान हो। मायके की आर्थिक क्षमता को बेटी के सम्मान से जोड़ना सही नहीं, और उन्हें और ससुराल को ये भी समझना चाहिए बहू अपने साथ सिर्फ सामान नहीं, अपने सपने और भावनाएं भी लेकर आती है, उसे अपनाइए, उसकी कीमत मत लगाइए। और दोस्तों, एक पिता की चिंता, एक पिता बेटी की शादी के लिए कितने सपने देखता है, लेकिन अगर उन सपनों के बीच लगातार ये डर रहे कि मांग पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, तो खुशी अधूरी रह जाती है। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी है जहां पिता बेटी को विदा करते समय ये ना सोचे कि मैंने कितना दिया, बल्कि ये महसूस करे कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार, शिक्षा और आत्मविश्वास दिया है और अब वह एक नए परिवार में सम्मान के साथ अपनी जिंदगी शुरू करेगी। यही
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, आज मुरादाबाद की फिजाएं ये कुछ अलग है। पता है आपको, थोड़ी देर पहले हुई बारिश ने सड़कों को भिगो दिया और अब जब बारिश हल्की हुई है तो मौसम में भी ना एक अलग ही ठंडक और सुकून घुल गया है। और ऊपर से आज सावन का आखिरी सोमवार, तो जैसे प्रकृति भी इस सावन को एक खूबसूरत विदाई दे रही हो। सावन अभी समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन सावन का मंडे लास्ट है। बारिश की बूंदों में आज कुछ बात सी है कि बारिश की बूंदों में आज कुछ बात सी है, हवाओं में भीगी सी कोई सौगात सी है। सावन का आखिरी सोमवार और ये सुहाना सा मौसम लगता है जैसे खुशियों की बरसात सी हुई है। आप सभी का आज एक खुशी स्वागत करती है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। और दोस्तों, आप भी मेरे साथ इस खूबसूरत स्टेशन में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है, उस पर आपको कॉल लगाना है। और हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837896896। जब तक आप मुझे कॉल करते हैं, तब तक मैं आपको एक शानदार से गाना सुनवाती हूँ, ठीक है एवरीवन। और ये ट्रैक बहुत ही प्यारा है।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक नेहा कक्कड़ और साथ में रोहन प्रीत जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में। तेरे आने की खुशी में ये सावन आ गया और अब सावन के जाने का भी टाइम आ गया है। एक्चुअली आज तो लास्ट मंडे है सावन का। कैसे ये मंथ कंप्लीट हो गया है पता ही नहीं चल रहा है ना, कंप्लीट होने वाला है। आज 24 अगस्त है और मंडे का दिन, समय हुआ है 3:12। हमारी कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हाय दी।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं मेरा भी बात कर रही
0: जी, बताइएगा कैसी हैं आप?
1: मैम मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा आपके परिवार में सब कैसे हैं?
1: जी मैम सब अच्छे हैं, आप सुनाए आपके परिवार में कैसे हैं?
0: हाँ जी ऑल गुड, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, बारिश का आनंद लिया आपने या नहीं अभी?
1: जी मैम तैयार है बारिश होने के लिए मगर अभी भी नहीं है।
0: अच्छा, आपके साइड बारिश नहीं आई है?
1: जी मैम बादल बहुत तेज से गरज रहे
0: हैं। ओके, हमारी साइड तो बारिश आ गई है जम के, इतनी बारिश हो रही है ना कि सड़कों पर भी पानी तहर रहा है। हाँ जी
1: तैयार हो रही है।
0: ओ नहीं, वो हमारे यहाँ पर बिजी थी ना, अब आपकी साइड आ जाएगी। ठीक है
1: जी मैम, आप भेज दीजिए।
0: हाँ मैं भेज देती हूँ, आप इंतजार कर रहे हैं ना तो हम भेज देंगे। अच्छा बताइएगा आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: आज सजन आजा।
0: ओके, और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहती हैं आप?
1: जी मैं अपनी बड़ी सिस्टर के लिए सुनना चाहती हूँ।
0: ओके ठीक है, आपकी सिस्टर को ये प्यारा सा गाना हम सुनवाते हैं और आप भी इंजॉय कीजिएगा। ओके,
1: और भी सिस्टर है?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, बताइएगा।
1: रक्षा फातिमा, फरोज फातिमा, रुकैया फातिमा, लाइवा काजमी।
0: ओके ठीक है, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। और दोस्तों आप भी मुझे कॉल लगाना बिल्कुल भी मत भूल जाना, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 98-378-96। और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फ्रॉम द मूवी खलनायक से

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक अभिजीत और साथ में अलका याग्निक जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। लिरिक्स थे समीर अंजान जी के और म्यूजिक डायरेक्टर थे जतिन ललित जी। एंड मूवी का नाम था प्यार तो होना ही था। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे वो क्या सुनना चाहती हैं आज। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: यस, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम गुंजन है, मैं प्राइमरी स्कूल से बोल रही हूँ।
0: बताइए गुंजन, कैसे हैं आप? हाँ जी, आई एम गुड। आप बताइए क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हो, आज क्या सुनना चाहती हो आप? इतना प्यारा सा मौसम है गुंजन। ओहो, क्या बात है, बिल्कुल सुनाइए शायरियाँ गुंजन। सुनाइए शायरी। ओहो गुंजन ने शायद, मुझे लगता है डायरी में नोट करके रखी है शायरी। हाँ गुंजन, आपने डायरी में नोट करके रखी है शायरी, पर आप सुना क्यों नहीं रहे हो, बताइए ना हमें। ओ वाओ, नाइस। तो आप बारिश में नहाए या नहीं नहाए? नहीं, मम्मा ने मना किया? ओके, वेरी गुड, गुड गर्ल। बताओ क्या सुनोगे आज, कौन सा गाना आप सुनना चाहते हो?
1: क्योंकि मेरे नाच थी अभी।
0: अच्छा ओके, बताइए गुंजन कौन सा गाना सुनोगे?
1: अब अपने शादी के दिन नहीं दौड़े राज फिल्म का।
0: राज फिल्म का ट्रैक सुनना चाहती है, चलिए सुनवा देते हैं। थैंक यू गुंजन कॉल करने के लिए। तो एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइए जल्दी से।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: तो मानना पड़ेगा आपकी पसंद लाजवाब होती है, और जब आपकी पसंद हम सुनते हैं ना तो हमारा दिन बन जाता है और तमाम श्रोताओं का भी। वैसे दोस्तों आप भी कोई ऐसा खूबसूरत सा ट्रैक सुनना चाहते हैं ना अपनी पसंद का, तो हमें फटाफट से कॉल लगाओ बिना किसी देरी के। नंबर हमारा है 9837896896 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी। तो बात करते हैं अभी अगले कॉलर से कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश
1: जी। मैम नमस्ते। मैम
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार। कैसे हैं आप सब?
1: आपकी कृपा है।
0: हाँ जी, कृपा तो हमेशा महादेव जी की रहती है सभी पर, और हम तो बस प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें,
1: बढ़िया रहना चाहिए। मैम
0: जी सर, बताइएगा अपना शुभ नाम।
1: मेरा नाम राजू है। मैम
0: राजू जी कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप? होटल 24।
0: ओके 24, तो हम भी गए थे एक बार, आई रिमेम्बर
1: जी। मैम इसके बाद में पैरामाउंट एक्सपोर्ट है।
0: हाँ जी,
1: हम जॉब करते हैं।
0: ओके सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम वही भोले वाला गाना सुनना था।
0: अच्छा, यारा ना मूवी का?
1: जी मैम जी, आज महादेव जी का दिन है, आज सावन दिन है बस।
0: हाँ ठीक है, सुनवा देते हैं। सावन का अंतिम सोमवार है और ये खूबसूरत सा गीत आपको सुनवाते हैं। कॉल करने के लिए धन्यवाद सर।
1: जी मैम, मैं अपने बच्चों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए।
1: मैम मेरे बच्चों का नाम है लक्की और सालू।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है लकी, एंड डॉटर का नाम शालू है।
1: जी जी जी, अच्छा नाम है। केवल दो बच्चे, उन्हीं का पालन पोषण चल रहा मैम।
0: जी चलिए, अच्छी बात है, आप उनकी अच्छे से परवरिश कीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए।
1: हाँ बस 11वीं क्लास में है, 2015 घर वाली।
0: ओके, तो
1: परवरिश कर रहे हैं बस।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू आपने हमें कॉल किया, और आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए सब। तो ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, हम लौट कर आते हैं, तब तक आप भी जुड़े रहिएगा और मुझे फोन भी करिए।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और देखिए, जब इतने प्यार से आप भोलेनाथ जी से अपने दोस्तों के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो वो मान ही जाएंगे, क्योंकि वैसे भी वो बहुत भोले भाले हैं, बहुत प्यारे हैं। और चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: यस, क्या नाम है आपका?
1: कोमल शर्मा।
0: कोमल शर्मा जी, बड़ी कोमल सी आवाज है आपकी। नाम भी प्यारा है और आवाज भी बहुत प्यारी है। बताइएगा कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मुरादाबाद, मुरादाबाद
0: लाइन पास। ओके, अच्छा। हाँ, कपूर कंपनी की साइड जब जाते हैं ना, पुल की साइड, सॉरी, तो पड़ता है ना रास्ते में। ओके, हाँ समझ गए हम। बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप बताओ।
0: हाँ जी, आई एम गुड, मैं भी ठीक हूँ। बताइए, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मेरी फरमाइश का गाना सुबह तो चला नहीं,
0: लेकिन अभी तो चल जाएगा,
1: तो अब चला दो वो वाला।
0: बताइए बताइए,
1: साथ क्या निभाओगे?
0: ओके, तो चलो ये प्यारा सा गाना सुनवाते हैं और हम भी आपका साथ निभाते हैं और आप भी हमारा साथ निभाइए, ठीक है? ओके, थैंक यू कोमल जी कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, कोमल जी की पसंद पर सुनते हैं ये शानदार सा ट्रैक। लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। अभी आपने सुना है ब्यूटीफुल ट्रैक तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, लेकिन हम आपके साथ अभी रहने वाले हैं 5 बजे तक। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहो और मुझे कॉल लगाते रहो। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही खुश हूँ आपसे बात करके।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। आप बताइएगा मैम योर गुड नेम।
1: बढ़िया।
0: आपका नाम?
1: मेरा नाम स्वाति है मैम।
0: स्वाति, अरे वाह, बहुत ही प्यारा सा नाम है आपका, स्वीट सा स्वाति।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। बताइएगा मैम कैसे लगते हैं आपको एफएम मुरादाबाद सुनना?
1: बहुत अच्छा।
0: वेरी गुड। तो बताइएगा ये रेडियो का सिलसिला कब से शुरू होता है, कितने बजे आप ऑन करते हैं रेडियो?
1: सुबह 6 बजे से और शाम को 11:30।
0: ओह माय गॉड, रियली इतना प्यार आप रेडियो एफएम मुरादाबाद से करते हैं, हमें जानकर बहुत ही खुशी हुई मैम। बताइएगा आज इस खुशी को हम कैसे डबल खुशी में तब्दील करें?
1: जैसा हम ठीक समझेंगे।
0: ओके, तो आपने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें की है, यादों की बारात।
1: जी मैम।
0: इस गाने को हम सुनवाएंगे तो आपकी खुशी यकीनन डबल हो जाएगी, राइट?
1: जी जी जी जी।
0: ओके मैम, कुछ कहना चाहते हैं आप?
1: क्या बोलूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा।
0: अरे वाह,
1: खुशी इतनी हो रही है आपसे बात करके कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
0: और इतनी खुशी हो रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि कहीं मैं गाना ना भूल जाऊँ।
1: जी जी जी।
0: वैसे मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, रियली, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मैं सुनवाती हूँ ये प्यारा सा गाना आपको, आपकी पसंद का, आपकी डॉटर के साथ। आप एंजॉय कीजिएगा।
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम, बाय बाय, टेक केयर,
1: बाय।
0: तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं स्वाति जी की पसंद पर यादों की बारात से प्यारा सा गाना यादों की बारात। और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हौले हौले ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।
2: 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी सुना आपने प्यारा सा ट्रैक किशोर कुमार साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। और बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, नाम बताइएगा अपना।
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सुरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप।
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो।
0: मैं भी ठीक हूँ सर। बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या फरमाइश है आपकी।
1: बारिश हो रही है,
0: नहीं हो रही। हाँ सर, बारिश हमारे यहाँ पर बहुत जोरों की बारिश हुई है। अभी तो शायद बादल हैं, फिर से बारिश आने का मतलब लग रहा है कि बारिश फिर से आएगी, क्योंकि बादल बाहर बहुत तेज हैं, काले काले बादल आए हुए हैं।
1: हमारे यहाँ तो मौसम खुला
0: है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ओके, आपके यहाँ पर कल बारिश हुई थी।
1: हमारे कल बारिश हुई थी, आज उसका मौसम खुला, धूप खिली हुई, हल्की हल्की बादल छाए हुए हैं।
0: ओके बताएगा सर, आज क्या सुनेंगे आप।
1: जी गाना सुना देना, थमके बरस, थमके बरस,
0: थमके बरस। ओके ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको सर। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
1: धन्यवाद आपका,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, अलका याग्निक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज में, खूबसूरत सा गाना। और अभी फिलहाल बाहर के वेदर की अगर बात करें तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बट बहुत जोरों की बारिश हुई थी, शायद फिर से भी और तेज बारिश हो सकती है। ठीक है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो छाता अपने साथ रखें और रेनकोट भी लेकर जाएं। ओके, इन चीजों का ख्याल रखो। बाकी सुनते रहो एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और मुझे पता है आप इंतजार कर रहे थे हमारा, तो हम आ चुके हैं। और समय की अगर बात करें तो वक्त हुआ है अभी राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में 4:04। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ कहाँ से कनेक्ट हुए हैं उन्हीं से जानते हैं बात कर। हेलो फरमाइश।
1: मंजिल वही है, रास्ता वही है, हौसला रखो, फासला वही है।
0: नमस्कार आपको भी। बहुत ही खूबसूरत सी शायरी थी आपकी सर, नाम भी बताइएगा अपना।
1: मेरा नाम है कमरान रफी
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: बिहार से।
0: बिहार से बात कर रहे हैं जी, बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी सर?
1: सब बढ़िया है, अच्छा हो रहा है।
0: हाँ जी, इधर भी सब लोग ठीक हैं और मौसम भी अच्छा है। आप बताइएगा आपकी साइड क्या, कैसा मौसम है सर?
1: मैं तो दिल्ली में हूँ फिलहाल, दिल्ली में बारिश हो रही है।
0: अच्छा, दिल्ली में बारिश हो रही है।
1: हाँ, बारिश।
0: ओके, तो बताइएगा इस रिमझिम बारिश में कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मोहरा फिल्म का है, कितनी बरसा पानी।
0: ओके,
1: यही सुनना है गाना।
0: हाँ जी,
1: मैं जुड़ गया, मत बोला कि
0: जी सर। मेहनत
1: की,
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमें कॉल किया सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुनवाते हैं प्यारा से गाना आपको, तो चलिए श्रोताओं सर की पसंद का सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। मैं लौट कर आती हूँ, तब तक आप भी ट्राई कीजिए, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा।

0: दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई खूबसूरत सा ट्राई। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हाय दी।
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
1: जी, मैं
0: जिला मुरादाबाद
1: निखत
0: फातिमा
1: बात कर रही हूँ।
0: जी बताइएगा
1: निखत जी, कैसे हैं? सुनने वाले सभी को जश्न ईद मिलाद उन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे आका की आमद आमद है ना।
0: ओके, तो ये फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाएगा?
1: दे परसों।
0: ओके,
1: हाँ दी,
0: तो बताइएगा।
1: और बताइए दी, कैसी हो आप वहाँ पे? सभी कैसे हैं?
0: हाँ, स्टूडियो में हमारे यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं। आप बताइएगा, आपके फैमिली में सब ठीक है?
1: दी यहाँ पे भी सभी ठीक है
0: जी। बताइएगा, आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: दी जैसे मेरे दादी जी और चाचा चाची उम्र पे जा रहे हैं ना, तो उन्हीं के लिए सुनूंगी।
0: हाँ,
1: बाबा चले हैं हज को लेकर खुदा का नाम।
0: ओके, तो कब जा रहे हैं आपकी फैमिली मेंबर्स?
1: दी अगले महीने में जा रहे हैं।
0: ओके, नेक्स्ट मंथ जाएंगे?
1: हाँ दी।
0: ओके, चलो तो सुनवा देते हैं प्यारा सा गीत आपको, ठीक है?
1: दी मैं आपके लिए कुछ कहूंगी।
0: हाँ जी कहिए।
1: मैं एक शर्त पे भेजूंगी खुद से दूर तुम्हें, मैं एक शर्त पे भेजूंगी खुद से दूर तुम्हें, बस शर्त ये है कि खुद का कोई ला दो मुझे। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं तुम्हारे सिवा, तुम्हें अगर किसी से हो तो बता दो मुझे।
0: अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं डियर।
1: थैंक यू दी, हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखना।
0: श्योर, और आप भी ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, हमें कॉल करते रहिए। थैंक यू कॉल करने के लिए डियर।
1: ओके, बाय
0: बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आज ये खुशी है आपके साथ और वक्त हुआ है 4:21। हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्ते सर। क्या नाम है आपका?
1: मैं बेटर गोलाघाट आसाम से रमेश पात्र बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी, असम से आप बात कर रहे हैं, बताइए सर कैसा मौसम है वहाँ का?
1: वहाँ का मौसम तो बारिश होने वाला है, शाम को बारिश होगा। दिन में तो धूप था।
0: ओके, अभी बादल आए हुए हैं वहाँ पर?
1: बादल आए है
0: जी,
1: शाम को रात को बारिश होने वाला है।
0: ओके सर,
1: उधर का मौसम कैसा है?
0: हाँ जी, हमारे इधर भी सेम पेंच बादल हैं। अभी बारिश भी हुई थी लेकिन अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। जी, तो बताइएगा सर, आपने कॉल किया है आज असम से, क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है, फिल्म का नाम सलामी
0: जी
1: गाने के बोल रहे, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना।
0: ओ वाओ, बहुत ही प्यारा गाना चुना है आपने, तो सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक आपको।
1: जो चार रेडियो मित्रों को नाम याद करना चाहूंगा
0: जी, बताएगा।
1: भाई कौन मुंडा है, अमोल बसुमतारी है, बिमोल बसुमतारी है, देवासी सागरिका है और मेरा श्रीमती है रोनू पात्र, सभी को गाना डेडिकेट करता हूँ।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा गाना, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद
0: जी। तो चलिए श्रोताओं, सुन लेते हैं ये प्यारा सा गाना सर की पसंद का और मैं वापस आती हूँ। जब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, नंबर हमारा रहेगा 9837896896।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा

0: मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
0: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक कुमार सानू और साथ में आशा भोसले जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलेज से। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्या नाम है आपका सर? जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
3: और आपको आपके महाकाल।
1: हाँ जी, आपको भी सर, सावन का अंतिम सोमवार है और आपको भी अंतिम सोमवार के सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बताइएगा आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
3: गाना है वो रक्षाबंधन के पर्व पे तिरंगा फिल्म का, गाना
1: okay. इसे समझो ना रेशम का तार भैया।
3: ओके
1: ठीक है सर, सुनवाते हैं प्यारा सा गाना आपको। कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। तो चलिए एवरीवन, सर की पसंद से सुनते हैं, सर की पसंद का सुनते हैं ये शानदार सा ट्रैक एंड राखी स्पेशल। और राखी फेस्टिवल भी आने वाला है, शुक्रवार को है, फ्राइडे के दिन। सभी को भी सबरी से इंतजार है और बहनें तो तैयारियां कर रही हैं, मार्केट में शॉपिंग कर रही हैं। एक नहीं कितनी 10 ही दुकानें वो चेंज करती हैं शॉप, जब उनको जाकर वो डिसाइड करती हैं कि हाँ फाइनली मुझे ये राखी पसंद आई है भाई के लिए। मतलब इतना ज्यादा प्यार होता है, बहन भाई का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा गाना।

0: गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक साधना सरगम जी की खूबसूरत सी आवाज में, फ्रॉम द मूवी तिरंगा, जो 1993 में आई थी। और अब बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। यस, क्या नाम है आपका?
1: मैं नेहा बात कर रही हूँ।
0: जी नेहा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद से
0: बात कर रहे हो। बताइए नेहा, कैसे हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ।
0: ओके, ठीक ही रहना चाहिए। बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप?
1: आज मैं सुनूंगी
0: ताजा
1: शाम होने
0: आई। ओके, मौसम ने ली अंगड़ाई।
1: जी
0: मौसम भी बहुत सुहाना है ना?
1: बहुत बढ़िया।
0: तो चलिए सुनवाते हैं।
1: ठंडा हो गया मौसम।
0: हाँ जी, काफी गर्मी थी, अभी थोड़ा सा अच्छा मौसम हो गया है। तो सुनिएगा ये प्यारा से गाना, मैं प्ले कर रही हूँ, एंड एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं खूबसूरत ट्रैक, तब तक आप भी कॉल लगाइए।

0: नहीं दोस्तों, गुड बाय अभी बिल्कुल भी हम आपको नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और हमारे नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे
1: हैं?
0: हाँ जी नमस्कार, कहाँ पर आप बिजी हो गए हैं? अच्छा, मेरी आवाज़ आपको नहीं मिल पा रही थी?
1: जी अभी मिल रहा है।
0: जब आपको हमारी आवाज तो जब मिल पाती ना, जब आप बातों से फ्री होते। एक्चुअली आप बात करने में बिजी थे ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो आज एफएम मुरादाबाद 89.6 पे कॉल लगाए, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी।
1: आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत ही अच्छी हूँ सर, अपना नाम तो बताइए।
1: जी जी, मेरा नाम है नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश।
0: अविनाश जी बात कर रहे हैं त्रिपुरा से, बताइएगा कैसे हैं आप और वहाँ का मौसम कैसा है?
1: यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और अभी रक्षाबंधन के लिए और आज जो सावन का आखिरी सोमवार है तो बहुत ही धूम मचा हुआ है और अभी त्रिपुरा में पूरी तरह से मतलब कि अब सोमवार का भी है और पर्व का त्योहार चल रहा है, जो रक्षाबंधन आने वाला है।
0: बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी आज मुझे समझ रही है मूवी का नंबर है कन्यादान और गाने के बोल हैं, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे।
0: बहुत ही प्यारा गाना है सर, सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, ठीक है सर?
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए विवन सुन लेते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक मोहम्मद रफी साहब जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। मैं वापस आती हूँ, जब तक आप भी मुझे कॉल लगाते रहेगा। नंबर है 9837896896।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मेरे साथ जुड़ी हैं अभी एक बड़े प्यारे सी लिसनर, उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश, आपको भी नमस्कार। क्या नाम है आपका? तनुश्री जी बात कर रही है महाराष्ट्र से। बताइए तनु, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप?
0: मैं भी बढ़िया हो गई। थैंक यू सो मच। बताइएगा तनुश्री, क्या करते हैं आप?
1: मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: अच्छा, शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हैं आप?
1: जी मैम।
0: बहुत अच्छी बात है। तो कब से आप इस फील्ड में आए हैं?
1: मैम आप 3 साल पूरे होंगे।
0: अच्छा, 3 ईयर्स कम्प्लीट हो जाएंगे।
1: हाँ।
0: और रेडियो सुनने का शौक कब से लगा?
1: रेडियो सुनने का शौक तो इसी और साल में लगा है,
0: जनवरी से। ओके, तो कैसा लगता है आपको?
1: मैम बहुत बढ़िया लगता है। अभी ऐसा लगता है कि मैं फिर से क्यों नहीं सुनते थे।
0: तो बताइए तनुश्री, आज आप क्या सुनना चाहोगे?
1: मैम फिल्म का नाम है धड़कन और गाने को
0: बहुत ही प्यारी आवाज है तनुश्री आपकी, बट थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है आपका, लेकिन बात आपके दिल से सीधा दिल तक पहुंच गई है और सुनवाते ही प्यारा सा ट्रैक। थैंक यू तनुश्री, आपने हमें कॉल किया। ओके बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, तनुश्री की पसंद पर सुनते हैं प्यारा ट्रैक तुम दिल की धड़कन हो, और मैं लौट कर आती हूँ। तब तक आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए।

0: उफ देव, बहुत हो गया, अब बंद भी करो मेरी तारीफ।
1: रहते हो बस तुम रहते हो।
2: बिल्कुल दोस्तों, आप हमारे साथ रहते हैं और हम आपके साथ रहते हैं। और अभी हमारा यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, लेकिन हाँ, आपका साथ निभाने के लिए रीना जी यहाँ पर आ गई हैं स्टूडियो में लेकर इवनिंग मस्ती शो। तो आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मुलाकात करूंगी आपसे कल सुबह 10 से 12। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। एंड अगर आज आपका कॉल नहीं लगाए तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि आपके पास अभी ये अवसर है, कल भी आप कॉल लगा सकते हैं। ठीक है, तो यूं ही मुस्कुराइए। बाय बाय।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
8: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
9: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
10: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प और पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक चले सैन्य गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंधों में काफी तनाव आया था। हालांकि इसके बाद दोनों देशों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते आर्थिक संबंध भारत और जापान के बीच संतुलित व्यापार की दिशा में अग्रसर होंगे।
11: We have about 80 companies.
12: हमारे प्रतिनिधि मंडल में उत्तरी भारत से लगभग 80 कंपनियां हैं, पश्चिमी भारत से 68, दक्षिणी भारत से 34 कंपनियां हैं और पूर्वी भारत से लगभग 28 कंपनियां हैं। ये हमारे प्रतिनिधि मंडल की विविधता को दर्शाती है।
11: Only to reflect that a wide diversity joined this delegation.
10: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। इन पर लुधियाना में ग्रेनेड हमले की नाकाम साजिश में भी शामिल होने का आरोप। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षित और मजबूत भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। निदेशालय ने दोनों आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कल गिरफ्तार किया। दोनों को गोवा की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। मेघालय के सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत हिल पीपल्स यूनियन से की थी। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट के नुकसान पर 503 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल 115 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में आज शाम नीदरलैंड्स में भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आए हैं खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद। Thank you.

0: इवनिंग है श्रोताओं, इवनिंग मस्ती शो में और समय की बात करूं तो 5 बजकर यानी कि 16 मिनट हो चुके हैं और आज रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो जो सुबह से लेकर शाम तक आप सभी को एंटरटेनमेंट करता रहता है बातों की, यानी कि देखिए लोकल से लेकर फॉर वोकल तक यानी कि बातें चलती रहती हैं। और वही टेम्परेचर की बात करूं तो 32 डिग्री सेल्सियस और अभी हल्की हल्की फुहारे वाली बारिश हो रही है। लेकिन भैया जिस तरीके से बारिश हुई थी ना दोपहर में, मतलब सड़क भी ऐसे लग रहे थे ओहो समंदर ही समंदर, और जो बच्चे गलियों में नहा रहे थे ना बस उनको देखकर अपना बचपना याद आ जाता है कि हम भी ऐसे ही बेधड़क बिंदास होके जब बारिश आती थी हम सब गलियों में ऐसे खेलते थे कि जैसे किसी चीज की हमें परवाह ही नहीं हो, बस बारिश और हम सभी बच्चे मिलकर खेलते थे नहाते थे। जब उनको देखते हैं ना तो मतलब ऐसा लगता है कि हम खुद अपनी बचपन एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। और ढेर सारी बातें करेंगे श्रोताओं, अर्जुनी आप सभी के साथ जब कनेक्ट हो गई हैं 2 घंटे के लिए, यानी कि लोकल फोकल यानी कि साथ ही साथ म्यूजिक और बॉलीवुड में कौन सी ऐसी मूवी है जो सिनेमा घरों में अब दस्तक देने वाली है, बहुत ही फैंटास्टिक वाली मूवी आने वाली है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर कनेक्ट होंगे और करेंगे क्या ढेर सारी बातें। एक गाना बहुत शानदार है, इस गाने को सुनते हैं।
1: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी, तो दादी बोलती है तो दुनिया में सबसे

क्या बात है जी। राजा हिंदुस्तानी मूवी से आपने बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में, मधुर आवाज में आपने गाना एंजॉय किया। और देखिए अर्जेंटीना तो छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है, बल्कि शाम होते ही 5 बजते ही आप सभी के साथ कनेक्ट हो जाती है। अपने शहर का यानी कि सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। और श्रोताओं अब हम बात करने वाले हैं, देखिए कल यानी कि कावड़ का इतना ज्यादा रस था, साथ ही साथ यानी कि भंडारे चल रहे थे, खूब जमकर भंडारे। इनफैक्ट कल बहुत से घरों में चूल्हे भी नहीं जलेंगे क्योंकि भंडारे का प्रसाद जो खाना है ना। हम यानी कि कावड़ यात्रा और भंडारे के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हम भंडारा खाने जाते हैं जो पत्तल होता है उसको एवी फेंक देते हैं। जितना हम भंडारे से प्यार करते हैं, कावड़ से प्यार करते हैं, हर चीज को इतनी श्रद्धा से लेते हैं, उतना ही साफ सफाई नगर निगम का करना, साफ सफाई का ध्यान रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। यानी कि सड़कों पर आप सुबह गए होंगे तो देखा होगा कि भैया इधर पत्तल उधर पत्तल, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा। क्या सफाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान की होती है कि वही जाए, वही झाड़ू लगाकर आए, कचरे को वही भरे? सोचिए जब आप उस कचरे को उठाएंगे ना, तो पता क्या दिमाग में एक ही बात आएगी, यार मैं नहीं उठा पाऊंगी इस कचरे को। तो सोचिए वो कैसे उठाते होंगे, कैसे सफाई करते होंगे, क्या उनको अच्छा लगता होगा? मतलब आप गंदगी करें, दूसरा सफाई करे, तो इससे बेटर बहुत। देखिए ये चीज ना हमें पहले ही फॉलो करना चाहिए कि जिस हिसाब से हम बड़े खुश होकर जाते हैं भंडारा खाने जा रहे हैं, जिस पत्तल में जिस डोंगे में आप खाते हैं उसको आप डस्टबिन में भी डाल सकते हैं, एक जगह भी डाल सकते हैं, नहीं पूरे सड़क पर ऐसे फैला देंगे भैया जैसे कि चादर फैला दी हूं। और फिर वो चीजें गंदगी होती है, उससे बीमारियां फैलती हैं, दूषित हवाएं शुरू हो जाती हैं जब वो सड़ता रहता है। तो इसीलिए हमेशा की कहावत है भैया ये कि जब भी कावड़ यात्रा जाती है तो अगले दिन सफाई, मतलब सड़कों पर देखा जाता है बड़े गंदे तरीके से कीचड़ और गंदगी फैलाई जाती है। कावड़ लेने हम चले जाते हैं हरिद्वार में, कितने सारे कचड़े।

0: यानी कि 7 टन, यानी कि जो ट्रक है उस 60 ट्रक मायने रखता है, इतने कचरे निकले हैं। तो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी कांवड़ लेके जाना, भंडारे खाने तक नहीं है, बल्कि साफ सफाई का भी ध्यान रखना, वो हमारी ही जिम्मेदारी है। आप साफ सफाई रखेंगे तो उनको इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, और उस साथ ही साथ हमारा नगर निगम भी साफ स्वच्छ रहेगा। ठीक है जी, तो आगे से ध्यान रखना है। जैसे हम अपने घर में यानी कि कूड़ा कबाड़ नहीं देख सकते, वैसे सड़क पे भी नहीं देख सकते। जहां पे भंडारे लगते हैं वहां पे भी नहीं देखना चाहिए। आस्था है, आस्था को आस्था के तरीके से लीजिए, और उनको भी साफ सफाई रखिए। और आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए जी। और आप सभी को चौथे यानी कि सावन के सोमवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जी, फिलहाल कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और सुनाएंगे बहुत ही शानदार गाना।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

यानी कि 1987 में ये गाना रिलीज हुआ था। खुद कर मूवी से आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं, अलका याग्निक जी की मधुर आवाज में कि आंख से छलका आंसू जा टपका शराब में। आखिरकार ये गाना मैंने इसलिए प्ले किया है कि आप सभी को पता है कि चीनी के जो भाव है भैया बहुत बढ़ चुके हैं। वो यही कहता है कि मेरे भाव बढ़ चुके हैं, मैं बिकने आऊं, खरीदो मुझे और खरीदते टाइम तुम्हारे पसीने छूटे। और जब भी आप चाय बनाने जाओ तो पॉकेट का नजर आए, यानी कि भैया चीनी महंगी हो गई है, 70-80 रुपए किलो पहुंचने वाली है। और चाय पीने जो चाय लवर है ना, वो बस एक ही बात कर रहे हैं, भैया हर चीज महंगी कर दो बट चीनी मत करो। चीनी यानी कि चाय के बिना हम रह नहीं पाएंगे, कति नहीं रह पाएंगे। लेकिन साथ साथ उनके लिए बहुत अच्छी बातें हैं जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, मतलब जो बिना शक्कर से वो बहुत दूर रहते हैं, कोसों परे रहते हैं, वो खुश है। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट भाव बढ़ गए इसके। हम तो वैसे भी नहीं पीते हैं चीनी, तो देखिए चीनी वैसे भी कमी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा शुगर अच्छा नहीं होता है। उसकी जगह आप शक्कर वगैरह यूज कर सकते हैं, जिसके भाव बढ़ चढ़ के बढ़ रहे हैं। और आरजे नीना आप सभी के साथ कनेक्ट है, ऑनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। इवनिंग मस्ती शो में समय की बात करूं तो 5:51 हो चुके हैं श्रोता, और आज की तारीख 24 अगस्त। और साथ ही साथ हमने बोला था ना कि आर्मी वालों के लिए एक बहुत ही प्यारा क्या चीज है, यानी कि क्या स्कीमें उनके लिए शुरू कर दी गई है, क्या चीजें उनके लिए मुफ्त कर दी गई है, बात कर रहे हैं। जो हमारे जवान हैं, जो अपने घर परिवार से दूर रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं हमारे, उनके सम्मान में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो भी फौजी हैं वो अपने यानी कि ड्यूटी पर तो रहते हैं, साथ ही साथ जब वो घर आते हैं तो उन्हें किसी भी टाइप का परेशानी ना होए, प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े, इसीलिए सेकंड एसी कोच यानी कि जो हमारे फौजी है, जवान है, उनके लिए फ्री सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। यानी कि वो आजीवन यानी कि हमेशा के लिए जब तक वो फौजी हैं, जब तक ड्यूटी कर रहे हैं, उनका कोई भी टिकट में यानी कि जब वो टिकट कटाने जाएंगे तो पैसे नहीं लगने वाले हैं। टिकट्स बुक भी करते हैं तो भी कोई पैसे नहीं लगेंगे उनके लिए। हमेशा सेकंड एसी कोच यानी कि जो ट्रेन होता है, सेकंड वाला जो नंबर होता है एसी कोच, वो भी वो उनके लिए मुफ्त है, वो आराम से यात्रा कर सकते हैं। उनके जब वो हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं, हमारे लिए रक्षा करते हैं, तो फर्ज है कि हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो उनके लिए जो ट्रेन सेवाएं हैं वो उपलब्ध, फ्री सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। यानी कि हमारा देश, हमारा सम्मान, हमारे वीर जवानों के नाम, यानी कि वो हमारी सुरक्षा के लिए बारिश, हर मौसम, जैसा भी मौसम हो, कोई मौसम का नहीं देखते, वो ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, तपती धूप हो, वो ड्यूटी करते रहते हैं और हमारे लिए हमेशा तैनात रहते हैं। तो उनके लिए यानी कि सैल्यूट है कि वो इतनी गर्मी में भी, बारिश में भी, हर मौसम को सहन कर हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमारे देश के लिए खड़े रहते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। फिलहाल हमारे पर यहाँ पर मैसेज आ गए हैं तो उनको भी देख लेते हैं, भैया क्या कहती हैं ये। हेलो रीना मैम, गज वाली इवनिंग है, इवनिंग मस्ती शो में आप कैसे हो, बिंदास गाने सुना रही हो। ललिता कश्यप जी कनेक्ट हो गई है, मैडम चाय पी लीजिए। ओह क्या बात है जी, अब तो भाई चीनी छोड़ के चाय पी लेते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और आज आखिरी सोमवार है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी हर हर महादेव, हर घर महादेव। और ये आगे लिखती हैं, सावन की आखिरी घटा छाने लगी है, भोले की भक्ति दिल में समाने लगी है, जो मांग है दिल से वो महादेव पूरा करे, हर मुश्किल को
अपनी कृपा से दूर करे, ना रहे कोई गम ना रहे कोई परेशानी, महादेव लिख दे हर जीवन में खुशियों की कहानी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। क्या बात है जी, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखने लगी हैं आप आजकल, क्या बात है। हाय रीना जी, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। विकी सागर जी कनेक्ट हो गए हैं, बेस्ट आर जी और नाइस सॉन्ग, यानी कि बहुत अच्छे गाने प्ले कर रही हो, थैंक यू जी। चलिए, और भी ढेर सारी अपडेट है मेरे पास, यानी कि इतना सारा अपडेट आप सभी के लिए लेकर आई हूँ श्रोताओं। बस कनेक्ट रही आरजे रीना के साथ, अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी के साथ हम शेयर करने वाले हैं। और जो भी जज बनना चाहते हैं उनके लिए भी अपडेट है, लेकिन उसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा मेरी जान। यानी कि देखिए, अगला गाना सुनेंगे, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर कनेक्ट होंगे हम आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी गुफ्तगू।

0: करने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मदुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूह तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचेंगे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी है। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेले नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हॉकी विश्व कप में कुछ देर बाद भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
6: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
7: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
8: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
7: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: baby. Hey.
1: जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ। दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई। समय की बात करूं तो 6:08 हो चुके हैं और अब जरा महंगाई के ऊपर नजर डालते हैं। यानी कि चीनी 70 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो, दाल 100 रुपए किलो और वहीं सरसों के तेल की बात करूं तो 200 और साथ ही साथ सिलेंडर की बात करूं तो 1050 रुपया महंगे हो गए भैया। और साथ ही साथ आज की तारीख यानी कि 24 और आपको भारी प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम क्या है आपको भी पता है ना जी। अगर आपने कल तक EKYC अपने सिलेंडर का नहीं करवाया होगा भैया, तो अब आपको सिलेंडर बुकिंग में और साथ ही साथ सब्सिडी में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है जी। मैं पहले से बोलती थी कि भैया जिनके घर में सिलेंडर है EKYC जरूर करवा लीजिए, और जिनके घर में भैया पाइपलाइन है उनको तो बल्ले बल्ले है, लेकिन सरकार अब ये कह रही कि हर घर अब पाइपलाइन लगने वाली है। चलिए मिलेंगे एक और अपडेट के साथ, लेकिन गाना सुन लेते हैं। ठीक है जी।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार वाला अपने गाना एंजॉय किया आरजे रीना के साथ। समय की बात करूँ तो 6:24 हो गए। और साथ ही साथ अब भैया तो जरा मूवी की बात कर लेते हैं ना, हम सभी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं भैया कौन सी मूवी रिलीज हो।

भाई 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है खोसला का घोसला 2 मूवी रिलीज होने वाली है। अनुपम खेर की ये मूवी है, बहुत ही शानदार रहने वाली है। साथ ही साथ तो और भी ढेर सारी मूवी इस तारीख को रिलीज होने वाली है। ऐसा मूवी भी यानी कि 28 अगस्त को ही रिलीज होने वाली है जो कि है, आय हाय किनका है जी बताइए, जरा आप ही बता दीजिए। मैसेज करके नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करना है।

हो जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी भी गलतियां होती रहती है। मुझसे तो हमेशा ही होती है, इवनिंग में मॉर्निंग बोल देती हूँ, मॉर्निंग में इवनिंग बोल देती हूँ। आपका शो सुन रहे हैं इवनिंग मस्ती और अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हैं आप, थैंक यू जी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 31 अगस्त को तीज यानी कि देवी देवताओं का मनने वाला है। आखिरकार क्या है उस दिन का स्पेशल, क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता ही मेरी चियान, उसके बाद कनेक्ट होंगे हम आप सभी के साथ।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल।

जी, अपनों से कैसा पर्दा वाला आपने गाना एंजॉय किया है आरजे रीना के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। लेकिन इसी बीच यानी कि देखिए, हम बात तो करेंगे यानी कि कजरी तीज के बारे में, आखिरकार ये क्यों मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए मैं लेकर आ गई हूँ कड़क म्यूजिक, जिसे आपने सुनना है और बताना है कि आखिरकार गाने का नाम बताना है, बस इतना इनफ है। इस मूवी नाम नहीं बताना है, सिर्फ गाने गाने का नाम बताना है। पुराना गाना है और भैया आजकल ये गाने बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम आप जब भी खोलेंगे ना, क्योंकि चीनी का भाव बढ़ चुके हैं और इस पर रील बहुत ज्यादा बन रहा है, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लेते हैं क्योंकि आप सभी तो रील के बड़े दीवाने हैं। तो चलिए आखिरकार हम ये म्यूजिक प्ले करते हैं और आपने मैसेज करके बताना है कि आखिरकार इस गाने का क्या नाम है। जल्दी बताइए क्योंकि इंस्टाग्राम पर यही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है आजकल।

जी, मैं का कितने ध्यान है जी, जल्दी जल्दी सोचिए और बताइए कि आखिरकार जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है गाने का, आपने नाम बताना है। इंस्टाग्राम पर बहुत बहुत बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंड है, जब भी रील, भैया इंस्टा खोलो रील देखो तो यही गाने बीच में आ जाता है, लेकिन इस गाने का क्या नाम है वो तो सिर्फ आप ही सोच के बता सकते हैं। चलिए एक बार और हम म्यूजिक प्ले करते हैं, आप सभी के दीवाने भी बहुत

चलिए जी, सोचिए और बताइए आखिरकार किस गाने का क्या नाम है जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था। और आप सभी के लिए एक और गाना शामिल।

हाय क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं, मेहंदी लागन रांची हाथ में। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 6:45 हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है आरजे रीना के साथ, और आज की तारीख 24 अगस्त। ये गाना एक्चुअली मैंने इसलिए प्ले किया है आप सभी के बीच, कहते हैं ना सावन के महीने के यानी कि 5 सोमवार हमें पूरा करना होता है, यानी कि 5वें सोमवार का भी फास्ट रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है आखिरकार मैं बता दूं। यानी कि कजरी तीज जिसको बोलते हैं आने वाली है, यानी कि 31 अगस्त को कजरी तीज, और उस दिन पड़ रहा है दिन यानी कि तारीख और दिन सोमवार का, और तारीख 31 अगस्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये त्योहार आखिरकार क्यों मनाया जाता है? माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या किया था। उसी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया था पत्नी के रूप में। और इसी बीच रक्षाबंधन भी आता है। जब नारायण भगवान माँ पार्वती की रक्षा करने के लिए आए, तो माँ पार्वती ने उनसे, क्योंकि वो भाई मानती उनको, तो उन्होंने बोला कि आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो उन्होंने, नारायण भगवान ने कहा, मैं आपकी हेल्प तभी कर पाऊंगा जब आप मेरे हाथों पर या मेरी कलाई पर धागा बांधेंगी। तो उनके पास ऐसा कुछ था तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने पल्लू फाड़ कर यानी कि भगवान जी के, नारायण जी के हाथ पर यानी कि धागा बांधा था। तब से राखी का भी परंपरा चलता रहा है। और इसी बीच जब भगवान नारायण जी ने उनकी रक्षा करी थी, और उसके बाद कजरी तीज यानी कि जब भगवान जी माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए थे, तब जाकर ये कजरी तीज मनाई जाती है सोमवार को, और तभी यानी कि सावन के फास्ट भी यानी कि पूरा माना जाता है। इस दिन भैया अपने पति की लंबी कामना के लिए और अपने फैमिली के लिए पूजा की जाती है माँ पार्वती और भगवान शिव की, ताकि परिवार में सुख समृद्धि बना रहे और प्यार विश्वास यूं ही बना रहे। देखिए, भक्ति हो चाहे इंसान हो, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास है तो हर कुछ आप हंसते खेलते एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो फिलहाल इसी बीच मैंने आप सभी से पूछा है, एक म्यूजिक प्ले किया है जिसका नाम बताना है, और साथ ही साथ टिकटॉक के बाद एक ऐसा कौन सा ऐप आने वाला है जिस पर आप रील्स डाल सकते हैं, ये बताएंगे। अभी वेट करिए, थोड़ा इंतजार करना बहुत जरूरी है। पहले हम म्यूजिक प्ले कर देते हैं। आप जो मैंने आप सभी से आज पूछा है, क्या कहा कर दिया जाए, चलिए।

हां जी, मगर कितने ध्यान है जी, जल्दी सोचो कि आखिरकार ये गाना कौन सा है। म्यूजिक जो मैं प्ले कर रही हूँ आप सभी के बीच, 2002 में ये मूवी रिलीज हुई थी। देखिए मैंने बता दिया कि मूवी का नाम नहीं बताया अभी, लेकिन आपने गैस करना है सिर्फ और सिर्फ गाने, उसके बाद मैं बताऊंगी। ठीक है जी।

0: चलिए जी, आप समझ गए होंगे। और एक और गाना प्ले करते हैं, उसके बाद आप सभी के मैसेज की ही बारी
1: हुई।
0: उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक भी तो है ना।
2: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

जी गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:55 हो चुके हैं और इसी बीच जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था अब उसकी बारी है आप सभी के मैसेज देखने की कि इनका राइट आंसर आया है। चलिए एक बार और म्यूजिक प्ले करते हैं।

चलिए अब देखना ये है कि राइट आंसर हमारे पास सबसे पहले किनका आया है। अंजी भैया,

हर हर महादेव। रीना जी क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से राइट आंसर के साथ। इनका कहना है कि भैया तूने बीच बजरिया जो पकड़ी बैया यानी कि भाई ये राइट आंसर के साथ कनेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी भी जिनका सबसे पहले मैसेज आया है वो अभी दिख नहीं रहे मुझे। हाँ चलिए मिल गए, यानी कि बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, आज आप बनती हैं बबली अनजान जी विनर, क्योंकि आपने राइट आंसर दिया है तूने मेरी पकड़ी बैया, यानी कि आज आप बनती हैं मेरे यानी कि विनिंग मस्ती शो के विनर। चलिए जी, ललिता जी का भी राइट आंसर आए हैं और ये राइट आंसर के साथ हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी, मैं खिड़की खोल दूंगी। ओके जी बिल्कुल खिड़की खोलिए ताकि ठंडी ठंडी हवाएं आए, गर्मी से थोड़ी राहत मिले। सुमित सिंह का मैसेज आता है ओनली हेलो। रीना जी गाना है यानी कि राइट आंसर के साथ ही कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं। अंसार हुसैन जी कनेक्ट हो गए हैं दौलतबाग मुरादाबाद से। दीपक जी गुड इवनिंग पहुंचाते हैं। अगले मैसेज की बात करूं तो रूपाली जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं। कुलदीप जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद। मुस्कान जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती हैं मुरादाबाद से, यानी कि रामलीला।

शालिनी जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती हैं और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत. कल मिलेंगे गाइज, सेम टाइम सेम जगह करेंगे ढेर सारी बातें. अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए. और आप सभी को वंस अगेन एक बार और यानी कि सोमवार, लास्ट सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं. महादेव की जो कृपा है आप सभी के ऊपर यूं ही बरसती रहे. बाय.

0: ये लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उनका व्यक्तिगत संदेश सौंपा। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आने वाले समय में भारत मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से वैश्विक व्यापार के लगभग 75% हिस्से तक पहुंच बना लेगा। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 8 से 9 और देशों के समूहों तथा अलग अलग देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने भारत और जापान के व्यापार प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बिया गिरोह से जुड़े 3 फरार गैंगस्टर को भारत ले आई है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने बताया कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नई राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का ये पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उच्च स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2,60,00,000 रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। मेघालय के सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के पूर्व सांसद W.R. खारलुखी ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। डॉ. खारलुखी वर्ष 2020 से 2026 तक राज्यसभा सांसद रहे। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी 33 अंक कम होकर 24,219 पर पहुंच गया। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद
2: कॉल 7500153841।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
2: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
1: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: नमस्कार, आदाब, मैं आपकी रेडियो दोस्त छाया। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। कहते हैं स्वस्थ जीवन जीना जिंदगी की जमा पूंजी और योग करना रोग मुक्त जीवन की कुंजी। जी हाँ, आज हम योग पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग कितना जरूरी है, यही बताने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रितु नारंग जी, जो एक योगा टीचर हैं। मैम, आपका मोस्ट वेलकम हमारे स्टूडियो में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मैम, सबसे पहले हमारे सुनने वाले श्रोताओं को अपने बारे में बताइए।
4: मेरा नाम रितु नारंग है और मेरे पिता योग गुरु के नाम से इलाहाबाद में जाने जाते थे और बचपन से ही हमने योग उनके द्वारा देखा है। इनफैक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में योगा कराते थे वो, और उसके बारे में महत्व के बारे में बचपन से जाना। लेकिन 2009 में जब मैंने श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करा और वहीं से मेरा एक प्रॉपर वे में, एक सही दिशा में योगा के बारे में जानकारी होते हुए उसको आज मैंने अपने जीवन का एक मूल आधार बनाया, और उसी के द्वारा आज मैं पूरे मुरादाबाद के आसपास क्षेत्रों में भी, और जब कोरोना आया था ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन योगा लिया था। और इसी के साथ साथ एक सोशल वर्कर हूँ, नारी उत्थान केंद्र में काउंसलर हूँ, पुलिस में योगा ट्रेनर के नाम से जानी जाती हूँ, और अपने हिंदुस्तान के 7 लोगों में जब कोरोना हुआ था तो चुना गया था, तो साउथ में श्री सत्य साई भागा भगवान इंस्टीट्यूट में मुझे अवार्ड मिला था। इसी प्रकार मिशन शक्ति और साथ ही साथ अपना डिस्ट्रिक्ट आइकॉन रही हूँ 19 और 22 में, और अपना स्वीप के लिए, इलेक्शंस के लिए, जैसे स्वीप को मतलब होता है इलेक्शंस, 2017 में थे डिस्ट्रिक्ट आइकॉन स्वच्छ भारत अभियान के। इसी प्रकार से जर्नी रही और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है।
3: जी, खूबसूरत जर्नी तो आपके बातों से और ये जान के हमें लगी रहा है। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे, योगा क्या है, क्यों करना चाहिए इसे?
4: देखिए, योग के बारे में अगर हम किताबों में और गूगल में बहुत कुछ है, लेकिन आप अगर एक दिनचर्या और योग है क्या, एक्चुअली में एक लाइफस्टाइल है वो। योग एक पथ है जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए। योग एक ऐसा जीवन शैली है, अगर उसे हम उतारते हैं अपने जीवन में, जीवन बहुत खूबसूरत हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, एक फूल है, फूल की तरह रोज हमारी एक कली खिलती है ना, उसकी पंखुड़ियां खिलना शुरू हो जाती हैं। वैसे जब हम योग करते हैं तो ऐसे हमारा जीवन भी एक फूल की तरह रोज खिलता है और खुशबू फैलाता है जहां भी हम जाते हैं। हाँ, अगर आप उसको वैसे जानना चाहेंगे तो योग एक जोड़ना है, ये आपको पता ही है, जैसे मैंने कहा कि आप सब इसके बारे में जानते ही हैं। लेकिन योग को जोड़ना किसका, क्यों और कहाँ, ये समझना जरूरी है। योग सिर्फ आसन या अपने शरीर को ही नहीं, योग बाहरी दुनिया से अंदरूनी दुनिया को जोड़ना योग कहलाता है। स्वयं के संघा में रहना, और मैं एक लाइन जरूर बोलती हूँ, खुद से मोहब्बत करना। खुद से मोहब्बत करिए तो अपने आप योग आप करेंगे। खुद से मोहब्बत करना, खुद से मिलना, खुद को जानना योग है। योग, मैं फिर कहूंगी, एक जीवन शैली, कैसे हम अपना जीवन जीते हैं, कैसे अपने आप को हम समाज में, और कैसे अपने आप को अपने परिवार में, कैसे अपने आप को अपने कार्य में जोड़ते हैं, कितनी खूबसूरती से जीते हैं, वो हम योग के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से अपने जीवन शैली को खूबसूरत बना सकते हैं।
3: क्या बात है, मतलब आपने पूरे योग की परिभाषा दे दी है हमारे श्रोताओं को और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन मैम, आपने एक लाइन कहा कि खुद से मोहब्बत करिए। जरूर, खुद से मोहब्बत हर कोई करता है और आजकल के टाइम में हर कोई फिट रहना चाहता है, तो मुझे ये बताइए कि फिट रहने के लिए आजकल का जो यूथ है वो सबसे ज्यादा अगर भागता है तो जिम की तरफ भागता है। जिम और योगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताइए।
4: जैसे अभी आपने बोला, योग खुद से मोहब्बत।
3: जी,
4: ये मैंने क्यों बोला, आज हमारे हिंदुस्तान का ये ज्ञान है, योग जो है हमारे जीवन शैली में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने 6-7 हजार साल पहले हमें दिया। जिम जो है पाश्चात्य है। आज आप देखिए 21 जून जब से हिंदुस्तान ने विश्व को दिया, आज वहाँ पर विदेश में जिम बंद हो रहे हैं और योगा स्टूडियोज खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है योग से जो प्राप्त होता है वो जिम से प्राप्त नहीं होता है। जिम एग्रेशन है, योग शांति है। जिम स्वयं को भगाना है, स्वयं के साथ एक कुश्ती लड़ना है, और योग जो है खुद से मोहब्बत है, खुद से साथ प्रेम है, खुद के साथ बैठ के अपने आप को पैम्परिंग करना, कहते हैं ना, आओ खुद के लिए कुछ करें, आओ खुद।
5: तो दोस्तों अब आइए आपको सुनवाते हैं विकास की कहानी, लाभार्थियों की जुबानी।
6: नहीं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बदलते शहरों की, बदलती तस्वीर की और सबसे अहम आम लोगों की बदलती जिंदगी की।
1: और आज हमारा सफर है उस शहर का जिसे दुनिया नवाबों का शहर, तहजीब और अदब के शहर के रूप में जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की।
0: दोस्तों, लखनऊ की पहचान जहाँ एक ओर उसकी गंगा जमुनी तहजीब, चिकनकारी और खान पान से है, वहीं दूसरी ओर बीते कुछ वर्षों में शहर ने विकास की नई रफ्तार भी देखी है।
1: बेहतर सड़कें, मजबूत कनेक्टिविटी, आधुनिक परिवहन, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव और आम लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच, लखनऊ की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है।
0: और दोस्तों, विकास की असली कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों या सड़कों की नहीं होती। विकास तब मायने रखता है जब उसका फायदा समाज के उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए एक पक्का घर, राशन या शौचालय जैसी सुविधा जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आती हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंद परिवारों तक ऐसी सुविधाएं पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: तो आइए आज के इस सफर में लखनऊ के विकास की कहानी को आंकड़ों से नहीं बल्कि लखनऊ के आम लोगों की जिंदगी में आए बदलाव के जरिए समझते हैं।
1: हमारी पहली कहानी है अनीता जी की। अनीता जी एक गरीब परिवार से आती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी आसान नहीं था,
0: लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद उनके परिवार की जिंदगी में कई बदलाव आए। परिवार को राशन, आवास और शौचालय जैसी सुविधाओं का लाभ मिला।
1: अब जरा उस दौर को याद कीजिए जब घर में शौचालय नहीं था। खासकर महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी परेशानी रही होगी। जरूरत के लिए घर से बाहर जाना, समय का ध्यान रखना और कई तरह की असुविधाओं का सामना करना, ये सब रोज की जिंदगी का हिस्सा था।
0: लेकिन जब घर में शौचालय बना तो सिर्फ एक सुविधा नहीं आई बल्कि परिवार को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान भी मिला।
1: आइए अब सीधे अनीता जी से सुनते हैं कि इन योजनाओं ने उनकी जिंदगी को किस तरह बदला।
0: विकास की कहानी, लाभार्थियों की जुबानी। इस प्रोग्राम में हम उन लाभार्थियों के पास पहुंचते हैं जिनको सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उनके विकास की कहानी उनकी जुबानी ही हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनीता जी मौजूद हैं जिनको सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आइए जानते हैं कि इन लाभों से उनका जीवन कैसे बदल रहा है। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। आपका नाम अनीता है, आप काम क्या करती हैं?
2: हम भैया वह घर का काम करते हैं, खाना बनाते हैं, सबको स्वागत करते हैं।
0: अच्छा, और हस्बैंड क्या करते हैं आपके?
2: खाना बांटते हैं।
0: अच्छा, और घर में कौन कौन है लोग?
2: घर में हमारे दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का, हम, हमारे हस्बैंड सुनील।
0: अच्छा, तो हम आज लोगों को सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, और आप लाभार्थी हैं। तो अनीता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
2: भैया हमका राशन भी सरकार दे रही है। हाँ। सरकार राशन भी दे रही है, कॉलोनी भी हमारी बन चुकी है, लैट्रिन अच्छा। भी बन चुकी है।
0: अच्छा,
2: हाँ
0: जी। तो मतलब जो योजनाएं सरकार की चल रही है, जिनके पात्र आप हैं, वो आपको लाभ मिल रहा है। कब आपका ये जो है मकान सरकार ने बनवाया और शौचालय कैसे मिला आपको?
2: अरे भैया, तो मकान पहले जब प्रधानी रही तब मकान बना था हमारा, जीतू प्रधान जब रहे तब मकान बना, उसी में लैट्रिन बनी है।
0: सन आपको याद है कि किस सन में बना मकान?
2: भैया ये तो हमका पता नहीं कब,
0: चार छह साल हुआ।
2: हाँ हाँ हाँ, ऐसे हो गया, छह साल हो गए।
0: अच्छा,
2: और ज्यादा ही हो गए, पहले पंची में रहे मतलब।
0: तो जब पहले मकान नहीं था तो क्या समस्याएं हुआ करती थी?
2: अरे भैया बहुत समस्या, सब खाना, खेती ना बारी ना कुछ कमा। अब अगर आदमी कमा रहा तो खा रहे, और आदमी अगर नहीं बीमार आजार हो गया, समझ लो भैया जो परेशानी हम ही लोग जानी थे। ना खेती ना बारी कुछ नहीं है हमारे यहाँ, कुछ भी नहीं है खेती बारी। अगर मेरा आदमी कमाता है तो खाते हैं, अगर बीमार आजार हो जाते हैं तो बहुत दिक्कतें होती हैं।
0: तो राशन मिल रहा है कि नहीं आपको?
2: राशन मिल रहा भैया,
0: उससे कुछ फायदा मदद मिलती है?
2: हाँ फायदा मिलती है भैया,
0: सहयोग तो कुछ एक तरह से मिल रहा है ना?
2: जी जी, सरकार तो सहायता तो बहुत कर रही है, अच्छी कर रही है, बढ़िया कर रही है।
0: और शौचालय जब पहले नहीं हुआ करता था तब दिक्कतें होती
2: होंगी। हाँ दिक्कतें रहे, अब तो सरकार शौचालय चले सब सुविधा कह दी भैया, तो अब तो सही है, अब सब चीज सही।
0: तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगी जो इन सब कामों के करता धरता है?
2: भैया जी सही है, अपने जगह पे तो सही है, अपने जगह पे भाई सब लोग अपने अपने जगह पे।
0: आपका लाभ, आपको लाभ मिल रहा है सरकार की योजनाओं का, तो फिर आपका जीवन तो परिवर्तित हो रहा है ना?
2: जी।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: दोस्तों। अब चलते हैं लखनऊ के सरोजी नगर ब्लॉक की ओर, जहां हमारी मुलाकात होती है लक्ष्मी नारायण जी से।
1: लक्ष्मी नारायण जी उम्रदराज हैं, उनके परिवार को राशन की सुविधा मिल रही है, वहीं उनकी पत्नी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। इसके अलावा परिवार को कई अन्य सरकारी सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त हो रहा है।
0: लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया आवास योजना का लाभ मिलने के बाद।
1: एक समय था जब लक्ष्मी नारायण जी का परिवार कच्चे मकान में रहता था। कच्चे घर में रहना अपने आप में एक चुनौती था, और जब बारिश का मौसम आता था तो मुश्किलें और बढ़ जाती थी।
0: दोस्तों बारिश के दौरान घर की चिंता, रोजमर्रा के काम में परेशानी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता, इन सब का असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ता था।
1: लेकिन जब उन्हें पक्का आवास मिला तो उनके लिए जिंदगी काफी आसान हो गई। अब सिर पर एक सुरक्षित छत है और परिवार पहले की तुलना में ज्यादा सुकून के साथ रह पा रहा है।
0: यही तो है जन कल्याण की असली तस्वीर। जब किसी योजना का लाभ कागज से निकलकर किसी परिवार के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और सुविधा को लेकर आता है।
1: तो आइए अब खुद लक्ष्मी नारायण जी से सुनते हैं कि आवास और दूसरी सरकारी सुविधाओं ने उनकी जिंदगी में क्या बदलाव किया।
0: विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, और आज एक ऐसी ही विकास की कहानी सुनाने के लिए एक ऐसे ही लाभार्थी के पास हम आ चुके हैं जिनको सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा मिल रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक में भटगांव ग्राम सभा के रसूलपुर गांव में हैं, और एक लाभार्थी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के बाद उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया, कैसे वो विकास को महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका?
3: मेरा लक्ष्मी नारायण।
0: अच्छा, आपका नाम क्या है माता जी?
4: सुमन चौरसिया।
0: अच्छा, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी, तो आप लाभार्थी हैं, आप बताइए कि आपका विकास कैसे हो रहा है और क्या क्या सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है?
3: इस सरकार में यानी योगी सरकार में हमको कॉलोनी भी मिली है, लैट्रिन भी मिली है, जिससे हमको बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया हम लोगों के साथ में।
0: दादा, कब आपको कॉलोनी मिली और कब शौचालय बना घर में?
3: ये शौचालय करीब करीब 2016 में बना है, पहले बन गया था, कॉलोनी मिली 2018 में।
0: अच्छा, तो आपने कैसे आवेदन किया या कैसे आपको पता चला कि सरकार शौचालय बनवा रही है, सरकार आवास दे रही है?
3: पहले कुछ नहीं मालूम था, प्रधान के द्वारा हमको सब मतलब ये अवगत हुआ कि आपकी कॉलोनी आई है, और ये वाइफ के नाम से कॉलोनी आई थी, तो हमको पैसा मिला, हमने कॉलोनी बनवाई, और उसके बाद हमको पूरा पैसा मिला, लेबरिंग का पैसा मिला, सब कुछ मिला इस योगी सरकार में, और हमको बहुत प्रसन्नता है, लैट्रिन भी मिली, और हमको पहले घर टपकता था, सब कुछ दिक्कतें थी, छप्पर था, आज हम सुकून से रह रहे हैं।
0: दादी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अब तो पक्का मकान बन गया है, पहले दिक्कत होती थी क्या?
4: हाँ, पहले बहुत दिक्कत होती थी, पानी उलचना पड़ता था, भर जाता था बरसाती में, बाहर लेटरिन जाना पड़ता था, तो बहुत कीचड़ था, बहुत पानी था।
0: अब
4: आराम है, ठीक है, मोदी सरकार के योजना में उनका बहुत लाभ मिली है।
0: अच्छा, तो जीवन लोगों का बदल रहा है जो सरकार प्रयास कर रही है?
3: बहुत ज्यादा बदल रहा है, बहुत ज्यादा बदल रहा है। ये सब सुविधाएं आरसीसी बन गई, ये बन गया, सब बन गया, तो हम लोगों को सब सुविधाएं मिल रही हैं, और हमको क्या चाहिए?
0: राशन वगैरह भी मिलता
3: है? राशन भी मिलता है, वाइफ को मेरी वो मतलब वृद्धा पेंशन भी मिलती है।
0: अच्छा,
3: मतलब है सब सुविधाएं मिली हुई है हम लोगों को।
0: घर में कितने लोग हैं आपके?
3: चार लोग हैं, हम, मेरी वाइफ, एक लड़का और बहू।
0: अच्छा, बच्चा क्या करता है आपका?
3: ये सामने दुकान पे है।
0: अच्छा, दुकान खोल रखी है, तो कहने
3: खुली है दुकान।

0: जब किसी घर में पहली बार शौचालय बनता है, जब किसी परिवार को कच्चे मकान की जगह पक्की छत मिलती है और जब बुजुर्गों को पेंशन का सहारा मिलता है।
1: दोस्तों, लखनऊ अपनी तहजीब और विरासत को संभालते हुए विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है
0: और विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश का हमारा आज का सफर यही संदेश देता है
1: कि जब विकास का लाभ आम आदमी तक पहुंचता है तभी विकास सही मायनों में जन कल्याण बनता है। तो आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे यानी कि

0: एफएमई सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि लाभार्थियों में करीब 80% पहली बार उद्यम शुरू करने वाले लोग हैं और 44% महिलाएं हैं। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने का आग्रह किया।
1: PMFME की हमारी स्कीम जिसके माध्यम से हम लोग यंग फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं, जो संभवतः अपने छोटे प्रोड्यूस को प्रोडक्ट में बदलकर उसमें वैल्यू ऐड कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उनको हम लोग लेकर जाने में उनकी सहायता करते हैं। पूरी तरीके से टेक्निकल हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाती है, पैकेजिंग को लेकर उनकी मदद की जाती है, और आज जो हम लोगों ने MOU साइन किए हैं अबीडा के साथ जिसके माध्यम से ग्लोबल मार्केट को कैसे ये एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: इसी बीच दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने रक्षाबंधन सहित आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर राजधानी में परिवर्तन और निरीक्षण की कार्रवाई तेज कर दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित, साफ सुथरा और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। विभाग द्वारा पिछले दो दिनों में दिल्ली में 22 सैंपल लिए गए और उन्हें विस्तृत जांच के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। वहीं दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान विभाग ने लगभग 508 किलोग्राम नकली पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक में आवारा पशुओं और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम पर हुई सार्थक चर्चा हुई। श्री वाही ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम तथा आवारा पशुओं की समस्या पर आगामी दिनों में एक विशेष सदन की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे सीधे तौर पर दिल्ली के नागरिकों से जुड़े हुए हैं और इनका प्रभावी समाधान दिल्ली नगर निगम की प्राथमिकता है। दिल्ली के उपमहापौर डॉक्टर मेनिका पंत ने आज ओल्ड दिल्ली जोन में सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के अतिक्रमण पर नियंत्रण तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार और सुधार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उपमहापौर ने अधिकारियों को सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी न रहने देने तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने दिल्ली के बाहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क अवसंरचना और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से आज दिल्ली सचिवालय में एक बैठक की। बैठक के दौरान बवाना से विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने अपने क्षेत्र से संबंधित सहायक जल निकासी नाले के ऊपर प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर और कंझावला से मंगोलपुरी तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 2047 के मास्टर प्लान के अंतर्गत दिल्ली में 3000 वर्ग मीटर से बड़े प्लान किए गए प्लॉट पर घर दोबारा बनाने का प्रावधान किया गया है, जिससे लोग जर्जर इमारतों की जगह नए घर बना सकेंगे। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस प्लान में अनधिकृत कॉलोनियों में 2000 वर्ग मीटर से अधिक बड़े इलाकों में भी दोबारा निर्माण का प्रावधान शामिल है। साथ ही किफायती आवास उपलब्ध कराने और दिल्ली में प्रदूषण तथा यातायात को नियंत्रित करने में मदद के लिए पारगमन उन्मुख विकास के माध्यम से भी उपाय लागू किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक शामिल हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए 98वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों और स्कूलों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग को

प्रकाशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन 2026 में 7 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विभाग की हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू की पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा संदर्भ ग्रंथों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में आज मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। दिल्ली में उड़ानों के संचालन पर भी असर पड़ा, जिससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ानों में रुकावट आई और कई उड़ानों में विलंबन हुआ, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे से 15 उड़ानों का मार्ग परिवर्तन किया गया और इनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल थी। वहीं गुरुग्राम प्रशासन ने परामर्श जारी कर कार्यालयों से कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने और स्कूलों से ऑनलाइन क्लास चलाने को कहा है। इसी बीच विभाग ने बताया कि राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रस्तुति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भिणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। मंत्रालय ने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के उम्मीदवार 31 अगस्त तक आवेदन पात्र हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में सभी विभागों को नागरिक और प्रशासनिक कामों में जमीनी स्तर पर तेजी से नतीजा लाने के निर्देश दिए। दिल्ली में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। एनडीएमसी के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने परिषद क्षेत्र में समन्वित नागरिक तैयारी योजना लागू करने के लिए समीक्षा बैठक की। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 6 गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8 बजे हैं और 8 बजे हम सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। जी हाँ, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ फिल्मी संगीत। लीजिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ, जो हमने लिया है फिल्म आशिकी से। स्वर दिया है कुमार सानू ने।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और कैसा ये इश्क है, गजब का रिस्क है। तो रिस्क तो बनता है साहब, अगर इश्क नहीं होगा तो रिस्क कैसे होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ एक प्यारा सा आरजे जुड़ने वाला है, तो बताया तो है आप लोगों ने, मगर अभी भी जवाब वो नहीं आ रहे जो आने चाहिए थे। तो सुनते हैं उसकी आवाज और हमें करो आप फटाफट मैसेज कि हाँ भाई यही है वो आरजे जो मैंने किया था गैस। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये वही है जो सुबह सुबह आती है और खूब सारी खुशियों की ढेर सारी बातें करती है। वन एंड ओनली आरजे खुशी। और खुशी क्या हाल चाल है।
0: मैं बहुत ही अच्छी हूँ। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप।
6: वो तो तुम्हारी आवाज से ही पता चल रहा है, जैसी आई हो ना एकदम वॉल्यूम बढ़ जाता है हमारे शो का। ऐसे कैसे होता है।
0: ये हमारे श्रोताओं का प्यार है एंड आपके ब्लेसिंग्स हैं, जो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं चीजें।
6: तो खुशी से तुम्हें पता है कि ये दिल से दिल तक अखिल संग है, तो इतनी सारी बातें हम करते हैं, अपने दिल से निकली हुई बातें एक दूसरे के दिलों तक पहुंचाते हैं और शायरी के थ्रू ही पहुंचा पाते हैं, क्योंकि शायरी में वो दम होता है जो सभी के गम भुला देता है। तो क्यों ना तुम्हें एक शायरी सुनाओ आज।
0: अखिल जी, अब आपने इतनी प्यारी रिक्वेस्ट मुझसे की है, तो मैं कैसे ना कुछ सुनाऊं। अपने आप को मैं रोक ही नहीं पा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपको भी और अखिल जी को भी सुनाती हूँ मैं एक प्यारी सी खूबसूरत सी शायरी। मैंने कहा वो अजनबी है, मैंने कहा वो अजनबी है, दिल ने कहा ये दिल लगी है, मैंने कहा वो सपना है, दिल ने कहा फिर भी वो अपना है, मैंने कहा वो दो पल की मुलाकात है, दिल ने कहा ये सदियों का साथ है, मैंने कहा वो मेरी भूल है, दिल ने कहा फिर भी कबूल है, मैंने कहा वो मेरी हार है, दिल ने कहा यही तो प्यार है।
6: तो आज आपके दिल ने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी, क्या खूब शायरी लिखी है आपने खुशी जी।
0: अखिल जी, ये शायरी मैंने नहीं लिखी है, लेकिन हाँ इसमें रेडियो के प्रति प्यार छुपा हुआ है। बचपन से हम रेडियो को सुनते आ रहे हैं और आज उसी स्टेशन पर हम बैठे हैं जो बचपन में हमारी जर्नी रही है, जो हमने सुना है, आज फाइनली वो हमारे सामने है, तो इस प्यार को हम दिल से अलग नहीं कर सकते हैं।
6: बिल्कुल सही बात कही आपने, दिल होता ही ऐसा है कि दिल है कि मानता ही नहीं, ये तो आपने

0: सुना ही होगा। और जब दोस्त होते हैं ना, उस दिल के साथ जो जुड़े होते हैं, तो कहते हैं जिंदगी में पैसा, सक्सेस और नाम, चलो ठीक है, ये जरूरी तो है, थोड़ा सा जरूरी है, मगर लेकिन एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो सारी जो चीजें है ना ये आसपास हमारे, ये सब आसान लगने लगती है। क्यों, ठीक कहा ना?
1: हाँ जी अखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। दोस्ती का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। कहते हैं ना कि दोस्ती का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, ये दोस्ती का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, मिल जाए तो बातें लंबी, बिछड़ जाए तो यादें लंबी।
0: क्या बात कही है, बिल्कुल दिल से दिल तक छूने वाली बात कह दी आज।
1: तो अखिल जी अभी लेते हैं कुछ म्यूजिकल ब्रेक, उसकी बात करेंगे हम फिर से गुफ्तगू, फिर से शायरियाँ। एंड दोस्तों आई होप आप कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे मालूम है कुछ तो छत पर बैठकर आराम से तारों को निहार रहे हैं, तो कुछ बारिश का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ औंधे में कार में हैं, एंड कुछ हमारी फीमेल्स जो इस समय किचन में कुछ ना कुछ बनाने में लगी हुई हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है आज कुछ अच्छा पक रहा है किचन में।
0: अच्छा एक बात बताओ खुशी,
1: हाँ?
0: अगर ड्राइविंग सीट पे हस्बैंड हो
1: जी
0: और बगल वाली सीट पे वाइफ हो, तो वाइफ क्या सोच रही होती है कि ये आज राइट ले लेंगे या लेफ्ट ले लेंगे? ये आप भी सोचिए और बताइए कि अगर आपके बगल में आपके हस्बैंड बैठे हैं और आपका मन है कहीं लेफ्ट में जाने का, तो क्या वो लेफ्ट लेंगे या नहीं लेंगे, या क्या वो राइट में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो जरूर हमें बताइए, मैसेज करिए 9837896896 पर।
1: मुझे ऐसा लगता है अखिल जी कि जो मिसेज मन में अपने विचार कर रही हैं, जो बातें वो सोच रही हैं कि मुझे लेफ्ट जाने का मन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सफर दिल की बातें जान ही लेते हैं, तो वो जो मैडम जी कहेंगी वही वो जनाब मानेंगे।
0: हॉर्न भी वही बजेगा।
1: हाँ, तो चलो दोस्तों गुफ्तगू तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन कुछ प्यारे गाने सुन लेते हैं।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। और हाँ, मेरे साथ हैं आरजे खुशी, जो आज खुशी खुशी में इतनी रात में भी भाई साहब खुशी खुशी में अपने दिल की शायरियां बता रही हैं। आप लोग नहीं कर पा रहे हैं मैसेज, मगर वो एकदम बता देती है कि आज तो मैं ये सुनूंगी। तो क्या सुनाने वाली हो?
1: मैं तो अभी फिलहाल आपको सुनने वाली हूँ, और आपने बड़ी प्यारी शायरियां कर रहे थे माइक के पीछे पीछे, अब ऑन ईयर भी आ जाइए और अपने श्रोताओं को भी सुनाइए।
0: जो दोस्त आंसुओं को पहचान ले, वही असली हमसफर होता है।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: बाकी तो मुस्कुराहट देखकर सब अपने बन जाते हैं।
1: हाँ, ये बात तो आपकी 100% श्योर है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सभी का दिल से दिल तक अखिल के संग।
0: मेरे लगता है शो की तुम भी फैन होती जा रही हो।
1: बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। आपका शो मैं एवरी इवनिंग सुनती हूँ 9 से 10। और अखिल जी, हमने शायरियाँ तो बहुत सारी कर ली हैं, बहुत सारी हमने दोस्तों के ऊपर भी शायरियाँ कर ली हैं, लेकिन अब कुछ फन हो जाए, कुछ फन एक्टिविटीज करते हैं। आज मैं आपके साथ खेलने वाली हूँ कुछ गेम्स, तो हम स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर। मैं एक शब्द बोलूंगी, आपको बताना है जो आपके मन में है। तो फर्स्ट मेरा वर्ड है टी।
0: टी चाय दोस्त के साथ।
1: मैगी
0: बीवी के साथ।
1: ट्रिप
0: दोस्त के साथ।
1: लोन
0: दोस्त से मत लेना।
1: अरे वाह, सुपर, क्या बात है खिलजी, आपने तो कमाल कर दिया है, धोती फाड़ के झुमाल कर दिया है। पंच लाइन बोलते हैं आरजे आनंद जी
0: ये तो, और ये पंच लाइन जो बोलते हैं ना आनंद जी, तो एक अलग ही मजा आ जाता है उस समय।
1: हाँ,
0: भाई साहब मैं तो उनसे जब भी आनंद जी से मिलता हूँ ना स्टूडियो में,
1: हाँ,
0: मैं कहता हूँ भाई साहब मैं अपना रुमाल लेके साथ में घूम रहा हूँ, कोई धोती वाला नहीं है।
1: तो अखिल जी आपको मिलते हैं 100 में से 100 नंबर।
0: क्या बात है, थैंक यू,
1: आपने बहुत अच्छा
0: 100 में से 100 नंबर,
1: आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। तो अभी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, एक प्यारा सा गाना है जो मैं स्पेशली आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: थैंक यू वेरी मच,
1: मोस्ट वेलकम।

0: दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और हमारे पास खुशी आज बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, और सबसे पहला मैसेज जो हम पे आया है वो आया है प्रियंका जी का। प्रियंका जी कहती हैं एमडीए से कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी सिस्टर से भी ज्यादा क्लोज है। तो बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका जी, ये तो दोस्ती की खूबसूरती है कि रिश्ता खून का नहीं दिल का होता है। तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं तो दिल से जुड़ाव है आपका, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कहूंगा खुशी ऐसी दोस्ती हो जाती है।
1: बिल्कुल, ऐसी दोस्ती हर किसी की होनी चाहिए। सच्चा दोस्त आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है, और जिनके पास सच्चे दोस्त हैं मैं उनसे कहूंगी कि उनका विश्वास और दोस्ती हमेशा संभाल कर रखें।
0: अभी एक मैसेज किया है हमारे पास अरुण जी ने, चलिए मैसेज पढ़ते हैं। एक दोस्त दूसरे से, भाई तू उदास क्यों है? तो दोस्त कहता, भाई गर्लफ्रेंड नाराज है। कहता, पक्का? बोले हाँ, कल से ऑनलाइन है, रिप्लाई नहीं कर रही है।
1: बहुत बढ़िया
0: भाई, पता चल जाता है अगर गर्लफ्रेंड नाराज है ना आपकी, तो आजकल तो बहुत इजीली पता चल जाता है कि वो ऑनलाइन होके भी देखो तुम्हें जवाब नहीं दे रही है।
1: अच्छा, ये नाराजगी जताने का
0: साइन हो जाता है साहब, अगर आपका कोई साथी रूठा हुआ हो तो फटाफट जोमेटो करके उसे मना लो, या कुछ भी ऐसा आइटम आप ऑनलाइन मंगवा लो, इतनी देर में उसे पता भी नहीं चलता, एक सरप्राइज का सरप्राइज हो गया और आपका
1: जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी।
0: हाँ, हमारे पास अनमोल जी शायरी लिखते हैं, कहते हैं दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं होता, कभी पीछे रहकर भी अपने दोस्त को गिरने से बचाना भी होता है। तो अनमोल जी बहुत बढ़िया लिखा है आपने।
1: अनमोल जी ने बहुत अनमोल बातें की हैं।
0: और अनमोल जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके साथ भी कोई ना कोई ऐसा जुड़ा होगा जो आपको हमेशा गिरने से बचा रहा होगा। हमारे पास आनंद जी, अरे क्या बात है, एक आनंद जी तो हमारे अपने, और एक आनंद जी का हम पे मैसेज आया है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को ये शो डेडिकेट करना चाहता हूँ। थैंक यू आनंद जी, आप अपने एक दोस्त को हमारा भी शो डेडिकेट करना चाहते हैं तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात, क्यों ना खुशी।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आनंद जी का नाम सुनते ही ना चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ गई है। मॉर्निंग वाले आरजे आनंद की याद आ गई है ना आपको भी? हाँ, मैं जानती हूँ आप पूरा दिन उनके साथ रहते हैं, बहुत खुराफाती करते हैं आप दोनों।
0: हम करते हैं खुराफाती क्योंकि हमारी दोस्ती है एक कहते हैं ना खुराफाती वाली दोस्ती, हम दोनों ही खुराफात दोस्त हैं
1: क्योंकि दोनों का नाम ए से ही स्टार्ट होता है, दोनों की राशि एक है।
0: अच्छा, अब ये तो तुम निकाल दो, मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ना लड़कियों को तो भाई साहब निकालना होता है कोई ना कोई लॉजिक, तो इनकी दोस्ती के लिए हम भी एक गाना डेडिकेट करते हैं खुशी।
1: बिल्कुल, चलिए एक प्यारा सा गाना सुनते हैं अभी एंड उसके बाद लौट कर आते हैं। तो दोस्तों हम लौट कर आते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, और खुशी जी आज एक शायरी तो और बनती है आपके लिए।
1: इरशाद इरशाद, मैं सुनाऊं या आप सुनाएंगे?
0: आपने तो इरशाद इरशाद बोल दिया, तो क्या पता इरशाद जी सुना दे।
1: नहीं, मुझे लगा आप सुनाने वाले हैं कुछ शायरियाँ।
0: चलिए हम ही सुना देते हैं आपको। जिंदगी की किताब में दोस्ती सबसे हसीन चैप्टर होता है, जो कभी पुराना नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें। अच्छा, आपके कितने दोस्त हैं जो आपके बहुत करीब हैं?
0: दोस्त तो बहुत, जो दोस्त मेरे बहुत करीब हैं वो तो बिल्कुल ही करीब हैं, उनको तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मगर हाँ, दोस्त ऐसा भी नहीं कि, मगर हाँ दोस्त मेरे बहुत हैं, और जो लिसनर सुन रहा है ना वो भी आज से मेरे दोस्त हैं।
1: बिल्कुल, ये तो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तभी तो देखिए वो कितना ध्यान से आपको सुन रहे हैं और एवरी डे वो आपको इतना सारा प्यार देते हैं। अखिल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक ऐसा दोस्त जो आपका बहुत ज्यादा खुराफात हो, जो बहुत ज्यादा शरारती करता हो, कभी आप सैड हो लेकिन आप उनके पास जब भी जाते हैं तो वो आपके सैड मूड को भी हैपनिंग मूड बना देते हैं।
0: हाँ, होता है, एक है मेरा एक ऐसा दोस्त, अगर कभी भी किसी भी कोई ऐसा मूड अपसेट हो उसे मैं कॉल कर दूं तो पहले छोटे साथ कहता है, अबे ड्रामेबाज कहाँ है, क्या कर रहा है।
1: तो जो भी इंसान हंसना ना चाहे वो भी हंस देगा।
0: हाँ, तो वो उसका तरीका ऐसी है, उसे पता है कि इसने कोई बात हुई होगी तभी इसने मुझे इतना एकदम कॉल करी है ऐसे। मगर वो भाई साहब, जैसी वो लाइनें सुनता हूँ ना मैं उसकी, तो मुझे लगता है यार अब क्या इससे क्या बात छुपाऊं और क्या बात कहूँ। तो वो कहीं ना कहीं नेटवर्क होता है, अगर गाड़ी में ही बैठे हैं और अपने दोस्त लोग, तीन चार दोस्त हम सब बातें कर रहे हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं तो यार कनेक्टिविटी होती है ना साहब। तो चलिए,
1: जो सामने हमारे लिसनर जो अभी सुन रहे हैं, जो ऑन द वे कार में है, चार पांच दोस्त जो मिलकर बैठे हैं, बड़ी गौर से आपको सुन रहे हैं, कह रहे हैं हाँ मेरे बगल में भी ऐसा मेरा दोस्त बैठा है।
0: और ऐसा होता है,
1: और ऐसा होता है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। तो दोस्तों, अब हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, आप भी बहुत हंसे होंगे, कुछ अपने यादों में खो गए होंगे तो कुछ अपने दोस्तों को मिस कर रहे होंगे।
0: बिल्कुल सही, और हाँ उन सभी से माफी जिनकी आज हम फरमाइश प्ले नहीं कर पाए हैं, मगर कल फिर मिलेंगे दिल से दिल तक अखिल के संग, और हाँ सबसे पहले बजेगी आपकी फरमाइश।
1: हाँ जी दोस्तों, तो अभी चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट,
0: शुभ खैर,
1: शुभ रात्रि।
0: नहीं, खुशी जाने से पहले ऐसे नहीं जाने देंगे, एक गाना तो हम डेडिकेट करते हैं आज अपने सभी लिसनर्स को।
1: क्या बात है, अमेजिंग, सुपर, आपने तो ये बात बोलकर हमारे श्रोताओं का दिल जीत लिया अखिल जी। चलिए बाय बाय।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की
1: जरूरत। उड़ीसा में लगातार बारिश से जल भराव और नदियों का जल स्तर बढ़ा और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट में मेजबान श्रीलंका के साथ भारत ने ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड्डीकल के शतकों की बदौलत पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक सहयोग और आगामी उच्च स्तरीय बैठकों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध लगातार सुदृढ़ हुए हैं।
2: हमारा आर्थिक सहयोग, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक, परमाणु ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में लगातार मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आपसे मिलने को उत्सुक हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की एक मजबूत तस्वीर हमारे सामने है, जिसे हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को उर्वरक की आपूर्ति बढ़ाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि रूस भारतीय किसानों और कृषि क्षेत्र में सहायता के लिए कदम उठा रहा है। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतोरोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।
3: प्रोग्रेस ऑन मार्केट एक्सेस,
2: बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को हटाना, भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और दोनों देशों के कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाना इस असंतुलन को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचाने के साझा लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की इच्छुक कंपनियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 2 महीनों में वर्तमान नियमों में संशोधन करेगा और नए नियम बनाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इनमें से एक कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर उपकरण का विनिर्माण शुरू करना चाहती है और दूसरी ऑटोमोबाइल कलपुर्जा क्षेत्र में काम करती है। भारत जापान आर्थिक संबंधों पर श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
4: भारत एक युवा देश है। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है और 2047 तक इसके $30 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। जापान के पास बेहतरीन तकनीक और कारोबारी अनुभव है, लेकिन वहाँ पर्याप्त लोग और बड़ा बाजार नहीं है। ऐसे में भारत एक बेहतर साझेदार बन सकता है, क्योंकि हमारे पास बड़ा घरेलू बाजार और बड़े स्तर पर उत्पादन की क्षमता है।
1: श्री गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।
3: We have free trade agreements or preferential market access.
4: भारत को $70 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले बाजारों में आसानी से कारोबार करने की सुविधा मिली है। पिछले 4 वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौतों के तहत 38 विकसित देशों को इसमें जोड़ा गया है। मैं आप सभी को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के युवाओं के कौशल, बड़े घरेलू बाजार और वैश्विक बाजारों का लाभ उठाकर बड़े स्तर पर किफायती और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचे। वे कल चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा वार्ता तंत्र के लिए नियुक्त विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3,400 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान निकालने के लिए बनाया गया था। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखे से निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए विविध और पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता की जरूरत पर बल दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17वें सम्मेलन COP17 के दौरान उर्वर भूमि और सूखे से निपटने की क्षमता के लिए नए वित्तीय तरीके पर मंत्री स्तरीय वार्ता में ये बात कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर मजबूत संपर्क स्थापित करने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क को गहरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 9वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में देशभर के विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और उभरते खतरों से निपटने के लिए खुफिया अर्धसैनिक और पुलिस नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा होती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में संशोधित डाक सेवा ऐप और डाक मित्र ऐप शुरू किए। इस दौरान उन्होंने 10 राज्यों के 14 डाकघरों के नवीनीकृत भवनों का भी उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि इन पहलों से भारतीय डाक को अधिक आधुनिक, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है।
5: डाक मित्र ऐप हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, ताकि जो सेवाएं उपभोक्ताओं को हमें देना हो वो सुगमता के साथ और सुरक्षित वातावरण में हम लोग दे पाए। पहले अनेक सेवाओं के लिए अलग अलग सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था, अब सारे प्रोसेसेस को एक ही ऐप में केंद्रित कर हमारे उपभोक्ताओं के लिए सुगमता देने के लिए ये ग्रामीण डाक सेवकों के हाथों में ये ऐप दिया गया है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत को वर्ष 2040 तक रसायन क्षेत्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम करना होगा। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार निवेश, तकनीकी विकास और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करना जरूरी है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री जोशी ने बताया कि बैठक में CBSE की शैक्षणिक परीक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं की समीक्षा की गई। भारतीय चीनी और जैव ऊर्जा उत्पादक संघ के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने आज कहा कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि घबराहट और सट्टेबाजी में कमी के साथ ही चीनी की कीमतों में कमी आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में चीनी की कीमतों में वृद्धि सट्टेबाजी और घबराहट के कारण हुई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे और मध्य महाराष्ट्र में कल अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: मौसम विभाग ने कल दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। गुरुग्राम में मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को कल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने की सलाह दी गई है। साथ ही कॉरपोरेट और निजी कार्यालयों को भी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच ओडिशा में लगातार बारिश के कारण कई जिलों में जलभराव, नदियों का जलस्तर बढ़ने और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
7: उड़ीसा में पिछले तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरापुट में जलभराव, घरों को नुकसान और नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने की खबर है, जबकि नवरंगपुर में नदी किनारे बसे गांव में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। केंदुझर में NH 520 पर बाराबंका घाट में भूस्खलन से सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है। हीराकुद बांध से अभी 12 गेटों के जरिए पानी छोड़ा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिसमें जोड़ा में राज्य में सबसे ज्यादा 169.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। IMD ने उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय एजेंसियां मलेशिया में पकड़े गए बम्बीहा गिरोह से जुड़े तीन फरार गैंगस्टर को भारत ले आई हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि जसप्रीत सिंह, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को भारत लाकर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन आरोपियों पर जबरन वसूली, सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी समेत कई अपराधों में शामिल होने का आरोप है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एजेंसियों ने वर्ष 2026 में अब तक 51 कुख्यात अपराधियों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 2025 में एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 2.60 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नया आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर में काम करना शुरू करेगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
8: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 172 अंक नीचे आकर 77,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की सुस्ती के साथ 24,219 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 3 पैसे की गिरावट के साथ 95.74 रुपए पर बंद हुआ।
1: कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से ध्रुव जुरेल ने नाबाद 115 रन की पारी खेली। भारत श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे है। एम्स्टरडैम में खेले गए हॉकी विश्व कप के मैच में भारतीय पुरुष टीम को अर्जेंटीना से 3-5 गोल से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है। अब भारत ये टीम सातवें स्थान के लिए प्लेऑफ में 28 अगस्त को बेल्जियम से खेलेगी। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र में आयुर्वेद पर आधारित प्रसूति देखभाल को बेहतर बनाने के लिए गर्भणी मित्र नाम से एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के अनुसार 6 महीने का यह पाठ्यक्रम गर्भावस्था और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान महिलाओं को उचित स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली, मार्गदर्शन और सामुदायिक स्तर पर सहायता प्रदान करते हुए प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार करने के लिए बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति पुतिन ने उर्वरक आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 25वीं भारत चीन सीमा वार्ता के लिए पेइचिंग पहुंचे। भारत ने भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और सूखा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तथा विविध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा में लगातार बारिश से जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पे अखिल के साथ, दिल से दिल तक अखिल संग। और साहब, आज सावन का आखिरी सोमवार है, सब ने अपना अपना जल चढ़ा के अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी मांग के अब निकले होंगे। थोड़ा सा कहते ना कि आज भाई थकान हो गई है और थोड़ा आराम हो गई, मगर बहुत लोगों को ऑफिस जाना था, कई सारे काम निपटाने थे, इतने सारे चीज़ें जो पिछले टाइम से छुट्टियों के चलते नहीं हो पा रही थी, अब वो काम निपटा रहे होंगे साहब। तो आप भी इस समय अगर जा रहे हैं घर, जा रहे हैं यहाँ दिल्ली रोड से या एमडीए वाली रोड पे या फिर रामपुर रोड से, तो हमें ज़रूर अपडेट करें कि कहाँ कहाँ जाम खुल गया है, क्योंकि जो अभी तक रूट वन वे थे वो रूट अब वापस चालू हो गए हैं। तो हमारे पास अपडेट करिए, खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारी बात करेंगे, और हाँ, आने वाले दिनों को भी आगे याद करेंगे कि अब एक और त्यौहार आने वाला है, वो तो आप सभी को पता है। तो साफ करते हैं खूब सारी मटर गस्ती। आप 9837896896 पर मैसेज करें और कॉल करें और अपनी फरमाइश का गाना भी प्ले करें, क्योंकि बहुत दिन हो गए यार, दिल का निकला हुआ गाना अभी तक प्ले क्यों नहीं हुआ है। तो चलिए, इस गाने के बाद मिलते हैं हम सब 9837896896 पर।

0: ऐसी की तैसी। एक बार फिर से स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पे। चलिए अब हमारा टाइम हो गया है, अपने लिसनर्स को लाइन पे लेते हैं और देखते हैं आज उनके दिल से कौन सी फरमाइश निकल रही है। साहब हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? सर आपके पीछे जो FM चल रहा है थोड़ी सी आवाज कम कर लीजिए। सर क्या कर रहे हैं? जेठालाल जी आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं इस समय?
1: आपके गाने सुनना है सर जी।
0: और आज आपने सावन के आखिरी सोमवार पे क्या क्या किया?
1: सर क्या क्या किया, जो सब करते हैं वही हमने किया सर, जो आपने किया वो हमने किया।
0: बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया सर। तो अब इस समय क्या मस्ती हो रही है? खाना हो गया आपका?
1: नहीं सर, खाना हो जाएगा, जब आपने खाना नहीं खाया तो हम कैसे खा सकते हैं सर।
0: क्या बात है, आप तो बिल्कुल ही आज सर टची टची लाइन चल रही है। कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप? क्या बात है, क्या बात है, क्या गाना सुना है आपने, तो जरूर ये सुनाएंगे। कोई शायरी सुनाना चाहेंगे आप इसके ऊपर?
1: कौन सा आप सुना दें सर?
0: हाँ सुनाइए, सुनाइए सर।

0: कोई आपकी बात तो मैं जरूर वो करनी पड़ेगी सर। तड़प क्या होती है उसे बहुत अच्छे से मालूम है, तड़प क्या होती है उसे बहुत अच्छे से मालूम है। जिसका खुद का दिल टूटा हो वो किसी और का दिल क्या तोड़े।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने।
0: सर बच्चे बस सही यही होती है बात।
1: चलिए साहब नहीं नहीं बहुत ही अच्छी बात कही आपने और आपकी इसी बात पे अब आपकी फरमाइश पूरी करते हैं।
0: ओके नमस्कार।
1: नमस्कार जी। तो ये थे हमारे साथ जेठा लाल जी जुड़े, जिन्होंने अपनी फरमाइश हमारे साथ रख दी, एकदम कौड़ मिला के अपनी दिल की बात भी यहाँ रख दी है। हमारे पास एक बहुत बढ़िया शायरी आई है, सावन की बूंदों में कुछ तो बात होती है, हर भीगी शाम में एक नई शुरुआत होती है, दिल से जो मांगो वो जरूर मिलता है, बस कभी कभी भगवान कहते हैं पहले मेहनत तो कर ले भाई। हाँ साहब तो बिल्कुल सही कहते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी साहब, जो भी फरमाइश है या जो भी आपकी ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी होगी। अगर हमसे बात करनी है उसके लिए भी थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, नंबर डायल करना पड़ेगा 9837896896। चलिए जेठा लाल जी की फरमाइश पूरी करते हैं, फिर आपका भी नंबर है, मिलाते रहिए कॉल या फिर हमें मैसेज।

तो अभी आप सुन रहे थे जेठालाल जी की फरमाइश पे पंकज उदासी वाला दिल जब से टूट गया। और सच में साहब, जब दिल टूटता है ना, तो यही गाने आपके दिल के जख्मों को भरते रहते हैं। अभी हमारे पास फरमाइश आई है खुशी जी की, जो सुनना चाहती हैं चंद्रियाना लोरी लोरी, जो गाना है आपका राउडी राठौर से। ज़रूर आपके गाना भी प्ले होगा खुशी जी, और आप ऐसे ही खुश हैं जितना अच्छा आपका नाम है। हमारे पास मैसेज आया है, अभी सावन के अंतिम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। अखिल सर जी आपको प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, दुनिया बनाने वाले को भगवान कहते हैं। क्या बात कही आपने, बहुत ही बढ़िया। नाम है नमन यादव, शंकरलाल यादव, ऋतु यादव, अमित यादव, निरांशी यादव, एक तरीके से पूरा यादव परिवार है जी। लाइन पार मुरादाबाद प्रकाश नगर चौराहे से। हर हर महादेव, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरा गाना भी प्ले कर दिएगा। ज़रूर आपका गाना भी हम चलने से पहले ज़रूर प्ले करेंगे। तो क्या होता है, जब कभी बारिश होती है ना, तो आप एक बात बताइए, आप लोगों के लिए भी एक सवाल है कि अगर बारिश हो जाए तो आप अपने दोस्त से क्या बोलेंगे, चल भाई बाहर चलते हैं, या फिर कहेंगे पहले चाय पकौड़े हो जाए भाई, या घर से बाहर चल भाई जल्दी चल। तो मेरे हिसाब से तो भाई साहब, आप पहले चाय के लिए बोलेंगे, फिर पकौड़े के लिए, और फिर कहेंगे चलो भाई बारिश। उसके बाद एक प्यारी से लगी इंस्टाग्राम स्टोरी, क्योंकि आजकल बारिश भी तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक उसकी स्टोरी ना लगाई जाए। बारिश हो रही है, पहले फटाफट एक फ़ोटो ले लो बारिश में भीगते हुए का, उसके बाद एक चाय की सिप लेते हुए, और फिर पीछे से मम्मी आती है, अबे भाई जाके पहले छत पे से कपड़े तो उठा ले। ऐसा किस किस के साथ हुआ है कि चाय का आनंद लेते समय पीछे से आवाज़ आती है कि भैया जाओ, जो कपड़े हमने सुखाने के लिए रखे थे अब वो बारिश की वजह से गीले हो जाएंगे, जल्दी से जाके उतार लाओ, वरना भैया फिर से तुम हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। तो हमारे पास अभी मैसेज आया है रोहित जी का। रोहित जी कहते हैं, अखिल जी आपके घर में बारिश आती ही सबसे पहले आप क्या बनता है? रोहित जी मैं सच बताऊं तो चाय बन जाती है, और पकोड़े जो है ना वो बारिश के हिसाब से नहीं बनते, वो भाई साहब घर वाले के मूड के हिसाब से बनते हैं। आप समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। और उसके बाद अगर पकोड़े बन गए तो फिर ये बहस होती है कि भाई साहब पकोड़ों के बाद क्या खाना खाया जाएगा, क्योंकि पकोड़ों से ही मैटर फुल हो जाता है। तो भात का खाने का तो समझ में नहीं आता, कि अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो चलिए अभी सुनते हैं पहले फरमाइश के गाने, उसके बात करेंगे थोड़ी सी और आपकी मूड की बातें, कैसे चल रहा है और क्या हो रहा है। तो खुशी जी पहले आपका ही फरमाइश को करते हैं पूरी।

सावन जो होता है ना सिर्फ मौसम ही नहीं होता, सावन जो है ना याद भी लेकर आता है। कभी किसी पुराने दोस्त की याद, कभी स्कूल की छुट्टियाँ, या फिर कभी छत पे जो बारिश में भीगने वाली यादें होती हैं वो भी आपको याद होने लगती हैं। जिसकी याद बारिश में भी सबसे ज़्यादा भिगो देती है ना, वो ही अपने दोस्त और अपने प्यारे, मतलब जब भी ऐसे याद आते हैं कि काश वो साथ में हों और इस बारिश का मज़ा उनके साथ ले रहे हों। बारिश की बूंदों से पूछो अकेलेपन का एहसास क्या होता है। बारिश की बूंदों से पूछो अकेलेपन का एहसास क्या होता है। छत पर बैठकर देखो कभी किसी अपने का इंतज़ार क्या होता है। और एक बहुत छोटी सी बात, कभी कभी ज़िंदगी में ना हमें बारिश की तरह ही बनना चाहिए। बारिश पूछती नहीं है कि कौन खुश होगा,

दूसरी बार उसे बहुत ध्यान से सुना, उन्होंने कहा सर प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है आप उसे प्ले करेंगे। मैंने कहा जरूर, तो आपकी हम रिक्वेस्ट प्ले करते हैं। और उसके बाद फिर आप भी कॉल मिलाएं, 9 भी दिल की बातें जरूर हमारे साथ शेयर करें।

0: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चांद के पार चलो चलो अब लाइन पार चलो। तो आप सभी लोग एंजॉय करें एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे। और अपने लिसनर से हम बात करते हैं, चलिए वो क्या कहते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: हेलो, गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, क्या कर रहे हैं आप और आपका नाम बताइए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: सर, मैं जिला मुरादाबाद से निकट फातिमा से बात कर रही हूँ।
0: निकट फातिमा जी, क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं सर, बस यही रहते हैं, घर का काम चलाते हैं बस।
0: तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज आपने क्या सुनाएंगे आप हमारे सभी दर्शकों को?
1: हाँ सर, मैं जो मेरी दोस्त थी पहले वो अब नहीं है, तो मैं उसके लिए सुनना चाहूंगी।
0: मतलब दोस्त थी पहले, अब नहीं है, मतलब क्या दोस्ती
1: है? साथ में नहीं है मेरे, वैसे है।
0: मतलब दोस्ती दोस्ती नहीं है साथ में?
1: हाँ सर।
0: तो बताइए उनका नाम भी बोलिएगा उसके बाद।
1: ओके।
0: हाँ जी।
1: तेरे ना होने का मलाल एक तरफ, तू मेरा क्यों नहीं हुआ ये सवाल एक तरफ। यकीन मान ले खुश तो बहुत हूँ, लेकिन जब तेरे साथ थी वो दिन वो महीना वो साल एक तरफ।
0: क्या बात है, क्या बात है, मतलब आपने बता दिया कि दोस्ती जो है आपको कितनी याद आ रही है।
1: हाँ सर, मुझे याद आती है, ये पता नहीं क्यों उन्हें आती है या नहीं आती।
0: क्या नाम है उनका? तो फातिमा जी के पास, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि उन्हें आपकी याद आ रही है नहीं आ रही, ये पूछना चाहती हैं आप?
1: बताएंगे तो नहीं, पर मैं खुद ही

0: हाँ बोलिए। अच्छा,
1: जो मैंने बोला।
0: ये जो आपने बोला है उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है, तो
1: तो कुछ
0: कुछ
1: रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूसरे के बहकावे में आके रिश्ते खराब ना करें, कोई भी उन्हें सुलझाने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल सही बात कही है आपने। अगर कोई ऐसी बात है तो सामने से बात हो तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल
1: असल दूसरे के बहकावे में आके रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए किसी को भी।
0: सही बात कही आपने, बहुत ही बढ़िया बात कही है फातिमा जी। तो कोई गाना आप कोई डेडिकेट करना चाहेंगी उन्हें?
1: सर परदेश मूवी का सुनूंगी।
0: परदेशी मूवी का?
1: हाँ सर मैं सॉन्ग भूल रही हूँ, अभी बताती हूँ।
0: अच्छा, आप सॉन्ग भी भूल गए।
1: चेंज हो गया ना सर,
0: कोई बात नहीं, आप सॉन्ग को याद करिए और अपने इस रूठे हुए दोस्त के लिए कोई एकाध शायरी और बोल दीजिए, क्या पता वो भी मुस्कुरा जाए, बोले हाँ यार आज बड़ी मेहनत करी मेरी फादर।
1: सुनाऊंगी। हजारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, हजारों अच्छाइयों की कोई रसीद नहीं होती, पर ये एक गलती पूरा हिसाब रखा जाता है, पर एक गलती का पूरा हिसाब रखा जाता है। ये दुनिया कमियां ढूंढने में माहिर है, यहाँ किरदार नहीं यहाँ खता याद रखा जाता है।
0: क्या बात कही, बिल्कुल सही बात कही। आज तो मुझे लग रहा है आपने एक पूरी जो है ना, जो आज आप अपने दोस्त को मना ही लोगे फिर। अरे फातिमा जी, अगर आप रूठी हुई हैं इनसे तो हमारी इन फातिमा जी से मान जाइए, वो बेचारी सीधे सीधे कह रही हैं, किसी के बहकावे में मत आइए। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे जुड़ के, आपने अपने दिल की बात रखी। यही तो होता है कि कम से कम जो बात दिल से निकली है ना, वो दिल तक पहुंचनी चाहिए, तो क्या पता उनके दिल तक पहुंचे और कहीं कुछ असर हो इसका। धन्यवाद फातिमा जी। तो ये थी हमारे साथ फातिमा जी, जुड़ी हुई जिला मुरादाबाद से, और कह रही हैं कि मेरी फ्रेंड नाराज़ हो गई है और वो सीधे बात नहीं कर रही है, बहकावे में, मतलब किसी और से बात होगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग तभी दूर होगी जब आपने सामने बात करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी नोकझोंक होगी, मगर सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। तो उनके लिए एक गाना हम डेडिकेट करते हैं। आपकी भी कोई ऐसी नोकझोंक या ऐसी कोई भी दोस्त या कोई फ्रेंड आपका अगर रूठ गया तो ज़रूर हमें कॉल करें, एक मैसेज तो उनके पास पहुँच ही सकता है, 9837896896 पर। चलिए इस बात लेते हैं, सब म्यूजिक पे।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। और अभी खूब सारी बातें चल रही हैं दिल से दिल की, और हमारे पास कॉलें आ रही हैं कि सर हमारी कॉल भी रिसीव कर लीजिए, हमें भी अपने दिल का गाना सुना दीजिए। तो ज़रूर, क्यों नहीं, लेते हैं अपने नए लिसनर को। हेलो दिल से अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: हेलो,
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: गुड इवनिंग सर। सर
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग।
1: मैं अक्का निकलपुर जिला मुरादाबाद से अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: अफरोज जी, कैसी हैं आप?
1: मैं इस टाइम तो बहुत अच्छी हूँ सर, आपका शो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है।
0: और इस समय मौसम कैसा हो रहा है वहाँ पे?
1: मौसम तो सर इस टाइम पे बादल छा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है।
0: बारिश नहीं हो रही है, बादल आ गए हैं।
1: नहीं
0: मतलब ये जो बादल हैं गरज रहे हैं या नहीं गरज रहे? अच्छा,
1: नहीं मतलब मौसम ठंडा है लेकिन गर्म नहीं रहे हैं, बस ऐसे ही बादल छाए हुए हैं, घटाए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हो सकती है रात को बारिश।
0: चलिए चलिए, तो अफरोज जी कोई शायरी सुनाना चाहेंगी आप?
1: जी सर, मैं शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: बहुत दूर आ गए रिश्तों को निभाते निभाते, बहुत दूर आ गए रिश्तों को निभाते निभाते, खुद को मिटा दिया अपनों को जाते जाते। लोग कहते हैं कि हम हंसते हैं इतना मगर, लोग कहते हैं कि हम हंसते हैं इतना मगर, हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते, हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते।
0: क्या बात है, क्या बात है, आप थक गए हैं तो दवाई तो लेनी पड़ेगी आपको। तो कौन सा जो है ऐसा गाना डेडिकेट करेंगी आप अपने दोस्त को या जिसके लिए आपने ये शायरी डेडिकेट करी है?
1: मैंने ये शायरी किसी को डेडिकेट नहीं की है, बस मैं तुम्हें तो पता है मतलब मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, बस इसीलिए।
0: चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छी शायरी आपने कही है। तो गाना बताइए, आप कौन सा सुनना चाहती हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैं सुन सुनना चाहती हूँ, ओ बेदर्दिया है रात की सर्दियाँ।
0: क्या बात है, ओ बेदर्दिया तू झूठी मैं मक्कार का,
1: ये सॉन्ग
0: जरूर।
1: मुझे बहुत पसंद है सर, बहुत अच्छा लगता है।
0: नहीं, बहुत ही बढ़िया गाना है जो आपने चूज किया है, और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हमें कॉल करके अपना ही फेवरेट फरमाइश बताई।
1: शायरी और सुनाना चाहती हूँ मैं।
0: हाँ मगर थोड़ी जोर से सुनाइएगा क्योंकि आवाज मुझे लग रहा है कि मेरे पास तक ही आ रही है।
1: आवाज नहीं आ रही मेरी।
0: आवाज आ रही है मगर थोड़ी सी और, कहते हैं ना, एनर्जी चाहिए हमें आपकी आवाज में। हाँ
1: सही आ रही है।
0: थोड़ा सा और तेज।
1: उनकी चाहत में दिल मजबूर हो गया, उनकी चाहत में दिल मजबूर हो गया, दर्द देना उनका दस्तूर हो गया। कसूर उनका नहीं हमारा ही था, कसूर उनका नहीं हमारा ही था, हमने उनको चाहा इतना कि उनको गुरूर हो गया।
0: क्या बात है, क्या बात है साहब, गुरूर तो होना ही था जब आपने इतने अच्छे तरीके से चाहा है।
1: मतलब जिस इंसान को हद से ज्यादा प्यार करेगा वो इंसान खुद ज्यादा ही गुरूर करने लगता है।
0: अब ये तो साहब जो है आप और आप उस इंसान के बारे में हम आप ही अच्छे से बेहतर जानते कि गुरूर क्यों है और क्यों नहीं है, मगर हमें ये गाना आपने जो फरमाइश में दिया बहुत ही अच्छा लगा।
1: आपका तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू। मतलब हमारी कॉल में सेव कर दो और इतना अच्छा शो कर दो तो बहुत अच्छा लगता है आपको।
0: थैंक यू अफरोज जी, थैंक यू वेरी मच, आपके इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थी हमारे साथ अफरोज जी जो जुड़ी हुई थी और कह रही थी कि मैं जो है आज ये गाना ओ बेदर्दिया सुनना चाहती हूँ, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है और बारिश भी होने वाली है, तो ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। आपकी भी अगर कोई फरमाइश है तो 9837896896 पे कॉल करें या हमें मैसेज करें, खूब सारी फरमाइशें हमारे पास आई हुई हैं, आज सबकी प्ले करेंगे, निराश किसी को भी नहीं करेंगे। तो जल्दी जल्दी गाना प्ले करते हैं और

हमारे लिसनर की एक और फरमाइश आई है, वो भी ऐसी ही आई है कि सर मेरा नाम मत बताइएगा मगर ये गाना मैं किसी को डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो ज़रूर ज़रूर आपका ये गाना हम डेडिकेट करते हैं, जो आपके दिल से निकली हुई आवाज़ है वो उसके पास तक पहुँचनी चाहिए, और अगर आवाज़ ना पहुँचे तो फिर दिल से दिल तक की बात क्या, कहना ही क्या। तो चलिए इसका भी आनंद लेते हैं और आपसे भी कनेक्ट करते हैं।

0: क्या बात है साहब, जिंदगी में भी ना सिर्फ दुआ ही नहीं, दुआ प्लस मेहनत प्लस पेशेंस भी होना जरूरी है। कभी आपने देखा है बारिश को कि एक बूंद गिरती है, फिर उसकी दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे पूरा मौसम बदल जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव आता है। आज खुद से हमें पूछना है कि मैं क्या बदलना चाहता हूँ, दूसरा मैं उसके लिए अब तक मैंने उसके लिए क्या किया, और तीसरा कल से मैं कौन सा छोटा कदम उठाऊंगा। क्योंकि जब बड़े सपनों की शुरुआत होती है ना, तो छोटे कदमों से ही होती है साहब। अगर बिजनेस शुरू करना है तो आज पहला कॉल अभी कीजिए, अगर फिटनेस शुरू करनी है तो कम से कम 20 मिनट की वॉक कीजिए, अगर किसी से रिश्ता सुधारना है तो अपना ईगो छोड़कर उससे सीधे बात कीजिए। चलिए अब करते हैं अपने नए लिसनर से बात, देखते हैं उनकी कौन सी दिल की निकली हुई है बात। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, क्या नाम है आपका?
1: नमस्ते, आदाब सर।
0: आदाब जी आदाब, क्या करते हैं आप और आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मैं अलाहाबाद कुंभ नगरी से बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, आप प्रयागराज से बात कर रहे हैं
1: जी सर।
0: तो अयूब जी आप क्या काम करते हैं?
1: करते तो बहुत कुछ है लेकिन सर संगीत से प्यार कर रहे हैं, इसमें आपके प्रोग्राम में जुटे हुए।
0: क्या बात है साहब, यही सबसे बड़ा काम है, इसके बाद कोई दूजा होना चाहिए।
1: जी, और चिंता विंता छोड़िए, सॉन्ग प्रोग्राम सुनिए, आपका प्रोग्राम सुनिए, मुरादाबाद का चैनल है।
0: तो अभी कोई शायरी सुनाना चाहेंगे अभी श्रोताओं को, अगर आपका शायरी से थोड़ा प्यार
1: है? क्यों नहीं, आपने हंस के बात की जाए इसी लाइन से हमको लाइन याद आएगी, पहले गाने की बात हो जाए।
0: गाना बताइए साहब।
1: क्योंकि सर चिंता हम करते नहीं, चिंता जो है इस उम्र में नहीं करना चाहिए, चिंता का उम्र है बुढ़ापे का उम्र, वहाँ पर चिंता करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही,
1: संगीत सुनना चाहिए और काम करना चाहिए।
0: क्या बात कही आपने, बहुत ही सही बात कही। तो गाना बचे, हाँ जी हाँ जी,
1: 2008 में कर्ज
0: कर्ज
1: कर्ज, हाँ कर्ज, तो दो तीन फिल्म बनी हुई है, 2008 में कर्ज आई थी, हिमेश रेशमी और उर्मिला मातोंडकर केस में 2008 में आई थी, तो इसमें समीर साहब ने गीत लिखा था, हिमेश रेशमी और गाया और कम्बोज किया हुआ गीत है। तेरे इश्क में डूबा रहूं शामो शहर हरी ओम ओम, वो गाना बहुत अच्छा गाना है, और सावन का महीना है, लाज कुमार भी चल रहा है।
0: जरूर जरूर, ये फरमाइश आपकी पूरी करेंगे, मगर क्या आप बताएंगे कि इस फिल्म के बाद हिमेश रेशमिया पे कर्ज हुआ था या नहीं हुआ था?
1: कर्ज हुआ था क्या हुआ था, वो गाने इतने अच्छे अच्छे दे देते हैं, कर्ज उतर गया होगा अगर हुआ होगा।
0: हाँ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर्ज तो उन्होंने उतार ही दिया होगा, गानों से ही उतार दिया होगा,
1: गानों से उतार दिया और लोगों के दिमागों में बस गए हैं इस तरह,
0: बिल्कुल जहन में आ गए।
1: सर दो लाइन आपके लिए,
0: हाँ जरूर,
1: मुस्कुरा के बोला है मोहब्बत के ऊपर दो लाइन, हमने हमको याद आ रही है।
0: जरूर जरूर,
1: क्योंकि आपने जितने लोगों से बात किया अभी शायरी के बारे में बात की, मैं बहुत मन लगा के और गौर से दिमाग से सुन रहा था प्रोग्राम।
0: क्या बात है साहब, दिमाग से, दिमाग के साथ साथ दिल दिल से सुनिए साहब, दिल से।
1: कौन हमने लाइन बोला, दो लाइन सुनिएगा।
0: हाँ जी
1: हेलो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: कौन कहता है मोहब्बत शरीफों का काम है, कौन कहता है मोहब्बत शरीफों का काम है, ये तो वो नशा है जो हर नशे से ज्यादा बदनाम है।
0: क्या बात है यार, क्या बात, बिल्कुल सही बात कही आपने, मोहब्बत ऐसा नशा है
1: जी, और म्यूजिक का भी नशा बहुत अच्छा नशा है, इस बार सर पे चल के बोले तो फिर उतरता नहीं सर।
0: बिल्कुल सही, अगर आपको आपके पसंद का गाना सुनने को मिल जाए पूरे दिन में एक बार भी, तो वही आपके लिए सबसे बड़ी दवा है।
1: जी दवा है, हाँ सारे दुख दर्द भूल जाओ।
0: चलिए चलिए, तो और कोई शायरी भी आप कहना चाहेंगे या आपने वो दो लाइनों में ही सब कुछ कह दिया?
1: अरे क्यों नहीं कहेंगे, दिल से मिले दिल तो सजा देते हैं लोग, सुनिएगा सर।
0: क्या बात,
1: दिल से मिले दिल तो सजा देते हैं लोग, प्यार के जज्बातों को डुबा देते हैं लोग, दो इंसानों को मिलते देख देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं लोग, साथ बैठे दो परिंदों को उड़ा देते हैं।
0: बिल्कुल सही बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और इसी पे मुझे एक बात याद आ रही है, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ लोग पास होकर भी पास नहीं होते,
1: नहीं
0: और
1: होते।
0: कुछ लोग दूर रहकर भी दिल के सबसे करीब होते हैं।
1: जी, बेहतर क्यों नहीं।
0: तो कहते हैं ना, आपने भी बहुत ही दिल वाली शायरी बोली, तो जरूर आपकी ये फरमाइश पूरी करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा कि प्रयागराज से भी आपने हमें कॉल किया।
1: जुड़ते रहते हैं, जब जब टाइम मिलता है, व्यस्तता इतनी रहती है दिन भर, दिन में काम धंधे में रहते हैं, व्यस्तता हमारी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन जुड़ते हैं
0: बिल्कुल
1: प्रोग्राम में। जी
0: बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद अयूब जी।
1: शुक्रिया सर।
0: तो श्रोताओं, ये जुड़े थे हमारे साथ अयूब जी प्रयागराज से, और कितनी उम्दा शायरी उन्होंने कही कि साहब जो मोहब्बत करते हैं ना वो किसी के मोहताज नहीं होते। बहुत ही बढ़िया बात कही है। तो चलिए उनकी फरमाइश प्ले करते हैं, और फिर आपकी भी लास्ट फरमाइश लेंगे 9837896896 पे। तो कॉल करिए साहब, अभी भी हैं हम यहीं पे बरकरार, जा नहीं रहे हैं मगर।
2: ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है। रात दिन उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता है। लाख बुलाना चाहूं फिर भी नहीं बुला सकता। बस अब आप लोगों का सहारा है, दुआ कीजिएगा, क्योंकि अगर वो मुझे ना मिली तो मर ही जाऊंगा मैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। चलिए लेते हैं अपने लास्ट कॉलर को लाइन पे एक मिनट में, मगर उससे जाने से पहले कहते ना कि सावन जो है आखिरी सोमवार है और आज आखिरी सोमवार की एक आखिरी शायरी तो बनती है। सावन चला जाएगा, मौसम बदल जाएगा, आज का दिन भी कल बन जाएगा, इसलिए मुस्कुराकर जी लो हर पल, क्योंकि जिंदगी को ये पल दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तो अपने हर पल को जिए, खूब मुस्कुराते रहें, और हाँ जो भी बात दिल से है ना उसे तो आप सर निकालते रहें। तो चलिए बात करते हैं अपने लास्ट लिसनर से इस शो के आज। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जी सर, मैं दरअसल फातिमा में बात कर रही हूँ, मुरादाबाद से।
0: मुरादाबाद से? तो आज हमारे पास कितनी सारी मतलब जिनका नेम सर नेम फातिमा है, आज आप तीसरी फातिमा है जिनसे आज हमारी बात हो रही है। क्या कहना चाहती हैं और आपकी तरफ मौसम कैसा हो रहा है?
1: सर मौसम तो बहुत अच्छा है इधर, आपकी तरफ कैसा है?
0: हमारी तरफ भी मौसम बहुत अच्छा है, कभी बरस जाता है कभी चुप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है सब जगह। तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप? कहाँ होके जुदा होकर, मुझसे जुदा होकर? अच्छा हम साथ हैं।
1: मूवी का गाना है।
0: तो ये गाना आप किसको डेडिकेट करना चाहती हैं फातिमा जी?
1: मैं अपनी सिस्टर को डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: अच्छा आप अपनी सिस्टर को डेडिकेट करना चाहती हैं, चलिए हम आपके ये गाना जरूर प्ले करते हैं और आपकी सिस्टर को इसे डेडिकेट करते हैं।
1: थैंक यू सर, मैंने आपके शो में पहली बार फुल की है ना, वो अच्छा लग रहा है।
0: हम भी आपका पहली बार गाना प्ले करेंगे, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू फातिमा जी। तो चलिए ये थे हमारी लास्ट लिसनर शो की, आज के शो की, और कल हम आपसे फिर बात करेंगे 9 से 10। खूब सारी होगी मस्ती, खूब सारी दिल की बातें और खूब सारे मैसेजेस। तो अभी जाने से पहले जो मैसेजेस हमारे साथ आए हुए हैं उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। हमारे पास मैसेज आया हुआ है मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी का। हाँ ये वही जेठालाल है जिनकी आज पहली कॉल हमारे पास आई थी। मत मुस्कुराओ इतना कि फूलों को खबर लग जाए, हम करें आपकी तारीफ और आपको नज़र लग जाए। ईश्वर करे बहुत लंबी हो आपकी ज़िंदगी और उस पर भी हमारी उम्र लग जाए। क्या बात है रणवीर सिंह जी, आप बहुत ही उम्दा शायरी करते हैं, बहुत ही अच्छी शायरी लिखते हैं। हमारे पास एक मैसेज और आ है बबली अनजान गीता कश्यप भाभी लक्ष्मी कश्यप, एफएम मुरादाबाद पर ओल्ड इज गोल्ड गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमें गाना सुनना है और हम आपका गाना ज़रूर सुनाएंगे। ज़रूर ज़रूर आपकी भी फरमाइश पूरी की जाएगी बबली जी। तो श्रोताओं आज हमारे पास खूब सारी बातें हुई, खूब सारी कहते हैं ना सावन के आखिरी सोमवार में जिस जिसकी जो जो फरियाद थी फरमाइश थी वो भी पूरी हुई। और इस गाने के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे इसी समय इसी जगह और इसी समय दिल की होंगी आपसे खूब सारी ढेर सारी बातें।

0: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

ಇನ್ನಾಯ ಅದು.

0: चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेस क्यू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।